0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: राधा, ओ राधा।
2: क्या है? मैं नहीं बोलती।
1: देखो आज होली है, मुझे तंग क्यों कर रही हो?
2: जा, मैं नहीं सुनती।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बीजापुर वैशाली
1: 9162154619।
2: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89793।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। थाड़ी नदी की सफाई का अभियान तेज, अतिक्रमण कारियों में मचा हड़कंप। 4 बाल श्रमिकों को अलग अलग जगहों से कराया गया विमुक्त। गांजा के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और हत्या के प्रयास में अलग अलग जगहों से लगभग आधा दर्जन आरोपी पकड़े गए। सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर छाड़ी नदी की सफाई को लेकर तीव्र गति से अभियान शुरू हो गया है। सदर SDO डॉक्टर प्रेरणा सिंह के नेतृत्व में लगातार छाड़ी नदी की मापी का कार्य चल रहा है। एक सप्ताह के अंदर मापी का कार्य पूरा कर अतिक्रमण को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है और लगभग अतिक्रमण को चिन्हित करने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। आज भी पदाधिकारियों ने इस कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान जहाँ जहाँ भी अतिक्रमणकारियों के घरों पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं, वहाँ अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जल्द से जल्द छाड़ी नदी को साफ कर उसमें पानी के संचालन की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर आज भी सदर SDO डॉक्टर प्रेरणा सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया।
4: जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश के आलोक में उसको चिन्हित करने हेतु अंचल अधिकारी के स्तर से नापी करवाई जा रही है। कुल 2 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच हम लोगों ने नाके में देखा है, जो अच्छे के अंदर तक है, लेकर और आगे आ रहा है। इस पूरे में अभी 800 मीटर तक की नापी कर ली गई है, जिसमें 44 ऐसा अतिक्रमण चिन्हित किया गया है और जिनके यहाँ पर मार्किंग का भी कार्य कर दिया गया है। इसमें निर्देश किया गया है कि वैसे लोग जो अपने घर के नाले का पानी का प्रवाह छाड़ी नदी में कर रहे हैं, उनको नोटिस दिया जा रहा है कि वो इस तरीके का बंद करें और जो भी मेन नाला है उसमें अपने घर के गंदे पानी का प्रवाह करें। एक बार जब अंचल से नापी की प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी तो हमारे यहाँ से उस पर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी और इस नदी के प्रवाह को न
5: जब तक ये प्रोसेस को चालू किया जाएगा
4: नापी के लिए अभी 1 सप्ताह का समय।

दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी था मैं। सिधवलिया, माझा, उचका गांव, पंचदेवरी, फुलवरिया और हथुआ के साथ पुलिस लाइन के पुलिस बल भी शामिल थे। श्रम अधीक्षक ने बताया कि विमुक्त बाल श्रमिकों को प्रति बाल श्रमिक 3,000 रुपए की दर से तत्काल आर्थिक सहायता राशि का भुगतान बाल कल्याण समिति गोपालगंज के समक्ष किया गया तथा संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को उक्त नियोजकों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज करते हुए अन्य सभी अनुवर्ती कार्रवाई यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर सिधवलिया थाना की पुलिस ने ग्राम बखरौर नया टोला स्थित एक जगह पर छापेमारी करते हुए गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बखरौर नया टोला स्थित सुरेंद्र सिंह के घर के पास पुलिस की गाड़ी पहुंची, तभी पुलिस को देखकर एक आरोपी भागने लगा, जिस पर संदेह के आधार पर पुलिस ने पकड़ा और तथा उसकी जांच पड़ताल शुरू की तो उसके पास से गांजा जैसा मादक पदार्थ मिला है। पकड़ा गया आरोपी सुरेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय बबन सिंह साकिन बखरौर नया टोला थाना सिधवलिया बताया जा रहा है। अब इन पर NDPS एक्ट में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। हत्या के प्रयास में अलग अलग थाना क्षेत्रों से लगभग आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक कार्रवाई उचका गांव थाना की पुलिस ने की, जहां हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी आरोपी बदरी यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह दहीभत्ता गांव के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपी को मानवीय और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार करने के बाद अब इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कटिया थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त राजा राम पिता जीवन राम साकिन जयपुर थाना कटिया को गिरफ्तार किया। इन पर भी पहले से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था, आज इन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत भेज दिया। इसके अलावा कटिया थाना की पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर पहले से केस दर्ज था, इसको लेकर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। माझागढ़ थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में दो प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी दिलीप प्रसाद और दूसरा सर्वजीत यादव, ये दोनों नरेश प्रसाद के पुत्र हैं और धोबोलिया गांव के निवासी हैं। इन पर पहले से मामला दर्ज था, पुलिस ने अब इन्हें गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। महिला एवं बाल विकास निगम गोपालगंज के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के निर्देशानुसार राम स्वरूप सिंह बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बढ़िया बरौली में सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों एवं छात्राओं को महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित संबल एवं सामर्थ्य घटक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन, आपातकालीन सेवा, चाइल्ड हेल्पलाइन और साइबर हेल्पलाइन सहित तमाम बिंदुओं पर महिलाओं और बच्चियों को जानकारी दी गई। शिक्षा विभाग की भी आज बैठक हुई। इस बैठक में स्कूलों की व्यवस्था पर फोकस किया गया। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में विद्यालयों की साफ सफाई और कर्मियों की उपस्थिति की जांच की गई। शिक्षकों की उपस्थिति और छात्र छात्राओं की पढ़ाई की समीक्षा में MDM की वास्तविक स्थिति को भी जाँच पड़ताल किया गया। साथ ही शिक्षकों के एरियर और वेतन भुगतान की स्थिति पर भी चर्चा हुई। TRE 1, 2 और 3 तथा विशिष्ट शिक्षकों के एरियर की समीक्षा कर मातृत्व तथा पितृत्व अवकाश से जुड़े आवेदनों पर भी चर्चा किया गया। विद्यालयों के रंग रोगन और मरम्मती के कार्यों की भी समीक्षा की गई। मुख्य मार्ग स्थित विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया गया। छात्रवृत्ति QTR और प्रेजेंट ऐप के प्रगति की भी समीक्षा की गई। सेवा संकल्प अभियान को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उचका गांव थाना की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 36 कार्टून अवैध देशी शराब को बरामद किया है। इस मामले में पेनुला खास से शराब तस्कर भीम कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उचका गांव के थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में गाड़ी और शराब को जब्त करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस तरह से आज अलग अलग थाना क्षेत्रों द्वारा कुल 22 आरोपियों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया, जिसमें हत्या के प्रयास, शराब की तस्करी, शराब के नशे में भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। SC ST एक्ट और आर्म्स एक्ट में भी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने आज लाइन डे का आयोजन किया। इस दौरान
पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों की समस्याओं

0: को भी सुना गया। स्वस्तिका कक्ष एवं अनुरोध कक्ष का संचालन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता पूर्वक सुनकर उसके त्वरित समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत गतिविधियों एवं निरीक्षण को लेकर निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में बाल विकास परियोजना कुचायकोट के आंगनवाड़ी केंद्र थाना के दक्षिण कोट संख्या 127 का औचक निरीक्षण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS श्रीमती रंजना कुमारी के द्वारा किया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा के अंतर्गत प्रार्थना कराई गई, जो अपने आप में एक नवाचार का उदाहरण है। बसडीला पंचायत में भूमि सर्वे का कार्य तीव्र गति से शुरू हो गया है। नगर थाना क्षेत्र के बंजारी में आज भूमि सर्वे का कार्य कई दिनों से चल रहा है। सर्वे के दौरान जमीन मालिकों से अपने अपने प्लॉट पर उपस्थित रहने तथा आवश्यक कागजात के साथ सहयोग करने की अपील की जा रही है, ताकि सर्वे का कार्य सही एवं व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सके। सर्वे कार्य में अमीन शिवम कुमार के साथ विक्की कुमार, नीलेश कुमार श्रीवास्तव, संजय सिंह, धनंजय सिंह, राजू राय, वीरेंद्र सहित अन्य स्थानीय लोग सहयोग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सर्वे के दौरान जमीन मालिकों की उपस्थिति रहने से जमीन की पहचान एवं संबंधित जानकारी दर्ज करने में सुविधा होगी। सभी संबंधित जमीन मालिकों से अपील की गई कि वे सर्वे टीम का सहयोग करें और अपने संबंधित दस्तावेज के साथ जमीन पर उपस्थित रहें। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ठाड़ी नदी की सफाई का अभियान तेज, अतिक्रमण कार्यों में मचा हड़कंप। 4 बाल श्रमिकों को अलग अलग जगहों से कराया गया विमुक्त। गांजा के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और हत्या के प्रयास में अलग अलग जगहों से लगभग आधा दर्जन आरोपी पकड़े गए। सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: अब बेटा, बहु घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-30992 या 97765-65750।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
2: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 62052-61112 पे।

0: लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99,554-97,644।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 8 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापार दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने लातिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ संबंध और मजबूत करने का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स का स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। श्री जयशंकर कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव, निवेश के बिखरे हुए प्रभाव, बढ़ते ऋण के जोखिम और विकास के लिए अपर्याप्त वित्त की समस्याएं देखी जा रही हैं।
2: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
1: श्री जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले बदलावों का सही ढंग से प्रबंधन करने के महत्व पर भी बल दिया, ताकि विभाजन को रोका जा सके और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर इटली के उप

0: 15 दिसंबर को अमेरिका के मियामी में होगा। श्री कानी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सेतर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ कनाडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमरीका पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिम एशियाई देशों पर हो रहे कई हमलों को देखते हुए पश्चिम एशिया में ऊर्जा से जुड़े अवसंरचना को ईरानी सीमा क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद और अरब नेताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना को बदलने की आवश्यकता को उजागर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने आर्थिक कदमों के माध्यम से ईरान को वित्तीय रूप से अलग थलग कर दिया। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब स्थिति को सुलझाने में बहुत देर हो जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है जहां व्यवसायियों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
2: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसमें कॉमर्स फैकल्टी के 6,713 और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैकल्टी के 1,102 विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ग्यारहवें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में आज सुबह 9 से 10 के बीच होगा। इस

0: संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस में प्रमाण अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आयुर्वेद को सशक्त बनाने के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जामनगर स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की यूनिट हेड डॉक्टर गीता कृष्णन पिल्लई शाश्वतम से विश्वास तक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद और 2047 की ओर मार्ग इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक नेतृत्व तक आयुष विजन 2030 रिपोर्ट, भारत में आयुष संबंधित आविष्कारों पर स्थिति रिपोर्ट CCRAS अग्नि इस आकलन स्केल वेब पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
1: आयुष मंत्री प्रताप जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार है।
2: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहाँ पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को भारत की सौर क्रांति में साकार किया गया है।
3: भारत की सौर क्रांति गुजरात के राज्य स्तरीय प्रयासों से शुरू होकर आज एक विशाल राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है, जो देश को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक अवसर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता से आगे बढ़ते हुए भारत वर्ष 2026 तक लगभग 165 गीगावाट की सौर क्षमता हासिल कर चुका है। सौर ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 51 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और 14.8 गीगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इसने जहां लाखों परिवारों को बिजली बिल शून्य कर दिया है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी नए अवसर सृजित किए हैं। इस योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर आ रहे बदलाव और कौशल विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक लाभार्थी की प्रेरक कहानी साझा करते हुए कहा,
4: आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
3: सुरेंद्रनगर के निवासी दिनेश भाई मकवाड़ा ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन को सुगम बनाया है।
5: मैंने पास पीजी विसिल का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली।
3: आज गुजरात प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटका, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने के कई अवसर होंगे। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू आज भारत के अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भाग लेंगी। नौकायन में भारत की पुरुष टीम ने सिंगल्स और टीम स्कल्स इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
6: धन्यवाद प्रियंका। भारतीय बेटियों की स्वर्णिम उड़ान। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा देश के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने की खबर को आज दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जापान में इस टूर्नामेंट में अब तक देश के कुल 7 में से 4 पदक महिलाओं के नाम है। अमर उजाला की खबर है, मोबाइल में इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ वॉइस कॉल और मैसेज की सुविधा चाहने वालों के लिए अच्छी खबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार कंपनियों से मोबाइल रिचार्ज में बिना डेटा वाले सस्ते प्लान बढ़ाने को अनिवार्य किया। अब 30 दिन की वैधता लागू की जाएगी। नवभारत टाइम्स लिखता है, मोबाइल स्क्रीन गार्ड यानी स्क्रीन प्रोटेक्टर अब बिना गुणवत्ता जांच के नहीं बिकेंगे। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। टूथपेस्ट साबुन शैम्पू पर लाल हरा बिंदु अनिवार्य, देखते ही पता चलेगा कि उत्पाद शाकाहारी है या नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी की अधिसूचना।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
10: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 51 पे।
11: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
12: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
13: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
12: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: क्यों फूलवती, आज टमाटर शुरू होने से पहले ही
1: तो काका चले दो।
2: मैं बोलता फूलवती, काका ये कहना चाहते हैं कि आज तमाशा शुरू करने से पहले ही तूने खत्म कर दिया।
3: नहीं काका जी, आज का तमाशा तो अब शुरू होने वाला है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए किसानों को मिलेगा कृषि इनपुट अनुदान। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू। जमुई में नाबालिग छात्रा से दुर्व्यवहार मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त समेत 5 को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के मामले में भी 3 गिरफ्तार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में कानून का राज कायम रखना सरकार की प्राथमिकता। अपराधियों को पुलिस हर हाल में जवाब देगी। और पटना में आयोजित 37वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन बिहार के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए किसानों को कृषि इनपुट अनुदान मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि 18 जिलों के 84 प्रखंडों की 653 बाढ़ प्रभावित पंचायतों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर अनुदान का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि रैयत और गैर रैयत दोनों किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए अनुदान का लाभ मिलेगा। किसानों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर आवेदन करने की अपील की गई है। जमुई में नाबालिग छात्रा से दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि मुख्य अभियुक्त नंदन यादव और उसके साथी हरेराम यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया।
1: जब घेराबंदी की गई तो एक व्यक्ति वहां से जब पकड़ा गया तो उसके द्वारा अपना नाम जो है हरेराम यादव बताया। पूछताछ के क्रम में ही पता चला कि जो दूसरा एक जो मुख्य अभियुक्त है नंदन यादव, वो भी इसी भैयार में छुपा हुआ है। हम लोगों ने और फोर्स को बुलाया और पूरे भैयार को चारों तरफ से घेर करके जब एक संदिग्ध दिखा तो वो घेराबंदी देखकर उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस की ओर से भी एक चक्र फायरिंग की गई जिसमें वह घायल हुआ है और उसके बाद अग्रतर कार्रवाई हम लोग के द्वारा की जा रही है।
0: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले 3 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि सभी के खिलाफ एसपीडी ट्रायल चलाया जाएगा।
1: जो पॉक्सो एक्ट होता है, जो जीजे एक्ट होता है, उसमें किसी भी नाबालिग जो पीड़ित रहता है उसके पहचान को छुपाया जाना चाहिए। उस पहचान को उजागर करना भी एक संज्ञेय अपराध है और इसी कारण से जो है साइबर थाना में भी एक अलग से प्राथमिकी बीते रात दर्ज की गई है, जिसमें कुल 120 ऐसे साइट जो प्रोफाइल जिनका था उनके विरुद्ध भी हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की है और उसमें से जमुई जिले के 3 लोगों को हम लोगों ने उसको डिटेन किया हुआ है।
0: एसपी ने बताया कि घटना से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में कानून का राज कायम रखना सरकार की प्राथमिकता है। पटना में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी पुलिस को चुनौती देगा तो पुलिस उसका हर हाल में जवाब देगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
2: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं सर, लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है। और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को गया में समेकित निर्माण क्लस्टर का काम अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह तक पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने पटना में बिहार गति के तहत 100 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं और अन्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने परियोजनाओं में तेजी लाने, निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने, नियमित निगरानी और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी सेविकाओं और संबंधित कर्मियों के लंबित मानदेय का भुगतान दुर्गा पूजा से पहले हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। प्रदेश में जमाबंदी शुद्धिकरण के लिए अवरैयतों के आवेदन का इंतजार नहीं किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचलाधिकारियों को अधूरी और त्रुटिपूर्ण जमाबंदियों को हल्कावार चिन्हित कर मूल अभिलेखों के आधार पर स्वयं सुधारने का निर्देश दिया है। विभागीय सचिव जय सिंह ने समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आयोग की अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग की अनुशंसाओं से पंचायतों में आधारभूत संरचना मजबूत करने, पंचायत सरकार भवनों के निर्माण और पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सातवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं वित्तीय वर्ष 2026 से 2031 तक लागू होंगी। राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति हरीश कुमार की अध्यक्षता में गठित परीक्षा सुधार समिति के चार अन्य सदस्यों के नाम घोषित कर दिए हैं। समिति में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा, एनआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार जैन और बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना के कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा सुधार समिति राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों, बोर्डों, आयोगों, विश्वविद्यालयों और अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सुधार के लिए अनुशंसाएं देगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी की गतिविधियों के कारण प्रदेश में आज से बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार 27 सितंबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सीवान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना समेत 23 जिलों में गरज चमक की चेतावनी जारी की गई है।
1: 23 सितंबर को राज्य के अधिकांश भागों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं सिवान जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस की थीम है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य कार्यक्रम महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया जाएगा। राजधानी पटना में क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान अनुसंधान परिषद में इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आयुर्वेद दिवस पर परामर्श शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की आज 118वीं जयंती है। आज ही के दिन 1908 में बेगूसराय के सिमरिया में उनका जन्म हुआ था। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुनते हैं 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर उनकी रचना परशुराम की प्रतीक्षा के अंश उन्हीं के स्वर में।
2: जो कविता सुना रहा हूँ वो परशुराम की प्रतीक्षा का एक छोटा सा अंश है कि पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो, पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो, दो हवा देश की आग जरा जलने दो।
3: आकाशवाणी
2: जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा, देखोगे कैसा प्रलय चंड होता है, असीवंत हिंद कितना प्रचंड होता है।
0: राष्ट्रकवि की जयंती के अवसर पर राजधानी पटना और बेगूसराय समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बक्सर में आयोजित वामन द्वादशी मेले में शामिल होंगे। श्री चौधरी विश्वामित्र पार्क का भी निरीक्षण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि वामन द्वादशी को लेकर त्रिमुहानी स्थित गंगा, ढोढ़ा और कर्मनाशा नदी के ढलान पर सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु भगवान वामन की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिहार ग्रामीण बैंक ने बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए की सहायता दी है। बैंक के चेयरमैन मुकुल साय ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस राशि का चेक सौंपा। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 37वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन बिहार के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण पदक जीते। अंडर 14 जेवलिन थ्रो में राहुल कुमार, अंडर 16 की 60 मीटर दौड़ में संदीप यादव, अंडर 18 की 100 मीटर दौड़ में शुभांशु कुमार और अंडर 20 डिस्कस थ्रो में प्रियांशु शर्मा ने स्वर्ण पदक जीते। अंडर 18 की 1000 मीटर स्प्रिंट मेडल रिले में भी बिहार की टीम ने स्वर्ण हासिल किया। प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, झारखंड और मेघालय के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पूर्वी चंपारण के डुमरिया घाट में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक महिला से 21 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। इधर साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई की टीम ने शेखपुरा और औरंगाबाद में छापेमारी कर 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। बांका के शंभुगंज प्रखंड के शोभनाथपुर में कर्माधर्मा पर्व के दौरान दिघिया पोखर में नहाने गई 3 छात्राओं की डूबने से मौत हो गई। वहीं जमुई नगर थाना क्षेत्र के अमृत स्थित महादेव स्थान पोखर में नहाने के दौरान 2 बच्चियों की मौत हो गई। पटना के दानापुर की मिथिला कॉलोनी में एक पुलिसकर्मी और उसकी बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया सिपाही द्वारा पहन की हत्या के बाद खुदकुशी किए जाने की आशंका है। पुलिस पारिवारिक विवाद समेत सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पटना सिटी व्यवहार न्यायालय ने फतुहा थाना के निजी वाहन चालक सिद्धार्थ पासवान की हत्या के मामले में अभियुक्त महेश पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 35,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। पटना की एनडीपीएस की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में दो दोषियों को 13-13 साल कारावास और 1-1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। राजस्व और आसूचना निदेशालय की पटना क्षेत्रीय इकाई ने पटना जंक्शन से 1 किलो 700 ग्राम सोना के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, जमुई में नाबालिग छात्रा से बदसलूकी मामले में अब तक 5 गिरफ्तार, वीडियो वायरल करने में भी गिरफ्तारी। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, मैं किसी धर्म के पीछे नहीं पड़ता, पुलिस को चैलेंज किया तो मिलेगा करारा जवाब। हिंदुस्तान लिखता है, शिक्षक भर्ती चौथे चरण में एक ही परीक्षा होगी, आवेदन 25 सितंबर से। दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, धर्म या अंतरात्मा के कारण वंदे मातरम पूरा न गाने पर सजा न हो। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, 72वां नेशनल फिल्म अवार्ड, कार्तिक यामी बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस। आज अखबार लिखता है, एमएलसी चुनाव की तारीखों का ऐलान, 8 सीटों पर होगी वोटिंग। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रदेश में बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए किसानों को मिलेगा कृषि इनपुट अनुदान, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू। जमुई में नाबालिग छात्रा से दुर्व्यवहार मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त समेत 5 को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के मामले में भी 3 गिरफ्तार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में कानून का राज कायम रखना सरकार की प्राथमिकता, अपराधियों को पुलिस हर हाल में जवाब देगी। और पटना में आयोजित 37वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन बिहार के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
1: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
0: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
0: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
5: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
6: हेलो
7: जी मैम, नमस्कार।
6: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम।
6: जी सुनील जी, क्या हाल चाल है?
7: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए। मैम का फोन भी लगा रहे थे, ट्राई कर रहे, फोन भी लग गया मैम।
6: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
7: मध्य प्रदेश MP से।
6: तो मौसम कैसा है उधर का?
7: जी हमारे यहाँ तो मैम अभी कल शाम को बारिश हुआ था, अभी तो धूप है मैम।
6: अभी धूप निकला हुआ है?
7: जी जी जी मैम।
6: फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा?
7: जी फिल्म है आंदोलन और गाने को बोला है आई जी हेल्पल तुझे मेरी यार। और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम जो लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
6: ओके जी, वैसे गाना तो बहुत ही अच्छा
7: जी।
6: तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
7: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4
1: जी।
0: जी
1: कैसे हैं मैं?
0: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए।
1: मैं भी आपके यहाँ दुआ है आपके।
0: क्या हो रहा था अभी?
1: कुछ नहीं मैम, बात कर रही हूँ आपसे, कॉल लगा रही हूँ। अभी तो टाइम मिला, जस्ट लगा।
0: तो
1: कैसे मैम, अच्छी हूँ ना?
0: जी जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए। ठीक ठाक है ना?
1: अच्छे हूँ।
0: ये रहना,
1: बस लेट से आपके पास कॉल लगा रही हूँ। आपसे बात करके मैं बहुत खुश होती हूँ।
0: अच्छा,
1: ना सुनना है विदाई वाला बाबू से घर छोड़ के देखे घर चली।
0: जी एक बार और बता दीजिए।
1: विदाई वाला सुना दीजिए, बाबू के घर छोड़ के बेटी की आके घर चली।
0: जी तो क्या आप मुझे जाके बताएंगे ये दो लाइन?
1: जी है।

0: गाना तो अच्छा है जी, बहुत ही अच्छा। और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
1: सबसे पहले आपको
0: जी थैंक यू।
1: हम अपने घर वालों से सबको जितना भी गुनगुन सुनने वाले भाई और बहनों को सबको सुनाना चाहते हैं।
0: ओके जी, वैसे क्या करती हैं आप?
1: जी कुछ नहीं, मैं घर से जितना सिलाई है, घर का काम है, सब देख रेख करना सब हमको जिम्मेदारी है। सही है,
0: आपकी पढ़ाई कम्प्लीट हो गई है?
1: जी शादी हो गई है मेरा फिलहाल।
0: जी आपका शादी हो गया है?
1: जी मेरा भी शादी है, हम अपनी लड़की के शादी की तैयारी कर रहे हैं। आपको कहीं से लग रहा है? कभी नहीं हुआ है?
0: नहीं नहीं, आवाज से तो पता नहीं था।
1: आवाज से तो सबको पता चलता है कि इनके शादी भी नहीं है, पता नहीं आवाज को चेंज करना पड़ेगा।
0: जी जी बिल्कुल, आवाज ऐसे लगी एकदम।
1: नहीं मैम झूठ नहीं बोल रही हूँ आपसे, सिस्टर की जैसे हो। मैंने अपनी लड़की के शादी की, उनसे भी एक लड़की हुई थी।
0: अच्छा जी
1: जी,
0: चलिए आप तो मुझे कंफ्यूज ही कर दी।
1: जी जी नहीं नहीं, कंफ्यूज बात हो, हमेशा के लिए बात करते
0: हैं, याद रखेंगे।
1: जी जी
0: चलिए
1: मैम बाय।
0: जी तो प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी जी।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
7: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
9: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
9: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
8: याद रहे शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
9: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
11: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello, hello.
12: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो, हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
13: नमस्कार माया।
14: नमस्कार
13: कैसन बानी
14: जी? हम तो ठीक बानी, रहुआ बताएं कि रहुआ कैसन बानी?
13: हम यो तो ठीक है बानी साहब, आशीर्वाद से।
14: अरे कोई से रहुआ कहाँ से बोला जाए?
13: हम बंजारी से बोलता नहीं, बंजारी पुल से सामने गोपालगंज से
14: जी। और नाम?
13: हमारा नाम परिवहन चैंकेलर राघव जी।
14: और बताइए नाश्ता वास्ता हो गयी?
13: मैडम नाश्ता अभी ले तो 9 बजे नाश्ता हो जाएगा, आदमी तो कहाँ से चला वाला। तब अपन सुनाई लोकेशन बने सबसे 3 लोकेशन बा
14: जी, यहाँ पे भी तो सबसे बढ़िया बाटे,
13: कभी बढ़िया के काम बा और पूरी सॉन्ग सुने का बहाना दे।
14: जी बिल्कुल बता दी।
13: सॉन्ग गुंजन सिंह के कहकर धारामुआ सही बा, अलगे अलगे भाई सही सॉन्ग बा चला दो।
14: जी जी, और ये गाना के उसे सुनाए के भी चाहता नहीं
13: गा। पहले तो रोवा के जितना रेडियो रिंजिम के टीम बा सबके ओके, आज जितना रेडियो रिंजिम जो सुनता तो सबके ओके साथ में सुनना चाहता नहीं।
14: जी बिल्कुल, तो चले फिर और गाना प्ले करता नहीं।
13: प्रणाम नमस्कार मैम
14: जी। प्रणाम नमस्कार, मतलब सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 एफएम।

0: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
1: धन्यवाद मैम, मेरा कॉल इतना मेहनत से करके लगाया था और कट गया
0: जी,
1: इसलिए बहुत अफसोस है मुझे।
0: कोई बात नहीं, दोबारा तो लग गया ना, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा
1: आज। मुझे एक प्यारा सा गाना सुनाइए, गाने का उम्मीद है कि ये सबको अच्छा लगेगा। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, सही वाला सुनाना है
0: जी। जी क्या मुझे जाके बताएंगे दो लाइन?
1: मैम मुझे आता नहीं गाना गाने, और उस दिन रानी जी बोल रही थी कि वो बोलते हैं मेरा आवाज अच्छा नहीं है, मेरा आवाज अच्छा है नहीं लेकिन गाना गाना भी नहीं आता है।
0: नहीं नहीं, आपका आवाज बहुत ही अच्छा है, कोशिश करिए कि कॉल करने के बाद दो लाइन गा के सुनाते तो सही रहता।
1: मैम तो अगली बार कोशिश करेंगे और रानी जी को यही बोलेंगे, उनका फरमाइश आता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। कस्टमर आता है दुकान पे, हम कस्टमर को रोक करके उनका फरमाइश सुनते हैं।
0: जी ये तो बहुत अच्छी की बात है,
1: मतलब उनको बात के साथ उनका फरमाइश भी अच्छा लगता है हमको।
0: जी जी,
1: लंबा बात होता है लेकिन मतलब अच्छा होता है और गाने का फरमाइश अच्छा आता है, और जो हम सोचते हैं कि ये वाला गाना फरमाएंगे वही उनका मतलब आ जाता है।
0: जी जी, तो ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: डेडिकेट है सभी रेडियो दोस्तों, सभी आदमी को आपको। मैम आज पूरा रिकॉर्डिंग आपका है?
0: हाँ जी।
1: तो आज चलेगा ये कि कल?
0: नहीं नहीं, आज नहीं तो कल, दोनों दिन में बन ही जाएगा।
1: मैम तो मेरा बातों को उतना बिल पे नहीं लीजिएगा जो बोले हैं कल के लिए।
0: जी जी कोई बात नहीं है,
1: जो हमको अच्छा लगा वो बोल दिए।
0: जी जी आपने सही बोला।
1: जी मैम हम फैमिली में सुन रहे थे इसलिए मतलब इधर उधर हो गया।
0: जी जी कोई बात नहीं है।
1: ओके मैम, तो इसको प्ले कीजिए गाना को।
0: जी जी चलिए, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम एडवांस में धन्यवाद और बाय बाय।
0: जी बाय बाय, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 एफएम।
1: ओके मैम।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो

0: एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
0: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में। जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं?
5: हम भी कौन मैम बोल रहे हैं?
4: नहीं
5: मैम, जी मैं नंबर
4: जी। तो क्या हाल चाल है आपका?
5: ठीक है मैम, आप कैसे हैं?
4: जी
5: आप कैसे हैं? हम लोग ठीक हैं।
4: जी जी हम भी बढ़िया।
5: आज मेरे को सॉन्ग सुना दीजिए।
4: बता दीजिए।
5: अब तेरे दिन जी लेंगे जहर जिंदगी का पी लेंगे हम।
4: क्या मुझे ये गाना आप गा के बताएंगे? दो लाइन।
5: दो लाइन। अब तेरे दिन जी लेंगे हम।

0: जी लेंगे हम। और सुनाना है
1: जी,
0: सबसे पहले आपको, अक्षरी को, कमरान भाई को, राघव जी को, दिलीप भाई को और जो भी रेडियो रंजन जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी दोस्तों को।
1: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए। आज बज जाएगा क्या?
1: जी जी, कोशिश रहेगा कि आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
0: ओके मैम, जब आपका सुविधा हो तब बजा दीजिए।
1: जी जी, तो क्या है ना, बहुत सारे कॉल आए रहते हैं तो कॉल आगे पीछे हो सकता है।
0: कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको गाना सुनाने के लिए और फोन रिसीव करने के लिए।
1: तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 एफएम।
0: थैंक यू मैम,
1: वेलकम।

0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
1: मैं बोल रहा हूँ महंगा राव, मुझे गीत सुनना था।
0: बता दीजिए।
1: भोजपुरी गायिका एक है शारदा सिन्हा का छठ का कोई गीत है।
0: ऐसा कोई भी छठ का शारदा सिन्हा का कोई भी गाना।
1: हाँ, कोई भी गाना
0: जी। अब ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते
1: हैं? सुनवाना अनिल, सुनील, शशिकला, महेंद्र राउत, मैंने अपने खुद और प्रेम कुमार, ऐसे हमारे दोस्त और आप लोग सभी श्रोतागण। कौन बोल रही है मैम?
0: जी मेरा नाम मनोरमा।
1: मैं पहले सोनी भी थी
0: जी।
1: तो दो तीन बार किए लेकिन मुझे गाना सुनने को नहीं मिला।
0: अच्छा।
1: बहुत दिन छोड़ दिए थे लेकिन आज फिर हमको याद पड़ा गाना एक सुनने को दिए, तो फिर आज आपको फोन किए। बहुत दिन हो गया, अब सुनाएंगे गाना ये
0: आपका आज नहीं तो कल बज जाएगा दोनों दिन में।
1: मैं तो 4-5 दिन तक इंतजार करते रह गया लेकिन सुनने को नहीं मिला पहला गाना। देशभक्ति एक गाना खोजे थे लेकिन मिला नहीं, बहुत दिन हो गया, करीब 3 महीना पहले का बात।
0: ये तो पहले का तो बात मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी तो अभी न्यू हूँ, तो अभी जो आप रिकॉर्ड करा रहे हैं तो गाना आपका आज नहीं तो कल बज ही जाएगा दोनों दिन में।
1: तो शाम को ही बजेगा ना
0: जी, 5-7 के बीच।
1: ठीक है तो
0: जी, तो प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ठीक है, ठीक
0: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।
1: बहुत अच्छा।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-75।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: Jab phone gende bajte hai to kehte hain hello.
12: Hello. Hello. Hello. Hello.
13: To dosto break ke baad aap सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो प्रोग्राम में।
15: नमस्ते मैम।
14: नमस्ते।
15: शुक्रवार को हम लोग गाना सुनने को भूलता किया था, तो गाना नहीं सुना है आप लोग।
14: जी तो किस?
15: हेलो।
14: हाँ जी,
15: आप ही रहते थे, आप ही रिकॉर्ड किए थे
14: गाना आपका, उसके अगले दिन बज गया?
15: नहीं, शनिवार को हम लोग सुना तो नहीं बजा।
14: हाँ, तो उसके अगले दिन बजा होगा फिर।
15: जी, कल संडे थे ना?
14: नहीं तो आप संडे, जी आप जो रिकॉर्डिंग कराई थी वो रिकॉर्डिंग बज
15: गया तो नहीं बजा हम लोग का गाना, नहीं बजा। हेलो, हम लोग 2 दिन शुक्रवार को सुना और शनिवार को सुना, कल संडे था तो संडे को तो क्विज कॉन्टेस्ट चलता था।
14: जी, तो आप रिकॉर्डिंग कब कराई थी और मेरे को पहचानती हैं आप?
15: हाँ, आप तो मोरारवा बोल।
14: हाँ जी।
15: हाँ, एक और जो रोस्टी थी ना वो रिकॉर्ड की थी।
14: अच्छा जी, तो कहीं बचा होगा कॉल तो आज बजेगा?
15: हो सकेला कहीं आज बजेगा, तो आज हमको गाना सुनना है दो सौ।
14: बता दीजिए।
15: उड़ने के कोर से पूछो अपने लूर काविया में गोरी, ये गाना सुनना है हमको।
14: जी जी, और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
15: हम लोग आप ही को सुनाना चाहते हैं और अपने घर लोग को सुनाना चाहते हैं।
14: ओके जी, वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
15: हम लोग वृंदावन से बोलते हैं, थावे के लग से।
14: अच्छा, और अपना नाम क्या बताई हैं?
15: मेरा नाम सुमन कुमारी था।
14: सुमन,
15: तो ये है, हम लोग कई बार फोन किए थे आप लोग के पास।
14: अच्छा,
15: आप नहीं पहचानते हैं हम लोग को? बुझाता है?
14: नहीं नहीं, पहचानते हैं।
15: हाँ, नहीं पहचानते हैं इसीलिए पूछते हैं, बोलिए।
14: नहीं नहीं, वो क्या है ना कि बहुत दिनों बाद आप कॉल की है ना, इसकी वजह से।
15: मैंने शुक्रवार को फोन किए हैं तो गाना नहीं बजा, फिर बोली आज लगाते हैं, लगेगा तो आज बोलेंगे कि मेरा गाना नहीं बजा।
14: अच्छा जी,

0: हेलो
1: जी, बहुत बेहतर है रेडियो 90.4 FM ना।
0: मैम कुमार बाराबंकी से।
1: नमस्कार, क्या हाल चाल है
0: जी? है मैम, आप बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
0: मौसम
1: धूप तो निकला हुआ है
0: हमारे यहाँ तो, कुछ नहीं निकला
1: जी। वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: बाराबंकी लखनऊ।
1: तो फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: अभी सचिंदर सरताज का एक गाना आया है ना, सिफारिश वाला।
1: कौन सा?
0: सिफारिश। सिफारिश,
1: सिफारिश।
0: क्या है आपका?
1: क्या आप मुझे गा के बताएंगे दो लाइन?
0: तुझे भेजा है खुदा ने महाताब से, आई की बिटिया है जैसे। तो मैडम आई है निकल के नकाब से, सिफारिशों के पे गौर की, सिफारिशों पे गौर कीजिए, ऐसे है वो।
1: जी जी। और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
0: जी अपनी, सबसे पहले तो अपनी वाइफ को सुनाना चाहेंगे, के बाद आपको, रेडियो रेंजिंग परिवार को और तमाम रेडियो रेंजिंग सुनने वाले श्रोताओं को।
1: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना का।
0: सुनी मैम, चली गई क्या? है
1: जी, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता।
0: अच्छा,
1: प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ओके मैम,
1: सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: नमस्ते दीदी।
8: नमस्ते,
7: क्या हाल है?
8: हाल तो ठीक बा, अपन बताई जुआ कैसन बानी?
7: हाँ जी, ठीक बनी सर। मनोरमा दीदी?
8: हाँ जी।
7: भारती दीदी कहाँ बानी?
8: वो के बानी काम करता।
7: अच्छा, तो चली ना?
8: हाँ चली।
7: खाना वाना हो गया?
8: हाँ, खाना तो हो।

0: बराबर
1: हाँ बेलवा अभी सब
0: भाई
1: ठीक बा ना
0: जी जी सब बढ़िया बा
1: भैया सुन रहे
0: ना अभी तो दिला
1: भैया झगड़ा कर रही हूँ लोगों से।
0: अच्छा जी वो कह रहा
1: कल के गीत ना के बाद लिंक करूँ भैया के आई थे।
0: अच्छा अच्छा तो हम ना चला रहे हैं तो भारती भी चला रहे हैं
1: 3 बजे के भेजले 5 बजे गाँव के पुरना बजाई।
0: अच्छा कौन बात ना आगे पीछे हो जाला
1: तो रघुआ चला थी रघु तो आत रही तो रघुआ बुझा दिला टोई में।
0: जी जी तो ये बात कह चाहती हूँ मैं बहुत सारा लोग बात तो सबके भी तो देखे पड़ेगा ना
1: तो मतलब जो आगे भेजियो का बजा देवे के चाहिए पीछे भेजियो का पीछे बजाए के चाहिए।
0: तो ये बात रहो ठीक बा लेकिन वहाँ से पहले भी तो भेजल रहोगे वही से बजा लोगे तो
1: इनका सफर के भेजो तो पास भी रहोगे आज लास्ट में भेजो उनको पास रहोगे लेकिन इनका ना बजोगे।
0: अच्छा कोनो बात नहीं के टाइम कम हो ये की वजह से ना बाजल हुई आज बाद दे जिसका छूटा लगे का
1: 3 बजे के भेज रहे मन 2 घंटे टाइम रहोगे।
0: अच्छा चलिए कोशिश कर लीजिए आज बजा के वही से आज कौन गाना सुने
1: भक्ति सुन बजा दी आराम में दोबारा मिल जाइबे ना।
0: कौन सा
1: आराम में दोबारा मिल जाइबे ना
0: कई गाना वो जाके बता सको तो नहीं।
1: हाँ
0: बता दी
1: खेसारी लाल की आवाज में बावे
0: ठीक बा गाना ही के सुनवाए
1: आराम में दोबारा मिल जाइबे ना ये आवे
0: ठीक बा।
1: सबसे पहले रहुआ के सुनवाए भारती दीदी के और जितना सुनते हैं लोग सब के उके और सोनी दीदी के और गणेश भी सुनिहन और मनीष भी सुनिहन जितना सुनते हैं लोग सबसे
0: ठीक बात। तो चलिए गाना प्ले कर रहे
1: हैं। नमस्ते
0: नमस्ते एक मिनट तो अपन नमा बता दी
1: नमा करी
0: चलिए तो फिर प्ले करता नहीं सुनते सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: ठीक है।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते।
1: हाल चाल तो ठीक बा, अपन बताइए रवा कैसे मानी? ना बता दी।
0: गणेश कुमार
1: जी
0: बात कर रहे हैं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: कल गया हम गाना नहीं खेला जाओ।
1: गाना नहीं खेला जाओ
0: ना? आज मनोरमा दीदी रहुए बताए कि हम तो कौन 4 बजे 4:30 बजे मैसेज ना भेज रहे हैं, बताए वो मेरे भेज रहे थे तो हम कहते चल भाई हमारा से पहले जो फरमाइश आई हो तो हम बजाय कोनो बात नहीं थे। बाकी हम गाना के फरमाइश भेज ले 3 बजे एकदम राइट 3 बजे हमारे गौन नहीं खी बजे हम कहें कि आप बजाय बजाय अपने वेट कर कर कर कर 5 बजे हो तो चल गए।
1: अच्छा तो हम सोना टाइम कहीं भागे?
0: अरे तो रहो चलाते रहे।
1: अच्छा हमारे टाइम भैया
0: मनोरमा दीदी हम जबले शो खत्म ना रहे तबले हम सुनते रहे।
1: अच्छा
0: हमारा बहुत अच्छा लगे रहा सुने में। जैसे कि ना होला कि कोई गाना ना बजला तो तनी अथी हो जाला दुख खानी मन हो जाला।
1: ना ना ऐसा बात नहीं है कहे से कि और भी तो लोग बा वहाँ सबके भी तो बजावे के पड़ेला ना।
0: ना तो संडे के दिन स्पेशल तनी बजावे के चाहिए ना बताए।
1: आज बात
0: ना छोड़िए आज भेजबे ना करम फरमाइश
1: तो ना खिसी आई जला
0: ना तनी बोल दे भारती दीदी से रहुआ।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ऐसा मान ली कि गाना के फरमाइश भेज रहे भाई भक्ति तो अगर भक्ति ना बजा गई तो बोल देते हैं कि भाई भक्ति ना बजी दूसरे गाने के फरमाइश भेजी तो वहाँ का वो नहीं खेल भोजपुरी सुन भक्ति बाजेला।
1: अच्छा
0: अब बताए अब अथी दशहरा होता तो सब लोग तो भक्ति गाना सुनी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: भक्ति तो बाजते नहीं खेल।
1: अच्छा तो बाजी हमने के सर जी जाए। अच्छा ना तो ऐसा कोनो बात नहीं खेल और भी गाना बाजी क्या है और लोग भी जुड़ेला तो बारी बारी सबके बाद।
0: अच्छा रवि बताए मनोरमा 3 बजे से अथी होते रहोगे 3 बजे से 2 घंटे टाइम रहोगे की ना रहोगे?
1: जी जी चलिए ऐसे गलती हो गई तो आज बात दे रहा हूँ ना टेंशन मत ले। आई बता दी कि आज रुआ कौन गाना सुने
0: अपना पसंद के बजा दी।
1: ना ना रुआ इतना मुश्किल से कॉल कैले बनी रही रुआ बताती तो सही रही
0: ना अपना पसंद से बजा दी।
1: अच्छा
0: जवान दे रुआ पढ़ने लगा
1: भोजपुरी में की हिंदी में?
0: जवान भी बढ़िया लगा।
1: अच्छा और गाना भी
0: सबसे रुआ के और भारती दीदी के और पूरे रेडियो सुनवाना चाहते हैं।
1: अच्छा जी तो चलिए फिर प्ले करते हैं रुआ गाना।
0: ठीक है।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
10: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
9: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
10: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
9: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
11: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
13: नमस्कार
12: जी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? तो क्या हो रहा है? अच्छा जी, तो खाना वाना हुआ कि नहीं? अच्छा जी, था तो आज लेट हो गया कॉल करने
13: में।
12: क्या करिएगा, ये कॉल करता है तब तक दूसरा आ जाता है।
13: तो आज एक रिक्वेस्ट है लिखल हाथ के लकीर में
12: नहीं खुद तकदीर में जान दे वाला
13: खेता बिहारी लाल का नहीं है, हमारा कुछ अलग रहता है।
12: समझते हैं,
13: इसलिए हमारा खेसारी लाल का नहीं है, कुछ अलग है। कर लीजिए आप, पंकज मतलबी का है, नेहा सिंह का है, जुगल है।
12: तो गाना डेडिकेट भी करना चाहेंगे
13: आप दोनों को, जितने सुनने वाले हैं सबको।
12: ओके जी, बस नाम बता दीजिए और एड्रेस।
13: कुमार मिश्रा दिल्ली।
12: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
13: ओके जी,
12: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकिंग 90.4 FM।

0: हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: में। नमस्ते दी।
0: नमस्ते, कैसी हैं?
1: राधे राधे।
0: राधे राधे
1: बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं।
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ। आप रानी जी बोल रही है ना?
1: जी, मैं रानी बात कर रही हूँ।
0: आपने सबको ही मिस कर रहा था लो।
1: जी, कॉल के द्वारा।
0: जी, अभी बोल रहा था लो कि रानी जी कॉल नहीं है, तो हमने बताया कि नहीं अभी तो कॉल नहीं, बट आप कर ही दी।
1: और इंतजार सफल हुआ कि ना?
0: जी बिल्कुल।
1: और नाश्ता उस्ता कर ही नहीं दी?
0: हाँ जी, नाश्ता तो हो गया और आप ही हैं
1: जी, नाश्ता हो गया है।
0: तो?
1: और आप अच्छी है ना?
0: जी मैं तो ठीक हूँ। और आप ठीक? ना तबीयत तो सही है ना आपकी?
1: और तबीयत अच्छी है। और आज मेरी थोड़ी सी अंदर से मेरा हॉट हो चुकी हूँ। और मेरा एक भाई जाने वाला है सऊदी, कल परसों निकलेगा। और उसके और जो मेरी वार्निंग थी ना दी, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मैं अंदर से टूट गई हूँ और ऐसा फीलिंग हो रहा है ना, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और लाइफ में मैं कभी भी किसी से शिकवा शिकायत नहीं रखी हूँ, ना कोई चीज मांगी हूँ। बाकी मुझे दिन मांगले, मुझे हर चीज मुझे ला कर देता था। है तो उम्र में छोटा, बाकी मुझे प्यार बहुत ज्यादा दिया है थी। और मैं क्या बताऊँ, मुझे अब अंदर से जिस घर में जा रहे हैं, रुआई की सुबह कुछ नहीं आ रहा है। इंसान जीवन में अगर तैराकी करे ना दिया, अगर एक पैसा के लिए इंसान को क्या क्या झेलना पड़ता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अपने जितने में हो उतना ही में कुछ पैसा खर्च करना चाहिए। इसलिए भी पैसा बड़ा मेहनत कराता है और है मेरे से उम्र में छोटा। अब मैं बताऊं आपसे, कभी भी हाल ही में मेरा जब रेडियो फूटा था,
0: जी
1: तो मुझे एक दिन की नागा को अगर मुझे जाकर नया रेडियो 1200 में खरीद कर ला कर दिया है। और मैं बताऊं, मैं रेडियो 9-10 रेडियो खराब कर चुकी हूँ। ये ग्रावा रेडियो है मेरे पास।
0: अच्छा
1: और मैं ये थी चूंकि इसे सुनते आई है ना, और पहले मेरे दादाजी भैया वैया सब लोग सुनता था। और उन सभी को मेरी तरफ से जो जो मेरे के पूछे हैं, रानी की तरफ से अगर नमस्ते प्रणाम। और मैं आज मिस कर रही थी। और देखिए, पहले तो मैसेज उसके मोबाइल से थोड़ा बहुत कर लेते थे, एक दो बार अपनी फोन में बात भी हुआ है और मोबाइल भी लेकर जा रहा है। और छोटा फोन होगा तो आप लोग से बात होगा। और मैं बताऊं दी, लाइफ में कभी भी मुझे कोई भी चीज की आज तक ले, और मैं ही थी चुकी से कभी भी मैं अपने भाई लोग से कोई चीज मांगी नहीं हूँ। बाकी दिन मांगले मुझे हर एक ख्वाहिश लिया अगर पूरा किया है थी। और परदेश जाने के बाद, और एक बात और है, और जाते जाते एक बात बोलता था दी के, पता है दी, तुम्हारा जब शादी होगा तो हम शादी में नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और शायद देखिए, अगर वो भी सारी पूरा हुआ तो अब देखिए भगवान के दया से मेरी शादी ऐसे होती है, आगे सब होती है। और जो कहा वो पूरा कर दिया दी, और मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है दी, बहुत ज्यादा। मैं ऊपर वाला से दुआ यही करेंगी कि उसका आत्रा मंगलमय हो और जहाँ भी जाए सही सलामत रहे दी, मेरा उम्र लग जाए। और मुझे जितना प्यार दिया है ना, सच में करेंगे, एक प्यार तो माँ बाप से मिल जाए, बाकी मुझे माँ बाप से ज्यादा उससे मिला है दी, बहुत ज्यादा मिला है,
0: चलिए
1: बहुत ज्यादा मिला है दी। मैं उसके बारे में जितने बोलूं उतना कम पड़ जाएगा।
0: चलिए, कोई बात नहीं है, फिर जल्दी, बहुत जल्दी वापस आएंगे होगी।
1: जी। और परदेश तो जाने के बाद धंधे ही करती है, 2 साल 3 साल के तो कर्ज हो जाता है। बड़े वाला भैया जब गए थे तो 8 साल के बाद हुआ है,
0: 8 साल
1: साल के बाद। और जो हम लोग स्टार्टिंग में जो स्थिति था ना दी, ये खाने की जब वो दौर याद आता है, मेरा तो भगवान बहुत कुछ दिए है, ऊपर वाला बहुत कुछ दिए है दी, ऊपर वाला बहुत कुछ दिए कि अगर हम चाहें तो दूसरे किसी के खिला सकते हैं, दे सकते हैं। और मैं और कोई वो काम करे या ना करे, बाकी मैं अपने घर में उस चीज करती हूँ। मुझे कोई रोक टोक नहीं करता कि ये चीज तुम काहे दी काहे की। तो आज मैंने सोचा था कि आपसे बात कर लूं। अब मैं जी लेट से इसलिए किए कि आपसे जरूर बात हो। और मैं बताऊं, जो मेरी सिस्टर आपके बारे में जो बोल रही थी, आपकी आवाज सुनकर बहुत खुश हुई रेडियो ऑन यार।
0: चलिए
1: बहुत खुश हुई।
0: तो रानी जी मैं आपको बात बता दूं कि ऐसे इमोशनल नहीं होते, जब आप नहीं कहिएगा तो कैसे जाएंगे, आप ही बताइए।
1: वो तो बात है दी। और मैं सच बताऊं, मैं उस दिन खुद कह रही थी कि तुम जाएगा उस दिन मैं हट जाऊंगी, बोला ऐसे मत करना। और मैं बताऊं ना दी, मुझे बचपन से कभी भी किसी के दुख दर्द देखा नहीं जाता है मैं कभी भी। और मैं बताऊं एक बात और, मैं 2 थप्पड़ खा भी लूं तब अंदर से मेरा अंदर से वही हंसी रहता है दी।
0: चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले चलेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमरजैट पर।
10: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो।
12: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 9.4 एफएम में।
12: नमस्कार।
11: नमस्कार,
12: सुधीर से बोल रहा हूँ।
11: जी सुधीर जी, कैसे हैं आप?
12: बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
11: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
12: घर का मौसम का क्या हाल चाल है?
11: मौसम धूप तो निकला हुआ है,
12: बारिश नहीं हो रही है ना?
11: नहीं यार, आपकी तरफ?
12: हम लोग की तरफ भी काफी तेजी धूप है, लेकिन बारिश लगभग लगभग 1-2 दिन में हो ही जाती है।
11: अच्छा, तो अभी बारिश हो रही है?
12: नहीं, अभी बारिश नहीं हो रही है।
11: अच्छा, मतलब
12: मौसम, हाँ मौसम बहुत अच्छी है, लेकिन अभी काफी तीखा धूप है आज।
11: चलिए, बहुत दिनों बाद धूप जो निकला हुआ है।
12: जी जी, नहीं धूप निकलती है वैसे, लेकिन आज पूरा खिल के धूप है, बहुत कड़ाके की धूप है।
11: अच्छा,
12: गर्मी भी है। आज सुना दीजिए मैम, भोजपुरी फिल्म खेसारी लाल और सिकपी राज का कोई नया मैं सुना दीजिएगा आप अपने पसंद से।
11: अच्छा, कोई भी?
12: जी जी जी, डुएट सॉन्ग सुना दीजिएगा, खेसारी लाल यादव और सिकपी राज की आवाज में भोजपुरी गाना, कोई अच्छा सा।
11: ओके जी, और डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
12: जी, सबसे पहले मैं आपको और रेडियो रूम के जितने भी लिसनर है सबको सुनाना चाहता हूँ बिन से।
11: ओके सुधीर जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
12: जी मैम।
11: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 एफएम।
12: थैंक यू मैम।
11: वेलकम।

0: हेलो,
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिन 90.4 FM में।
1: मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरा का।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ हम अच्छे हैं। बहुत देर हो गया, ये घंटा टाइम निकल गया।
0: जी जी
1: 11 बजे चालू हुआ, 12 बजने वाला है।
0: जी
1: तो हमको गाना सुनाइए मैडम।
0: बता दीजिए।
1: देखो तो अभी गाना याद था, अभी भूल गए। हाँ, तुम बंसी बजाते हो।
0: तुम बंसी बजाते हो और इस
1: अलका का गाना है।
0: अच्छा जी,
1: तुम बंसी बजाते हो सारी रात जगाते हो,
0: जी जी
1: ऐसा ही गाना है। बहुत अच्छा मधुर गाना है।
0: जी जी गाना तो बहुत कुछ है।
1: तो यही गाना हमको सुनना था, तो सुनवा दीजिए मैडम यही गाना।
0: जी जी बिल्कुल। और ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: हाँ हाँ ये तो बात सही आप बोली, खासकर ये आपके नाम में रहेगा और सोनी जी के नाम में रहेगा, दो आदमी के नाम में रहेगा गाना। और एक हम सुनेंगे, तीसरा हम है।
0: जी जी
1: बाकी लोगों को क्या सुनवाना है वो तो सुन के ऐसा ही गच हो जाएंगे, वो लोग कहेंगे वाह क्या गाना है।
0: तो आपने गाने की फरमाइश बहुत ही अच्छा की है।
1: हाँ हम तो गाने की फरमाइश अपने हिसाब से तो अच्छा ही करते हैं, पर कितने लोगों को तो बुरा भी तो लगता होगा।
0: नहीं नहीं ये गाना जो बताए बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
1: अरे ये तो गाना तो ये था, एक मीरगंज में कलश यात्रा निकला था है ना, हम उसी दिन से इस गाना पर हम फिदा हो गए हैं। जो कलश यात्रा में बहुत से मतलब औरतें थी और सब लोग थे, पर जो गाना ही मैं सुना उसमें तो बहुत अच्छा लगा हमको है ना।
0: जी जी,
1: तो ये कलश यात्रा हमको मीरगंज का याद आता है, तो इसीलिए हमको सुनना अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा वो जो वो बड़ा स्पीकर में बजा था ना, तो उसमें साउंड बहुत खुल के आया था, तो अच्छा लगा। वैसे तो गाना तो हम तो सुन लेते हैं अपने तो रेडियो में, तो सब उसका मजा और बड़ा स्पीकर का मजा अलग अलग है।
0: जी जी,
1: उसी को मजे लेकर के मैं सुनना चाहता हूँ इस गाने को। और भी कहिए गाना आ जाते, आज तो हमको फरमाइश करना था वो गाना सुमन कल्याणपुर का गाना। वो सुमन कल्याणपुर जानती हैं?
0: नहीं।
1: वो सिंगर है वो।
0: अच्छा।
1: लता जी के टाइम का है, सेम उनका आवाज लता के जैसा है।
0: अच्छा जी।
1: हाँ सुमन कल्याणपुर कर उनका नाम है।
0: अच्छा।
1: मेरे वतन के लोग वही तो गाने वाली थी सुमन कल्याणपुर कर। आज भी लोग समझते हैं कि उन्हीं का गाना है, लेकिन वो रिहर्सल में थी और उसके बाद से जो लता जी को ये गाना दे दिया गया है ना। हाँ तो रिहर्सल में अपना गाना प्रदर्शन कर चुकी थी, तो लोगों को बहुत पसंद आया था मेरे वतन के लोगों है ना। तो वैसे बहुत से गाने हैं सारे सुमन कल्याणपुर कर का, लोग अब नाम नहीं जानते हैं, इस सिंगर का नाम नहीं जानते हैं लोग बहुत, लेकिन एक एक सिंगर है।
0: जी जी बात तो सही है।
1: तो सुनाइए यही गाना मैडम।
0: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते
1: हैं। अच्छा एक मिनट, हम लगभग 12 बजे में लोग कॉल किए हैं, तो इतने के टाइम में गाना आ जाएगा क्या? 5 बजे से शुरू होगा तो 6 बजे आ जाएगा गाना मेरा?
0: जी जी बिल्कुल आ जाएगा।
1: अच्छा हम टाइम मिलाते हैं, 6 बजे से 5 मिनट पहले ही रेडियो चालू करेंगे।
0: जी जी, अगर आज नहीं बजा तो कल बज जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल आए हुए हैं, आगे पीछे हो जाता है कॉल।
1: और हो जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन आज बजेगा तो फिर एक घंटा जैसे हम लेट करके हम कॉल किए हैं, तो फिर एक घंटा लेट करके बजेगा ना?
0: नहीं नहीं, अगर देखिए कॉल निकालते समय इधर उधर हो जाता है, तो कहीं शायद आपका एक
1: नंबर। क्यों आप लोग तो क्यों नंबर वाइज क्यों नहीं करते हैं आप लोग?
0: तो अब हमारे हाथ में नहीं ना है, अब हम लोग कॉल निकालते हैं, लोग टेस्ट करते हैं, तो कॉल इधर उधर हो जाता है।
1: अच्छा ये बात,
0: मिक्सिंग हो जाता है, तो जिसका पता रहता है उसका। जो आप बोल रहे हैं लेट से कॉल किए हैं, आपका आगे बच गया तो।
1: अच्छा ये कौन आदमी था मैडम? आई तो सुने हैं बड़ा प्यार से आप बात की थी, कोई एक आदमी है वो बाहर में काम करता है, उसके अंदर घर पे जो है वो बोरिंग है, उसके पिताजी जो है आटा चक्की चलाते हैं है ना, वो सब बात उसमें कह रहा था है ना। तो आप पूछी थी कि आपका हाथ अभी कैसा है? मतलब उसका तबीयत भी खराब था उस आदमी का, लेकिन बड़ी प्यार से बहुत देर तक बात हुआ था। हाँ वही मैं दिल लगा के सुन रहा था, आज वही तो सुन रहा था है ना। हाँ तो पता नहीं और नाम हमको याद नहीं है ना, तो हम बताते हैं, लेकिन आप उसको जानती हैं? हाँ उस आदमी को जानती हैं, बहुत प्यार से बात हो रहा था। मैं सोचा कि कभी कभी हम भी तो भाई प्यार से बात करेंगे मैडम से।
0: आपको वैसे भी करते हैं?
1: अच्छा मैडम हमारा घर किधर है?
0: जी
1: हमारा घर कहाँ है?
0: अगर आपको बताए तो रिकॉर्डिंग हुई होगी, उतना याद नहीं मुझे।
1: याद रहता है बहुत आपको, याद रहता है ना, लेकिन ठीक है ऐसा ध्यान में होना चाहिए, ऐसा दिल दिमाग होना चाहिए।
0: जी जी चलिए तो
1: ठीक है मैडम। हाँ हाँ सुनाइए
0: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-6575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-300-99-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 FM में।
9: नमस्ते मैम।
8: नमस्ते,
9: कैसे हैं?
8: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं?
9: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ।
8: तो क्या कर रही थी?
9: जी मैं कॉल ट्राई कर रही थी, बहुत देर के बाद।
8: चलिए चलिए, अब जाके लगा है कॉल।
9: जी
8: तो नाम बता दीजिए अपना।
9: मैं शबनम सिद्दीकी बात कर रही हूँ।
8: और कहाँ से?
9: जी खार से।
8: चलिए तो शबनम जी, कौन सा गाना सुनिएगा?
9: चंदा।

0: गाना तो बहुत ही अच्छा है
1: जी मैम।
0: तो शबनम जी, ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: हाँ, आपको चाहते हैं।
0: ओके शबनम जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी हाँ मैम, आप माइंड में लग रही है, आप जान सकते हैं
0: जी,
1: आपका नाम जान सकते हैं?
0: जी जी बिल्कुल, मेरा नाम मनोरमा।
1: आप न्यू लग रही है?
0: हाँ जी,
1: पहले बार आपका मेरी को हो रही है।
0: जी जी, आपकी आवाज कट रही है, एक बार और बता दीजिए क्या बोली है।
1: मैंने बोला कि मेरे तो खराब हो गई है।
0: अच्छा ठीक है, तो प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम
0: जी जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी
1: बोल रहे हैं सोमवार के दिन गाना फरमाए थे तो लेट से आप बजा दी
0: जी। तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
1: मैं खाना खा लिया है आप?
0: हाँ जी खाना तो हो गया, और आप खाएंगे?
1: हाँ मेरा भी हो गया है, तो गाना सुनवा दीजिए।
0: बता देंगे।
1: मेरे भाई मेरे दुश्मन मेरे हमसाए।
0: क्या मनीषा जी ये गाना मुझे गा के बताएंगी?
1: नहीं आप दूसरे दिन गा देंगे।
0: चलिए कोई बात नहीं है। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: जी हम आपको भारती मैम को, दिव्या मैम को, सोनी मैम को, और अपने दीदी को, छोटे भाई को, और रेडियो रिव्यू सुनने वाले सभी दोस्तों को।
0: ओके मनीषा जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: थैंक यू।

0: Now pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up,
1: hello.
0: Pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up,
1: hello.
2: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
3: श्रोताओ अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009294911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238478 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
11: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
10: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
11: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
10: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
11: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
10: अभी कॉल करें 9289922567 या 9774-86165
11: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
12: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो 96.4 FM पे समय 9:23 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप तो जानते ही हैं जो हमारे पुराने श्रोतागण हैं, कुछ नए श्रोतागण भी सुन रहे होंगे तो उन सभी से मैं निवेदन पूर्वक बता दूं कि नंबर है 72 77 16 65 96। इस पर टेक्स्ट मैसेज करना है और मैसेज में अपना नाम, गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं उस स्थान का नाम टाइप करना है और फिर आप ध्यान देंगे कि गाने की फरमाइश पुराने ही करनी है, क्योंकि यह रात्रि का समय है और रात्रि के शो में केवल पुराने गाने ही अलाउ है। तो आप लोग समझेंगे थोड़ा सा और पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में अपना हाजिरी देंगे, फिर हम आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरा करेंगे। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि भैया मुझे सॉन्ग सुनना है, ओ किसी और से मिल के आ रहे हैं। माय नेम इज दीपक एंड जेलर, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है और आपकी गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार और सभी को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में। दिलीप राम जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आगे मैसेज पहुँचा बुलेट चौधरी जी भड़रिया थाना क्षेत्र 3 भेड़िया से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना है, ईमान डोल जाएंगे। ओ चलिए, आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे, फिलहाल स्वागत है आपका और आगे मैसेज। ओ चलिए, फिलहाल हम गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहले गाने के फरमाइश किए हुए हैं दीपक एंड जेलर जी, तो इन्हीं के गाने को प्ले करते हैं। जो भी श्रोतागण जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, वो अभी टेक्स्ट मैसेज करें। जितनी जल्दी मैसेज हमारे पास पहुँचेगा उतनी जल्दी आपकी फरमाइश पूरी होगी, तो आप जल्दी से पहुँचाएँ और जल्दी से गाने के साथ इंजॉय करें और किसी को सुनवाएं। फिलहाल गाने को हम प्ले करते हैं दीपक एंड जेलर जी की और सुनते हैं रेडियो 96.4 FM पे।

कमाल के सॉन्ग सुन रहे हैं आप सब रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे। और इस गाने के फरमाइश करने वाले हैं दीपक एंड जेलर जी, लिखे हुए हैं कि थैंक्स भैया, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। और बने रहे हमारे साथ, आगे कई श्रोतागण की फरमाइश भी पूरी होंगी और कमाल के गाने की फरमाइश भी आए हैं। आगे मैसेज और लिखा गया है कि गाना पतली कमर लंबे बाल, सुरेश शाह जी त्रिब्रवास से मैसेज किए हुए, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है और आगे मैसेज पहले पहुंचे हुए हैं और गाने के फरमाइश किए हुए हैं दीपक एंड जिलर जी की फरमाइश तो हम सभी अभी सुन रहे थे। और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं दिलीप राम जी की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है। मेरे जुल्फों को ना छोड़ो, मेरे जुल्फों को ना छेड़ो, सुनाना है आपको और शगीर जी और निशा जी, रोशनी जी, वीरेंद्र भैया जी को और सभी सुनने वाले को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे। रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। दिलीप जी, आपसे निवेदन है कि आप बीच में से गाने के फरमाइश का नाम ना बताएं, आप क्लियर हो जाए कि कौन से गाने सुनने हैं। आपके द्वारा फरमाए गए सॉन्ग से मिलते जुलते कई सॉन्ग मिल रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है हमें कि हम आपको सुनाएं तो कौन से सॉन्ग सुनाएं। कुछ नए गाने भी आ रहे हैं, कुछ पुराने गाने भी आ रहे हैं, लेकिन आपके लिखे गए शब्दों के अनुसार तो कौन से सुनाएं आप क्लियर बता देते तो बेहतर रहता। फिलहाल हम आपके गाने को रोकते हैं, क्लियर बताने के प्रयास करें, हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। फिलहाल आगे कुछ मैसेज पहुंचे हुए, मैसेज में गाने की फरमाइश है और गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं बुलेट चौधरी जी का, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है ईमान डोल जाएंगे। कुछ मैसेज भी पहुँच चुके हैं और लिखा गया है कि हेलो सोनू भैया नमस्ते, MD 97 दरभंगा भाजीतपुर से, और मुझे गाना सुना दीजिए फिल्म अकेले हम अकेले तुम, ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरे। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आप बन रहे हमारे साथ, थोड़ा सा वक्त दें हमें। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर मैं सन्नी पटेल, सॉन्ग बहुत जताते हो चाहा हमसे। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और यहाँ पे दिलीप जी लिंक शेयर कर दिए हैं, तो चलिए देखते हैं आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश करते हैं। और आपने गाने के फरमाइश किए हुए ये गाने हमें मिले लेकिन आपने जो बोल दिए हैं थोड़े उल्टे बोल दिए हैं, जिसकी वजह से हमें कन्फ्यूजन हो गई थी कि कौन से गाने सुनाए आपको। तो फिलहाल आपके फरमाइश हम प्ले करते हैं किशोर कुमार जी की आवाज़ में और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
6: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रामछिम 90.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। लिखा गया है कि मधुसरिया से कहते हैं गुड इवनिंग सर सभी दोस्तों को, और इस मैसेज को करते हैं राजीव कुमार यादव जी। थोड़े से उल्टे पुल्टे मैसेज लिखे हुए, कोई बात नहीं, हम थोड़ी से सुधार किए हैं। और अगले मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया शामिल करने के लिए शो को। चलिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रामछिम सुनने के लिए, आगे भी सुनते रहें, बने रहें हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सर ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, प्ले कर दीजिएगा। मैं सनी पटेल, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू, कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, और जैसा कि मालूम हुआ है कि आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम आज थावे माँ का दरबार जाकर हम और मैडम जी पूजा अर्चन की और उनका आशीर्वाद लिए। फिर वहाँ से लछवार देवी माँ का जाकर आशीर्वाद लिए। सोचा था कि आपसे मिलने पर समय नहीं था। वहाँ से फिर हमें रामायण मंदिर चकिया जाना था। वहाँ गए, प्रार्थना की है। चलिए, अच्छी बात है। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है, और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके मैरिज एनिवर्सरी पे। आप हमेशा हंसते मुस्कराते रहें, इतने सारे दर्शन पूजन की सारी शिकार हो, आपके ऊपर हमेशा खुशियाँ का बहार हो। फिलहाल आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज को देखते हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचे हुए लिखा गया है कि बुलेट चौधरी भड़रिया थाना क्षेत्र 3 भेड़िया से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं ईमान डोल जाएंगे। तो इनकी फरमाइश हम प्ले करने को बोले थे दिलीप जी के गाने के समय, और फिर उनके गाने हम सुनाए। तो इनके गाने हम प्ले करते हैं। बुलेट जी, आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

कमाल के सॉन्ग सुनने हैं हम सब रेडियो रमझिम 94.4 एफएम पे शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मिसेस पहुँचे हैं और अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। और गाने की फरमाइश करते हैं सुरेश साजी, पतली कमर लंबे बाल, त्रिब्रवा से मैसेज किए हुए। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और सुनेंगे आपके गाने के साथ, इंजॉय करेंगे हम सभी। आप भी बने रहे हम सबके साथ, अपने गाने के साथ साथ इंजॉय करें रेडियो रमझिम 94.4 एफएम पे।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज भी पहुँचे हुए मेरे पास और आगे गाने की फरमाइश लिखा गया है कि प्लीज़ सर मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आपके ही सॉन्ग प्ले करने ही वाले थे, तब तक आपका मैसेज भी पहुँचा हुआ है तो आपके ही गाने हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे राजू कुमार यादव जी कहते हैं सॉन्ग सुनना है, तो राजू जी आपकी फरमाइश तो हम पूरी किए हैं, तो आप दूसरों को भी मौका दें ताकि दूसरा कोई भी अपने गाने सुन सके। फिलहाल बने रहे आप, आपकी भी बारी आएगी तो हम आपकी भी फरमाइश पूरी करेंगे। अब इस सप्ताह सुना दिए तो अगले सप्ताह आपकी बारी तो बिल्कुल आएगी। फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं और गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं सन्नी पटेल जी की, और गाने का फरमाइश किए हुए हैं बहुत जताते हो चाह हमसे, करोगे कैसे निगाह हमसे, ए दिल ए दिल ए दिल। बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सब।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हम सब रेडियो रेम छिम 94.4 FM पे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि हेलो सर नमस्ते, मैं संदीप प्रजापति बंदीपुर जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि मुझे सॉन्ग सुनना है, प्लीज़ सर सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। तो समय हमारे पास बहुत कम बचे हुए, देखते हैं, कोशिश है आपकी फरमाइश हम प्ले कर पाएँ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ, थैंक यू सर सॉन्ग प्ले करने के लिए। और यह सॉन्ग कैसा लगा? मैं सन्नी पटेल, बिल्कुल काफ़ी प्यारा आपके द्वारा फरमाए गए सॉन्ग अभी तो हम सभी सुन ही रहे हैं। आगे मैसेज पहुंचे हुए और आगे मैसेज गाने की फरमाइश प्ले करते हैं हम। वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर अक्सर नेपाल बॉर्डर से मैसेज किए हुए हैं और गाने की फरमाइश में कहते हैं कि ये सॉन्ग हमें होठों पे आने लगा है। और फिल्म खतरों के खिलाड़ी से मोहम्मद अजीज साहब और अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ों में सॉन्ग तुमसे बना मेरा जीवन, प्लीज़ इस सॉन्ग को हमें सुना देंगे? तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रिम छिम 94.4 FM पे।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH27 चैन पट्टी गोपालगंज।
4: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89793।
6: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
8: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर,

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852।

तो अभी आप लोग सुन रहे थे हमारी तरफ से एक प्यारा सा गाना, और गाने की बोल थे अपना राजा के फैन हम बानी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है और हमारे काफ़ी सारे लिसनर हमसे जुड़ चुके हैं, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि कैसी हो आप, और एक मेरे अच्छे से गाना बोल रहे हैं, बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है, और आपके भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भोला गुप्ता बेतिया से बोल रहा हूँ और सागर पोखरा से, और गाना सुनना है, पवन सिंह के गाना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि बिट्टू कुमार लखीसराय सूर्य गढ़ से, नमस्कार भारती जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते भारती मैम, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ जलंधर पंजाब से, गोविंद कुमार, आज मेरे भी गाना बजा दीजिएगा।

तो जी बिल्कुल, आपके गाने की आज फरमाइश पूरी की जाएगी क्योंकि आज आपका दिन है। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्कार, मैं कैसी हैं और सभी रेडियो दोस्तों को प्रणाम आदाब। हम ओम साईं टेलर बंजारी रोड पुलिस लाइन के सामने गोपालगंज से राघव जी, और लिख रहे हैं कि न जाने क्यों हमें आंसू बहाना नहीं आता, न जाने क्यों हाले दिल बताना नहीं आता, क्यों सब दोस्त बिछड़ गए हमसे, शायद हमें ही साथ निभाना नहीं आता। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं राघव जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते, क्या हाल है जी। और जय किशोर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं भारती मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे लंदन से, और मैं भी जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हमारे पास जो कि लिख रहे हैं नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल है मैम, गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है जी, आपके भी गाने की आज फरमाइश पूरी की जाएगी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं कि जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, आ गई नहीं हमहूँ और मेरा भी हाजिर लगा दीजिए मैम, और वाओ सुपर सॉन्ग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं सभी रेडियो को नमस्ते, मिथुन शर्मा बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं सन्यासी रंजन जी की, गोड़ छूके गोड़ लागत नहीं भारती जी, हम हूँ आ गिलबानी हमरो हाजिर लगा दी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी मेरी तरफ से प्रणाम। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं, लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैम, मेरा नाम सोनालाल कुमार है और मैं अरे राज का रहने वाला हूँ, और मेरा भी एक गाने की फरमाइश है, बजा दीजिएगा। और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और गाने की बोल है बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, नसरुद्दीन का गाना है। तो जी बिल्कुल नसरुद्दीन का गाना है, तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: छोटे से ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91। जी हाँ, 9852-78-82-91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। जी हाँ, 7277-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, जी मैडम जी, मैं हिजरा नवादा से मिथिलेश चौहान बोला तैनी गाना बहुत सुपर चला था और एगो हमरो गाना के फरमाइश बा और लिंक भेजले बानी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं कि, हेलो भारती मैम, मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं सिरनी मोहाली का रहने वाला हूँ और मेरा भी एक गाने की फरमाइश है। और यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि, किरण कुशवाहा, मुकेंद्र जी, प्रियंका, माधुरी, प्रिया, रोशनी, ब्यूटी, परवीन, श्याम देव यादव और सभी रेडियो दोस्त को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और यदुवंशी, हरकेश राज और देवापुर शाहबुद्दीन टोला से सभी साथ में जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश और वॉइस भी पहुँची हुई है तो आपके गाने को भी प्ले किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं सोनालाल कुमार जी की, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मिथिलेश कुमार शर्मा, नमस्कार भारती मैम, हम भी गाना सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल पहुँची हुई है तो बहुत बहुत स्वागत है और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैडम जी नमस्कार, हम लोग भी आपका कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा चल रहा है। और लिख रहे हैं, काहो सन्यासी बाबा जी का हालचाल बाहो। और जय माता दी उमा शंकर सिंह और अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह, रुद्रपुर, देवभूमि, उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि, हाय गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप और मेरे भी गाने की फरमाइश है और दिवाकर द्विवेदी का गाना है, तो जी बिल्कुल आपके गाने को भी प्ले करूंगी। और खान मिनरल वाटर, खान गंगा पानी। और मेरा नाम मुकेश है और मैं अयोध्या से हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि हाँ मैम, हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। और बहुत बहुत स्वागत है। और आपके गाने को मैंने प्ले कर दिया है, परसों का ही प्ले किया है। और इसी के साथ यहाँ जो कि मैंने मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं, मेरा नाम समीर अली खान है और मैं BR 22 बेतिया ज़िला रामनगर से हूँ और मुझे गाना सुनना है। गाने का बोल है और यहाँ गाने की बोल पहुँची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, क्या हाल चाल है? विनोद कुमार चौहान, अभी मुंबई से सुन रहा हूँ और मेरा घर बिहार का वही है। और गुड मॉर्निंग मैम। तो आपको भी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया सन्यासी रंजन जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं, ठीक बा उमा शंकर जी। और यहाँ पे हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं और गाने की बिल बोल है, ममता के अनमोल खजाना, दिल से तेजा। और खेसारी लाल की गाना है और लिख रहे हैं, गाना बजवा दी और गाना बजा दी। तो जी बिल्कुल, आपके भी गाने को चलिए बिना देरी किए प्ले करते हैं और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग लाडला मूवी का।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे पवन खेसारी लाल जी की आवाज़ में काफ़ी खूबसूरत सा गाना ममता की अनमोल खजाना, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना था और गाना सुन के काफ़ी अच्छा लगा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि आपका रेडियो रिमझिम तमिलनाडु से सुनते हैं मैम, और आपका प्रोग्राम बहुत, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैम, तो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और मैसेज करने वाले हैं सोना लाल कुमार जी, और ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँच गया, लिख रहे हैं थैंक यू दी मेरा गाना प्ले करने के लिए, और मेरा नाम कृष्णा है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख नहीं रहे हैं गाने की, यहाँ लिंक भेजी हुई है, तो जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं नमस्ते भारती मैम क्या हाल है, और इनके तरफ से भी गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। जसवंत कुशवाहा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है। और आपके गाने को मैंने मंगलवार को ही प्ले किया था, तो आज मैं आपके गाने को प्ले नहीं कर सकती, और अगले मंगलवार को फिर से आपके गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है, जो कि लिख रहे हैं मिथिलेश कुमार शर्मा जी की नाइस सॉन्ग मैम, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि सन्यासी रंजन बाबा जी के लिए नाशपाती पहाड़ों वाला भेज दिया है मैडम जी, उनको भेज दीजिएगा। और उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, और यहाँ सन्यासी रंजन जी के लिए नाशपाती पहुँचा हुआ है। और इसी के साथ जो कि हमारे पास यहाँ गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, पवन सिंह का गाना है और गाना सुनना चाहते हैं, भोला गुप्ता बेतिया से जुड़े हुए हैं सागर पोखरा से, और गाने की बोल है मन लागत नेखे बाबूजी गाना है, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 AMZ पर।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:40 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सभी को बता दूं कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड करके आप रेडियो रिमझिम के सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी फ़ोन के माध्यम से। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहां हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि नाइस सॉन्ग, और मैसेज करने वाले हैं सोनालाल कुमार जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, जी मैडम जी, मिथिलेश चौहान हिजरा नवादा संग्रामपुर से, और पवन सिंह के बेहद बहुत अच्छा गाना बज रहा था और अच्छा लग रहा था, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, प्रणाम बा। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और आपके भी हमारा तरफ से प्रणाम बा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सन्यासी रंजन जी की मैसेज लिख रहे हैं कि रहू MS से ले ली आधा भारती जी। तो जी बिल्कुल रहुआ, इतना कहते नहीं तो आधा रख लेता नहीं, बाकी आधा ना एक दो को रख लेता नहीं और बाकी रहुआ खाई। और यहाँ उमा शंकर जी के लिए लिख रहे हैं कि जी धो के खाए बा या डाउनलोड करके। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू दी गाना बजाने के लिए आप। और लिख रहे हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और मैसेज करने वाले हैं भोला गुप्ता बेतिया से, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, कैसी हैं आप, क्या हाल है, सब ठीक है ना? और मैं रोहित, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, रोहित देहरादून से, और लिख रहे हैं कि इश्क के चक्कर में बेकाबू ना बनना, बाबा बन जाना पर किसी के बाबू ना बनना। और ये आपकी बात तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जी की लिख रहा है, मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो जी बिल्कुल आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा करूँगी, पर उससे पहले जो कि यहाँ दो तीन गाने की फरमाइश बची हुई है उसे पूरा कर दूँ, उसके बाद आपके गाने की फरमाइश को पूरा करूँगी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, सब लिसनर को मेरी तरफ से मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा मैम, और मैं हजरा सूरत से जुड़ी हुई हूँ और लिख रही हैं कि हमें चाय से इश्क क्या किया, चीनी को बुरा लग गया, दाम बढ़ाकर बोली, अब देखती हूँ इश्क कितना गहरा है। और काफ़ी बेहद खूबसूरत मैसेज है हजरा जी की तरफ से, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास जो कि लिख रहे हैं प्लीज़ मैम प्ले सॉन्ग। तो जी आपके भी गाने को प्ले करूँगी, पर उससे पहले यहाँ जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई थी, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं बिट्टू कुमार लखीसराय सूर्यगढ़ से, और लिख रहे हैं नमस्ते भारती जी, और गाना सुनना है, और यहाँ पे गाने की जो बोल है पहुँची हुई है लिंक के माध्यम से, और गाने की बोल है आज अभी इसी वक्त, और आशी कवारा मूवी का गाना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफी बेहद ही खूबसूरत सा गाना और मैसेज करने वाले थे बिट्टू कुमार लखीसराय से, और गाने की बोल थी आज अभी इसी वक्त, और काफ़ी खूबसूरत गाना था। और यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रही हैं कि हाय हेलो नमस्कार सभी रेडियो रिमझिम सुनने वाले को, और मैं लिख रहे हैं मैं सोनू कुमार दुबई से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास सन्यासी रंजन जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं कि शादियों में कुछ लड़कियों के पास पैसे भले ना हो लेकिन पर्स ऐसे टांग कर रखेंगी जैसे हलवाई का हिसाब किताब इन्हें करना है। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सन्यासी जी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं मैं तो नाराज़ हूँ पर बलराम यादव मंगरू यादव हरिंदर जी पप्पू जी रेडियो रिमझिम को अब सुनने लगे हैं सब पर मैं नहीं। और मैसेज करने वाले हैं राकेश भारती उपाध्याय बक्सर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और ऐसी बात नहीं है, नाराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ कभी कभी किसी किसी के गाने आगे पीछे हो ही जाते हैं क्योंकि मैसेज बहुत सारे आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैडम जी और मुस्तफ़ा सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है नमस्कार, और मैसेज करने वाले हैं धनीश कुमार मिश्रा दिल्ली से, और यहाँ पे मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैडम जी लिंक भेज दिए हैं वहीं गाना बजा दीजिएगा, तो जी बिल्कुल आपके गाने को प्ले करेंगे। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं राघव जी की दिन हुआ तो रात भी होगी मत मन हुआ मत हो उदास कभी बात भी होगी इतने प्यार से दोस्ती की है ज़िंदगी रही तो मुलाकात भी होगी। और काफ़ी खूबसूरत मैसेज के साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती मैम अस्सलामु अलैकुम मैं भी शो से जुड़ चुका हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि

लिख रहे हैं कि संजय यादव दुबई से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और गाने की बोल है बांसुरिया अब यही पुकारे, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है, बलमा मूवी का गाना है। तो एंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि तेरे दिन अच्छे हैं तो मुझसे किनारा कर ले, तेरे दिन अच्छे हैं तो मुझसे किनारा कर ले, हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्त में काम आते हैं। और क्या बात है, क्या लाइन पहुँची हुई है इनकी तरफ से, जो कि शमशेर अली खान मैसेज किए हुए हैं। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी के बस यही वसूल हैं, अगर तू कहे तो कांटे भी कबूल है, हंस कर चल दूँ कांच के टुकड़ों पर भी, अगर तू कहे ये मेरे बिछाए हुए फूल हैं। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं दिनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि उत्तम सोनी भाई के लिए आलू बुखारा भेज रहा दिया हूँ। उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्जित सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैम जी, ये आपके लिए खुमानी भेज दिया है। और उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्जित सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से। और कभी मैंने खाया तो नहीं है, पर देख के तो अच्छा लग रहा है कि। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भेजने के लिए। और यहाँ मैसेज पहुँच गया है, जो कि लिख रहा है संजय यादव जी की, थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं नमस्ते नमस्कार, मैं भी प्रोग्राम से जुड़ गया हूँ। और सागिर आलम खान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि सोनू कुमार दुबई से जुड़े हैं और लिख रहे हैं मैम मुझे एक गाना सुनना है, और गाने का नाम यहाँ पहुँचा हुआ है, और जी आपके भी गाने को पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी नमस्कार, राधे राधे जी, और आपको भी राधे राधे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि दिखावे की हंसी हंसने की आदत हो गई है, अब तो आंसुओं को भी आंखों से शिकायत हो गई है, सोचे थे जो जख्म जो ख्वाब कभी खुली आंखों से, आज वो सारे ख्वाब एक अधूरी हकीकत हो गई है। और मैसेज करने वाले हैं सुजीत कुमार, प्रेम नगर, बस्तरा, राजा लालगंज, मिर्जापुर, UP 63 से और बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि कभी कभी मन करता है कि इंस्टाग्राम डिलीट कर दूँ, फिर आत्मा से आवाज़ आती है, पागल हो गया है क्या, इस उम्र में कहाँ भटकेगा। और मैसेज करने वाले हैं रोहित जी देहरादून से। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
2: हेलो
8: जी। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
2: नमस्ते मैम
8: जी। नमस्ते,
2: हम ढाबा से बोल रहे हैं, रामाजी प्रसाद।
8: हाँ जी,
2: गाना सुने बा?
8: जी बता दी, कौन सा गाना सुने?
2: हम तीर्थ करे नहीं जाए, घर ही मंदिर बनाए।
8: गाना भक्ति बा का?
2: ना भक्ति ना, बजान तो समझ में आई, अभी नहीं बोले वाले तो। कॉल भी बात चुकल बा,
8: हम फर्स्ट बार बजाओ तो नहीं, वही से रुआ से पूछ लेनी है
2: ना। ठीक बा, पूछल जरूरी हो बा।
8: तो गाना क्यों के सुनाऊं के बा?
2: हां, नीलम कुमारी बारी तो परपूरा केमल बारी लाइन बाजार नीतू बारी शिवान खाए बारी अनुराधा, यही लोग सुनाओ बा।
8: तो चलिए रहा और गाना प्ले करता नहीं, सुनत रही रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
2: नमस्ते।
8: नमस्ते।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी

0: डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:09 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सभी को बता दो कि आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर फेसबुक और पर विजिट करके गोपालगंज की हालचाल रेडियो रिमझिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं उमा शंकर जी की, मैम जी बहुत ही मीठा होता है, इसको सुखा कर भी खाया जाता है तो देखने में काफ़ी तो मज़ेदार दिख रहे हैं कि खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती मैम अस्सलाम वालेकुम, मैं भी जुड़ चुका हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले का तो नाम नहीं दिख रहा है, और वैसे आप बता देते हो आपका नाम तो बहुत ही अच्छा होता। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि आज मेरे गाने का 1 हफ्ता हो गया है, आज गाना सुनने को मिलेगा। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है रोहित जो कि देहरादून से जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि रात को पानी पीने उठा था, घर वालों ने चोर समझकर पीट दिया, बहन को पता था कि मैं ही हूँ, फिर भी लोहे के पाइप से मारा है पागल ने। और जी बहनें तो ऐसी ही होती हैं, और भाई बहन में ऐसे थोड़े बहुत ना हो तो मज़ा कहाँ आता है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, और हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं मिथुन शर्मा बेंगलोर से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है और गाना सुन रहे थे लोग। मिथुन शर्मा बेंगलोर से जुड़े हुए थे और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, नमस्ते भारती मैम, हम भी आपके शो से जुड़ गए हैं और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं सिद्धार्थ पासवान बरौली से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा नाम मोहम्मद साबिर अंसारी है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं सोनू कुमार और सिरनी मोहल्ली से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं नई झुलनी की छैया, निरहुआ का गाना है, तो प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की आपके गाने को प्ले करते हैं और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है, तो एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ लिख रहे हैं कि अर्ज किया है कि कितनी दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है सोनू कुमार जी की तरफ से। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम, राधे राधे पाजी यूपी चौवन से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुए हैं हमारे पास जो कि लिख रहे हैं बहुत अच्छा गाना लगा। और मैसेज करने वाले हैं राम कुमार पांडे लंदन से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुए हैं हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि आज मैम मेरा गाना बजेगा तो जी बिल्कुल आपका गाना प्ले होगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मेरा नाम रवि कांत कुमार और मेरा घर जिला गोपालगंज के पहाड़पुर गांव से जुड़ा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं उमा शंकर भैया नमस्ते, फ्रूट डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये 6G नेटवर्क ढूंढ रहा है भैया, पहुँचा ही दीजिए। और लिख रहे हैं वाह सुपर सॉन्ग चल रहा है। और यहाँ पे जो कि हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं

और लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? और मैम एक गाने की फरमाइश है, कई दिनों से किए थे नहीं, पूरी नहीं हुई, और मैसेज करने वाले हैं दिवाकर द्विवेदी का गाना है, और खाना और गाने की बोल है कहाँ मिनरल वाटर कहाँ गंगा पानी, और मेरा नाम मुकेश है और मैं अयोध्या से हूँ। तो चलिए बिना देर किए आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बढ़िया सा गाना भोर की से नीमन, और इसके साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लग रहा है आज भी मेरा गाना नहीं बजेगा। तो जी ऐसी बात नहीं है, आज आपके गाने को प्ले करूँगी। और उससे पहले यहाँ एक गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जिसे मैं प्ले करूँगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत रेडियो रिमझिम से होगी। और लिख रहे हैं, मोहब्बत रेडियो रिमझिम से होगी दूसरे चैनल से नहीं। और काफ़ी बढ़िया लाइन बना के भेजे हुए हैं। और मैसेज करने वाले हैं मोहब्बत मोहम्मद साबिर अंसारी जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरा गाना कब बजेगा, मैडम जी प्लीज़ बजा दीजिए, दस आदमी के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ, नहीं सुनाइएगा क्या? तो नहीं ऐसी बात नहीं है, आपके भी गाने को प्ले करूँगी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि बसंत कुमार ठाकुर, सरोज रानी ठाकुर, इसर राज पप्पू ठाकुर, न्यायपारा विरई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से, और फरमाइश भेजी हूँ गाने की बोल है। और यहाँ गाने की बोल पहुँची हुई है तो बहुत बहुत स्वागत है और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, भारती मैम नमस्ते प्रणाम, राजू सोनी जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो दी नमस्ते, मैं संदीप प्रजापति बंदीपुर जिला अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, और मुझे एक सॉन्ग सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी बिल्कुल आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। पर यहाँ पे जो कि मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि मुझे ये गाना सुनना है और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। और मैसेज करने वाले हैं किरण कुशवाहा, मुकेंद्र जी, प्रियंका, माधुरी प्रिया, रोशनी ब्यूटी, प्रवीण, श्याम देव यादव जी जुड़े हुए हैं साथ में, और यदुवंशी हरकेश राज जी, और देवापुर शहाबुद्दीन टोला से जुड़े हुए हैं सभी लोग। और इनकी तरफ से एक प्यारी सी लाइन पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि लोग मिलते हैं कहानी बनकर, दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर, जिन्हें हम रखना चाहते हैं अपनी आंखों में, क्यों वो निकल जाते हैं पानी बनकर। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर हमारे पास उनकी तरफ से वॉइस के माध्यम से भी फरमाइश पहुंचा हुआ है और लिंक के माध्यम से भी। तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: मेरा नाम यादवंशी हरकेश राज है और मैं देवापुर से आबदीन टोला का रहने वाला हूं। और मैं आज जो गाना सुनना चाहता हूं, गाने का लिंक मैंने आपको भेज दिया हुआ है, और ये गाना सुनाना चाहता हूं सभी रेडियो दोस्त को, और साथ में कुछ नाम लेना चाहता हूँ अपने फ्रेंड का, किरण कुशवाहा, मुकेंद्र जी, रिमझिम जी, पायल राज, प्रिया, रोशनी, गुड़िया, कृष्णा, गुड्डू सर, सूरज मोहन भैया और उनकी बूढ़ी, पुलिस लाइन के सामने से राघव जी हैं, सामदेव यादव भटवा मर कुचायकोट, दिनेश दीनानाथ चांद, और सभी रेडियो दोस्त के साथ

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:41 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि वॉइस के माध्यम से फीडबैक पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं और जानते हैं क्या है इनका मैसेज।
5: एहसास के दामन में आंसू गिरा करके देखो, प्यार कितना है आजमा करके देखो, क्या होगी तुम्हें भूलने पे इस दिल की हालत, किसी आईने पे पत्थर गिरा करके देखो। मैम आपने मेरा गाना प्ले किया और मैं सभी दोस्तों के साथ सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू।
4: और काफी खूबसूरत लाइन के साथ मैसेज, फीडबैक मैसेज पहुंचा हुआ है। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास उत्तम सोनी जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं वाओ सुपर, बेहद खूबसूरत सॉन्ग। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू भैया नाम रखने के लिए, दिल से थैंक यू आपका। और तेरी दोस्ती, लिख रहे हैं कि तेरी दोस्ती ने बहुत कुछ सिखा दिया, मेरी खामोशी दुनिया को जैसे हंसा दिया, कर्जदार हूँ मैं खुदा का जिसने मुझे आप जैसा दोस्त से मिला दिया। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं राघव जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान में भरोसा की इतनी कमी है कि मेडिकल में कैंची, बैंक वाले पेन और ट्रेन में लोटा तक बांध के रखते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि उत्तम भाई के लिए चुस्की भेज दिया हूँ। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर जी। और काफ़ी बेहद खूबसूरत फल की यहाँ पे जो कि हमने नाम तो नहीं सुना है और भेज रहे हैं खाने के लिए, और देख के तो लग रहा है काफ़ी मीठा लगता होगा। और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगले गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, मिथिलेश कुमार शर्मा जी की तरफ से, और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है। और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई, और गाने की बोल है मेरे जीवन साथी, और लिख रहे हैं कि आज जरूर बजाइएगा। तो जी चलिए बिल्कुल बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे और काफी खूबसूरत गाना है, तो एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज पहुँचा हुआ उमा शंकर जी की तरफ से लिख रहे हैं, ये बहुत ही रसदार होता है और बहुत ही मीठा होता है, अभी तो थोड़ा महंगा है और 120 रुपया KG है, और ये और लिख रहे हैं ये शिमला मिर्च है आपके लिए मैम जी। तो जी लग रहा है आज मुझे फल और सब्जी की कमी नहीं होगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच मैम मेरा गाना प्ले करने के लिए। और मिथिलेश कुमार शर्मा जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है, और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हाय और जी थोड़ा सा वेट और कर लीजिए और आपके गाने को मैं प्ले करूंगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं उत्तम भाई राजू भैया के, भुला गए हो क्या राजू सोनी जी, और ये बात उत्तम जी आपको बताएंगे वो आपको भूले हैं या नहीं, और मैसेज करने वाले हैं राजू जी उत्तम जी के लिए। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं, यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश और क्या है इनकी वॉइस।
7: तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर की चले जाओगे। यह गाना सुने के बाद हमनी के नाम है शंभू यादव, एक जाने और बड़े अजय कुमार यादव, हरि कुमार यादव, राजू यादव, जवाहर यादव, ये सब गाना सुनेंगे। इन लोगों के साथ साथ भारती मैडम को भी गाना सुनाना है, और भारती मैडम से बस दिल से प्रणाम बा, गाना सुना दोगे भाई है। मानी जाए इंतजार में हमने के गाना सुनने खातिर बैठ।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना अल्ताफ राजा का, और गाने की बोल थी तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए। लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए, थैंक यू मैडम जी। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि और लिख रहे हैं ये मनोरमा मैम जी के लिए अंजीर भेज दिया और भेजने वाले हुए हैं उमा शंकर जी। तो मनोरमा जी अभी आप लोगों के बीच में कुछ देर बाद जुड़ेंगी तो वो ज़रूर देखेंगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं मेरा मैसेज को उत्तम भाई के पास पहुँचा दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं राजू, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि संदीप प्रजापति। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार,
1: गाना सुनने के बाद?
0: जी जी बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है। क्या एक बार और बताइए।
1: बेटा राव पीके रोज करे लड़ा रामा।
0: बेटा राव पीके रोज करे लड़ा रामा।
1: जी हाँ, मधुसरे से बोल रहे हैं।
0: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: हाँ रामा जी यादव है, और सभी रेडियो जी सुनने वाली।
0: और ये गाना आपको स्टेज शो है क्या? मतलब
1: स्टेज शो है
0: तो स्टेज शो मैं नहीं बजा सकती।
2: एक नॉर्मल गाना है, स्टेज शो नहीं है,
1: तो दूसरा बजा दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: नाची ओढ़ नहीं ओढ़ के यार के दिल पर देसी।
0: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:07 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91 और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं दिनेश जी की, भारती जी क्या खा रहे हैं अकेले अकेले, बेमानी नहीं। तो जी अकेले अकेले नहीं खा रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास उमा शंकर जी की तरफ से काफ़ी सारे फल पहुँचे हुए हैं और हमारे सारे लिसनर में बटेंगे और बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं रॉक सॉन्ग है मैम चलाइएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं प्लीज़ एक गाना बजा दीजिए। तो जी अभी आपके गाने को मैंने प्ले किया था और दोबारा मैं प्ले नहीं कर सकती। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि मिथुन शर्मा जी लिख रहे हैं बहुत लेट हो गई है मैम गाना बजाने में। और जी थोड़ा तो लेट हुआ और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं राजू भैया नमस्कार कैसे हैं आप, सॉन्ग लिख रहे हैं सॉन्ग भेजिए कोई और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग चल रहा है। और लिख रहे हैं कि मज़ा आ रहा है शो में एकदम धुआंधार शो चल रहा है और गाना भी बहुत ही अच्छा अच्छा आ रहा है। तो जी बिल्कुल आपकी बात तो सही है और गाना काफ़ी बढ़िया बढ़िया आ रहा है हमारे पास। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मेरा गाना बज जाएगा क्या। तो जी बिल्कुल आपके भी गाने को पूरा किया जाएगा पर उससे पहले यहाँ एक गाने की फरमाइश पहुँची हुई थी और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं संदीप प्रजापति बंदीपुर जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और सॉन्ग सुनना चाहते हैं और अपने दोस्तों को भी सुनवाना चाहते हैं। और दोस्तों के नाम हैं सनोज निषाद दुर्गेश गोकुल शर्मा रोहित शर्मा सभी के साथ सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल है काहे के तू गोरी मोहब्बत कैलू विनय तिवारी का सॉन्ग है और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में।

तो दोस्तों, समय होने वाला है दोपहर न्यूज़ का और आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी दोपहर न्यूज़ के बाद। तब तक आप सभी इस गाने को एंजॉय करें और जिनके भी गाने की फरमाइश पूरी नहीं की गई है दोपहर न्यूज़ के बाद पूरी की जाएगी। तब तक आप सभी एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: counterparts from UAE and France. And in Asian Games 2026, Indian men's and women's skeet teams win bronze medals in Japan. Mirabai Chanu wins silver in weightlifting. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला स्की टीमों को कांस्य पदक। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
2: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से एआई की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया।
2: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है।
1: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की।
2: बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगी। वे विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली 3 व्यापक क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी, प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
3: Look at what has emerged from the BRICS.
4: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
1: श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक में दो नए कार्य समूहों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच का चौथा चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकानगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 104 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को अपग्रेड करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक रिपोर्ट।
5: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
7: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के राष्ट्रीय समारोह में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से जुड़ी जीवन शैली के महत्व पर बल देते हुए श्री जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला केंद्र घर है और स्वास्थ्य की पहली नींव केवल दवाओं से नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
4: पीएम स्वनिधि योजना से तेलंगाना में विक्रेताओं को आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिली है। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। मार्च 2023 तक बढ़ाई गई इस पहल के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किश्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागू की गई इस योजना में तेलंगाना लगातार देश में बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहा है। राज्य में लगभग 4,47,000 विक्रेताओं तक 1,240 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची है। खास बात यह है कि स्थानीय लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 65% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है, क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
8: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
4: करीमनगर के सब्जी विक्रेता रमेश ने पीएम स्वनिधि के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करके अपने छोटे से कारोबार को बढ़ाया और अब वे रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखते हैं।
9: माय नेम इज रमेश।
10: मेरा नाम रमेश है। पिछले 3 सालों से मैं करीमनगर में सब्जी का कारोबार कर रहा हूँ। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से मुझे 10,000 रुपए का पहला लोन मिला। मैंने इसे 12 महीनों के अंदर सफलतापूर्वक चुका दिया। इसके बाद 20,000 रुपए का दूसरा लोन मंजूर हुआ, मैंने उसे भी 22 महीनों में चुका दिया। अभी 50,000 रुपए का लोन चल रहा है। मैं हर महीने बैंक की किस्तें समय पर चुका रहा हूँ। जिस कारोबार को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था, वो अब इतना बढ़ गया है कि मैं रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखता हूँ।
9: स्टॉक वर्थ 1,00,000 रुपए।
4: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए UPI लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ ये कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। हैदराबाद से श्रीनिवास एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
11: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जियां नोएल बेरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है।
12: राज्य सरकार ने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें तैनात की है और चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा गया है। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कंधमाल में कलिंगा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रही नदियों और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारत की मीराबाई चानू ने
13: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
14: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
15: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
14: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी। संतोष फर्नीचर डॉक्टर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
15: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
14: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
16: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
17: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
16: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
15: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
18: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
19: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
20: भरोसे वाले से लेंगे,
19: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
20: और कीमत भी।
19: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
21: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
22: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
23: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
24: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
23: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
25: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
23: कॉल करें 8570-32042 पे।
15: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: किस बात से डर रहा है यार, एज डिफरेंस। हर लड़की है ना अपने होने वाले में फादर फिगर ढूंढती है। फिगर उसके पास है, फादर तू है।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 7075763600 या 7075742400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710392 या 9765065750।

आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं,

और यहाँ पे मैसेज पूछ गया जो कि लिख रहा है मनोरमा जी प्रणाम। तो प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर एक और मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, हाय मनोरमा दीदी का हाल बा, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से। तो मेरा भी हाल ठीक है, आप बताइए कि आप कैसे हैं। और ये गाना सुनना चाहते हैं तो मैं गाना आपको सुनाऊंगी। इससे पहले हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर अगला मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहे हैं, मैम मनोरमा मैम जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, तो नमस्ते। और इन्होंने मैसेज किया, कैसे हैं आप? तो मैं ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिखा है, हेलो मैम नमस्ते, क्या हाल है मनोरमा जी, मैं किशोर प्रसाद, जय किशोर प्रसाद। तो

और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, नमस्ते भारती जी, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ जलंधर पंजाब, पंजाब से गोविंद कुमार, आज मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने प्ले करेंगे। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मनोरमा जी नमस्कार, मनोरमा मैडम जी मैं मिथिलेश चौहान हिजरा नवादा थाना संग्रामपुर, गाना का लिंक भेज दिया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना, आपके भी गाने को हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, गोविंद कुमार जी की तरफ से, तो चलिए बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है इनका, तो चलिए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिंजिम 90.4 FM के।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे गोविंद कुमार जी की तरफ से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पूछा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो दीदी सबके प्रणाम बा, मैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, कैसन बानी दीदी हमरो हाजिरी लगा दी जी। तो बहुत बहुत स्वागत बा राउर भी, और राउर भी हाजिरी लग चुकल बा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते मनोरमा मैम, क्या हाल है मैम? तो मेरा भी ठीक है, और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव दुबई से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, वाव सुपर लाजवाब सॉन्ग, और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे एक और मैसेज पूछा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम नमस्ते, मेरा नाम बिट्टू प्रजापति पिपरा सिवान से, मेरा भी गाना बजा दीजिए, बहुत दिन हो गया है फरमाइश नहीं किया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे एक और फरमाइश पहुँची हुई है, जो कि लिख रहे हैं, हेलो भारती जी नमस्कार, पप्पू ठाकुर बगही बाजार कटिया गोपालगंज से, मुझे भी गाना सुना है, सुना दीजिए, गाने के बोल हैं। और गाने के बोल है, दिन महीने साल गुजर जाए, और लिख रहे हैं प्ले कर दीजिए। तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं, और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे हमें

जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है गणेश कुमार जी की तरफ से। इन्होंने मैसेज किया है कि प्लीज मनोरमा दीदी गाना बजा दीजिए, तो जरूर आपका गाना प्ले होगा, लेकिन इसमें भक्ति गानों की फरमाइश नहीं होती, तो प्लीज दूसरा गाना बताइए ताकि मैं आपके गाने को प्ले कर सकूं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय गुड आफ्टरनून मैम फ्रॉम कोलकाता संजय कुमार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, आपके लिए स्पेशल सॉन्ग है बजा दीजिएगा। तो और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और हम आपके गाने को भी प्ले करेंगे। इससे पहले हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं।

जय किशोर, हाय मैम, हमें भी गाना सुना दीजिए। खेसारी लाल का तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी प्ले करेंगे हम। और ये लखनऊ के रहने वाले हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है बिट्टू जी की तरफ से, और मैसेज किए हैं मेरा नाम बिट्टू प्रजापति पिपरा सिवान से, और मेरा भी गाना चला दे।

खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे और मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं बिट्टू प्रजापति पिपरा सिवान से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रही हैं सुपर सॉन्ग बोल दीजिए दीदी लाजवाब। और मैसेज के साथ बहुत ही खूबसूरत सा लाइन पहुंचा हुआ है जो कि लिख रही हैं तुम पास नहीं हो फिर भी तुम्हारी फिक्र सताती है, तुम पास नहीं हो फिर भी तुम्हारी फिक्र सताती है, तुम मानो या ना मानो, तुम मानो या ना मानो पर हमें रोज तुम्हारी याद आती है। तो बहुत ही खूबसूरत सा लाइन था और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार मैडम जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, प्रोग्राम सुनकर हम भी मैसेज कर दिए हैं। और मैसेज करने वाले हैं गुरु नानक पूरा पंडिता पंजाब से और मैसेज किए और मैसेज किए हैं जो कि लिख रहे हैं मेरा भी कोई भी गाना शामिल कर लीजिएगा तो ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे एक और मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग चल रहा था मनोरमा मैडम जी नमस्कार, बहुत अच्छा सॉन्ग बजा रहे थे, आप मेरा भी गाना बजा दीजिए लिंक के माध्यम से भेज दें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इसके साथ यहाँ पे एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय और मैसेज करने वाले हैं सत्यम जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जय किशोर जी की तरफ से और इन्होंने मैसेज किया है हाय मैम हमें भी गाना सुना दीजिए और खेसारी लाल की आवाज़ में है लहंगा लखनऊआ। तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: तो पहला ही कहले रही प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोप्राइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
4: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
5: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
4: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए, और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं हाय मनोरमा मैम कैसी हैं, सिद्धार्थ पासवान बरौली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाली हैं इसी के साथ लिख रही हैं कि नाइस सॉन्ग, और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा कुमारी पीपरा नारायण से। और हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते

तो स्वागत है आपका भी। और ये निर्गुण गाना सुनना चाहते हैं भरत शर्मा का, तो प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं, भारती जी कैसे हो आप, हम भी लाइन में हैं, शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से। और इन्होंने एक शायरी लिखा है जो कि लिख रहे हैं, एक शायरी, एक आदमी मेडिकल स्टोर पे गया और बोला भाई साहब जहर दे दो। दुकानदार ने कहा बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेगा, तो आदमी ने रोते हुए अपनी शादी कार्ड दिखा दिया। दुकानदार के भी आंसू झलक आए और वह छाती पीट कर बोला बस कर पगले, रुलाएगा क्या, इतनी बड़ी बर्बादी का सबूत लाया है, जहर की बोतल बड़ी दो या छोटी जल्दी बता। तो बहुत ही मज़ेदार लाइन थी। और इन्होंने मैसेज किया है कि हमारे मैसेज के साथ भी ऐसे नाइंसाफी होगी, नहीं तो ऐसी बात नहीं है, सबके सारे मैसेज को देखा जा रहा है। और मैं भी न्यू हूँ तो मुझे उतना समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग के मैसेज पे भी ध्यान दूँ। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे।

साथ बढ़ेंगे आगे। और इन्होंने मैसेज किया है मैडम जी, मिथिलेश चौहान इंदिरा नवादा संग्रामपुर से, और गाना पवन सिंह का है, बहुत ही अच्छा है, तो बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत पहले से मैसेज किए हुए हैं। और गाने के बोल हैं धड़के ला तोहरे नाम करी जवा, तो चलिए गाने को प्ले करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो एंजॉय करते हैं रेडियो 90.4 FM पे।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे मिथिलेश चौहान जी की तरफ से, और उनके तरफ से मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं, मैडम जी मुरादाबाद नमस्कार, गाना बजाने के लिए धन्यवाद मिथिलेश चौहान।

इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, और इन्होंने मैसेज किया है कि संजय यादव वंशी जी का गाना है, बजा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं तो इनके नाम मेंशन नहीं किया तो मैं नाम नहीं बता सकती। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है काजल जी की तरफ से, और मैसेज है कि मैम मेरा भी गाना चला दीजिए। और गाने के बोल हैं काला साड़ी, तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिखे हैं सुपर सॉन्ग मैम, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिखे हैं कुछ सोचूं तो आपका ख्याल आता है, कुछ बोलूं तो आपका नाम आता है, कुछ सोचूं तो आपका ख्याल आता है, कुछ बोलूं तो आपका नाम आता है, कब तक छुपाऊं अपने दिल की बात को, कब तक छुपाऊं अपने दिल की बात को, आपकी तो हर बात पर मुझे तो प्यार आता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा लाइन था, और ये लाइन पहुंची हुई थी धनेश कुमार मिश्रा जी के तरफ से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और मैसेज पहुंचा हुआ जो कि लिख रहे हैं क्या मैम नहीं बजेगा क्या गाना, तो आपका गाना बजेगा, बस कुछ आपसे पहले कुछ और लोग फरमाइश किए हैं उन लोग के गाने को प्ले कर देते हैं, उसके बाद आपके भी गाने को हम प्ले करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिता नारायण से, और इन्होंने लिखा कि प्लीज़ दीदी गाना बजा दीजिएगा, और मेरे गांव का मेला है 24 तारीख को जुलूस और 25 को मेला है, पूरे रेडियो रिमझिम लोगों को बोल दीजिएगा आने के लिए, पिपरा गांव में बहुत भारी मेला लगता है। और इसी के साथ लिखे हैं कि आप भी आ जाइएगा मनोरमा जी और मेरा गाना प्ले कर दीजिए, तो जी कोशिश किया जाएगा। और तो चलिए इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं, और गाने के बोल हैं टिकली सटले बानी। तो चलिए गणेश जी आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

गणेश जी की तरफ से ये सॉन्ग था और इन्होंने मैसेज पहुंच गया है और मैसेज किया है कि सुपर सॉन्ग मनोरमा दीदी, ये गाना सभी लोग को डेडिकेट करना चाहता हूँ और स्पेशल मैं आरजे सोनी दीदी को। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है जबरदस्त मैडम जी, आज का शो बहुत बढ़िया गाना बज रहा है, सब गाना भी मैंने सुना दी दिन भर, बहुत बहुत अच्छा, प्रणाम नमस्कार, मैं मिथिलेश चौहान। तो बहुत ही आपको भी शुक्रिया और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है जो कि कॉल के माध्यम से है, तो चलिए लेते हैं कॉल। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। हाँ जी, जी बता दीजिए। जी जी एक बार और बता दीजिए। और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहेंगे? ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहेंगे? जी तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं। और जी तो प्ले करते हैं, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर इस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है कि सुपर सॉन्ग लाजवाब गाना बा, और मैसेज करने वाली है

मैसेज करने वाला जो कि लिख रहा है कि रउआ से शिकायत बा गाना काट के बजाओ तो नहीं, तो बता दें यहाँ पे बहुत सारे लोग बात तो सबके गाना पूरा कहीं जाइए तो कुछ लोग छूट सकेला, तो उतना गाना तो उतना लंबा लंबा गाना तो नहीं है बात सगत, एक खातिर माफ़ी मांगल चाहते हैं रउआ से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मनोरमा मैम माशाल्लाह, और ये लिख रहे हैं कि मैं हैदराबाद से सभी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैडम जी आपसे निवेदन है कि आप कॉल आता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक कम कर लीजिए। तो जी सॉरी, मुझे नहीं पता चल रहा था कि आवाज़ जा रहा है कि नहीं, पहली बार कॉल मतलब उठाए हैं तो दिक्कत हुआ, इसके लिए सॉरी, और आइंदा से ध्यान रहेगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पूछा हुआ जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी टाइम तो बहुत कम है, गाना कल भेजेंगे और कल चला दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैसेज करने वाले हैं निजामुद्दीन सऊदी अरब से, और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैम आई एम राहुल राज फ्रॉम बंगालपुर बिहार, माई सॉन्ग रिक्वेस्ट जब से दिल तुमसे मिला है ये दिल आशिकाना एंड डेडिकेट टू माई फ्रेंड्स आनंद एंड ऑल लिसनर को। तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे राहुल जी के तरफ से, और उनके तरफ से मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम सॉन्ग प्ले करने के लिए। और यहाँ पर मैसेज पहुंचा है जो कि लिख रहे हैं मनोरमा मैम नमस्कार, रेडियो रिमझिम के प्रोग्राम को खास बनाने में आप लोगों का सराहनीय योगदान है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैसेज करने वाले हैं नंद कुमार शर्मा, रसलपुर औरंगाबाद।

चाहते हैं जिन लोगों को गाना नहीं बजाया उन लोगों को गाना हम कल फिर से प्ले करेंगे, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मैं नहीं बजा पाई आप लोग के गाने को। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ जो कि लिख रहे हैं बाय बाय मनोरमा जी, बाय बाय भारती दीदी, और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार कृपया नारायण से, और यहाँ पे सभी की तरफ से हम बाय बाय के मैसेज पहुंच गए। तो चलिए तो मैं बता दूं आप लोग को, तो श्रोताओं समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291, और कॉल करने के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 72776065। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी से लूँगी विदा, और इसी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग मेरे तरफ से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99

0: है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री ओपीडी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।

0: बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
6: तब भौजी, आज सुबह ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में,
8: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट।

90.

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: ST ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए ST ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करे 86034 48652 पे।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
0: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9779-14-86165
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
3: Jab phone din de bajte hai to kehte hai hello.
4: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: हेलो,
6: नमस्ते मैडम। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। विकास जी कैसे हैं?
5: हेलो।
6: हाँ जी,
5: आवाज नहीं आ रहा है क्या?
6: नहीं नहीं, आवाज आ रही है। बोल रहे हैं, क्या हाल चाल है आपका?
5: बढ़िया बात है।
6: और तो बताएं,
5: आप बताएं क्या हाल चाल बचे?
6: हमारे हाल चाल भी बढ़िया बा।
5: तो आप कैसन बने?
6: हम तो ठीक बने रहो, हमके पास है ना
5: मुनारमा मैडम।
6: जी जी,
5: भारती मैडम नहीं, हमारा लगा की भारती मैडम है।
6: अच्छा,
5: भारतीय मैडम राहुल आवाज भारतीय मैडम जैसा ना होता।
6: तो हम कुछ नहीं पता ना रहा, मालूम होगी ना, इसे पूछ लेता नहीं की पहचान लेता नहीं की ना। तभी कौन सा गाना सुने के बाद?
5: तो आज गाना हम तो सुनवाई केसारी लाल के देवाई है।
6: कौन सा?
5: आज हमारे जान नफाजी से लेटाइल बाड़ी। बुलाइब तो नहीं ना?
6: ना ना, बिल्कुल ना।
5: याद बा ना?
6: याद बा।
5: गाना आपके सुनवाए के क्या था सबसे पहले? जितना रेडी नहीं सुनने वाला हूँ मैं कब के।
6: चलिए ठीक बात है, और गाना खाता नहीं की चली रहा, और गाना पता नहीं।
5: चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है
6: जी जी, हमके भी से बात करके बहुत ही अच्छा लगेगा।
5: अच्छा, और सब बढ़िया बालू?
6: चलिए प्ले करते हैं गाना, सुनते रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: के परी छल।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 एफएम में। हेलो नमस्ते। हाँ हाँ वो कहा ना कि कॉल ये काटा तब तक दूसरा आ जाता है, वजह से कहीं हो सकता। समाचार तो सब बढ़िया बा, अपन बताएंगे रहुआ कैसन बानी। वैसे कहाँ से बोलत बानी रहुआ? पंजाब। अच्छा, और और नाम कहा? चलिए तो कौन सा गाना सुने?
2: कौन सा
1: सीपी राज के नया गाना? अच्छा चलिए ठीक बात, क्योंकि सुनवा किन चाहता नहीं। जी बिल्कुल, चलिए फिर प्ले करते हैं वो गाना। जी सुनत रही सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 एफएम।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92-899-22567 या 97-714-86165
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: Now pick it up, pick it up.
6: Hello.
5: Now pick your phone up.
6: Hello.
5: Pick it up, pick it up. Now pick your phone up.
6: Hello.
7: जब फोन गिनने बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
8: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
9: नमस्ते मैडम जी।
8: नमस्ते
9: मैडम जी।
8: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए।

0: मैं ठीक हूँ। भोजन से नेहा बोल रहे हैं।
1: जी नेहा जी, क्या हाल चाल है?
0: अच्छा है।
1: तो क्या हो रहा था अभी?
0: अभी कुछ नहीं है, आपका?
1: अच्छा, तो खाना वाना हो गया आपका?
0: जी मैडम, ये मैं नाश्ता हुआ, खाना होगा 2 बजे।
1: अच्छा जी, चलिए ठीक है। तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: गाना सुना दीजिए, आई मिलन की रात, कितने दिन के बाद आई सजना रात मिलन।
1: ओके, और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
0: आपको आज इतना रेडियो मुझे मार दे, सब सुनता है सबको, जितना सोता दोस्त सुनता है सबके साथ।
1: ओके नेहा जी, वैसे आप रेडियो रिमझिम को कैसे सुनती हैं?
0: रेडियो से,
1: रेडियो के माध्यम से। चलिए बढ़िया। तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको?
0: जी मैडम, मुझे अच्छा लगता है, इतना सुनते हैं प्रोग्राम।
1: चलिए बहुत अच्छी ही बात है।
0: रेडियो खोल देते हैं, चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं प्रोग्राम सबके।
1: जी नेहा जी, तो लगभग आप कितने समय से सुनते आ रही?
0: लगभग जो पहला ड्यूटी मैडम रही, पहला पहला तभी से सुन रहे हैं।
1: अच्छा,
0: पहला ड्यूटी मैडम रही जो पहले अफसर अली सर चलाते हैं। तो
1: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। चलिए तो नेहा जी, गाना प्ले करते हैं आपका।
0: जी मैडम, जी नमस्ते।
1: जी नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी हेलो
0: जी, नाम बता दिए अपन।
1: जी विकास कुमार बोल रहे हैं, जो पहुँच से हैं भंडारी से।
0: जी कैसन बानी विकास जी?
1: अरे बहुत बहुत अच्छा, आप ना बताएं।
0: जी हमारे भी बढ़िया बा, वैसे क्या होत रहल?
1: अभी क्या करते नहीं बैठल है, कुछ नहीं कर रहे, जितना टाइट हुआ बहुत ज्यादा टाइट हुआ है। हम लोग क्या ना सुने के ना दिल चीड़ के देख रहा है, नाम होगा जितना सुनने वाला लोग है उसी के लिए, जितना सुनते हैं उसमें सभी परिवार सभी के साथ।
0: चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: क्या
0: गाना प्ले करते हैं आपका?
1: जी जी जी
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।

0: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: ठक ठक।
7: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
8: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बाल मार्केट गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: Now pick your phone up.
10: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो।
12: हाँ अस्सलाम वालेकुम।
11: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
12: जी मैम, ओवर से लगा रहे हैं, 11 ही में से लगा रहे हैं फोन, बहुत प्रयास से फोन लगा है हमारा।
11: जी जी वो क्या है ना, बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, एक करता है तब तक दूसरा आ जाता है।
12: जी तो मेरा नाम जाकिर हुसैन, जिला गोपाल जादवपुर से।
11: जी जी क्या हाल चाल है?
12: सब ठीक है, अपना बताइए।
11: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
12: मैम गाना सुनना चाहते हैं?
11: बिल्कुल सुनवाएंगे, बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
12: हिंदी चली है तुम के राजा, तू राजा आवाज मेरी मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी।
11: क्या ये मुझे गाके बताएंगे?
12: जी मैम गाके थोड़ा सा बता सकते हैं।
11: जी बिल्कुल।
12: तुम के राजा

0: ये गाना तो सुनाना चाहते हैं।
1: दीदी गाना तो बहुत ही अच्छा गाते हैं आप।
0: जी गाना तो गाते हैं, गाना हमारे हिंदी पूरा अच्छे से उतना गा नहीं पाते हैं।
1: अच्छा अच्छा लगा। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: जी मैम सुनाना चाहते हैं, नाम लेना चाहते हैं?
1: जी बिल्कुल लीजिए।
0: मिस्टर सूफी आलम और आपको और पूरे परिवार को और यीशु पल्ली, जितले शर्मा, मेराज आलम, अर्जुन, मोहम्मद कूफ, यीशु पल्ली, बस इन लोगों को सुनाना चाहते हैं।
1: जी जी तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है, धन्यवाद
1: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिंग 90.4 FM में।
0: अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: क्या खैरियत है?
1: जी बिल्कुल बढ़िया है, आप बताइए कि आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। नाश्ता पानी हो गया?
1: हाँ हो गया। और आपका?
0: बाप ही कब से फोन लगा रही हूँ आपके पास। घाटी मैम बोल रही है?
1: नहीं।
0: ओ, आप दोनों का एक ही जैसी आवाज है ना, सेम टू सेम आवाज है।
1: अच्छा,
0: आपका आवाज बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा जी।
0: हाँ
1: वैसे आप ही अपना नाम बता दीजिए।
0: मैं जोया बोल रही हूँ।
1: जोया, और कहाँ से?
0: पानीपत से बोल रही हूँ।
1: अच्छा, आपसे पहली बार बात हो रही है?
0: नहीं, मेरे से दो बार बात हो गया है। एक बार मैं बताई थी आपको गाना का फरमाइश, लेकिन सुन नहीं पाई, इसलिए हॉस्पिटल चली गई।
1: वैसे क्या करती हैं आप?
0: मैं तो घर पे हूँ अभी।
1: अच्छा।
0: हाँ, रूम पे काम करती थी, फैक्ट्री में बर्तन का काम करती थी, बर्तन बनता है उसमें।
1: अच्छा जी, तो अभी आप कहाँ हैं?
0: अभी तो मैं रूम पे हूँ, अभी काम नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि डिलीवरी हुआ है ना, मेरा लड़का हुआ है।
1: अच्छा जी, कांग्रेचुलेशन।
0: थैंक यू मैम।
1: जी तो आज कौन सा गाना सुनिए?
0: आज मेरे को मेरे बच्चे के ऊपर सुना दीजिए अच्छा सा कोई सॉन्ग।
1: ओके जी, और ये गाना आप किसी को सुनाएंगे भी?
0: हाँ, जितने भी रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं सबको सुनाना चाहती हूँ।
1: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू मैम।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
7: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: हेलो, नमस्कार।
9: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: थैंक यू। मैं मास्टर निसार अहमद लकी दरगाह जिला सिवान से बोल रहा हूँ।
9: जी जी, क्या हाल चाल है?
10: बहुत अच्छा है, आप कैसी हैं?
9: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
10: आप भाती जी बोल रहे हैं कि मनोरमा जी?
9: मनोरमा,
10: नॉर्मा जी बोल रहे हैं।
9: जी,
10: दो शिकायत है आप लोगों। पहले तो 2-3 बार गाना में रिकॉर्ड किया गया, हमारा गाना नहीं, पर उसके लिए कोई बात नहीं है, भला होगा भी मैं सुन भी नहीं पाया होगा।
9: जी,
10: हो सकता है।
9: हाँ,
10: शिकायत है ही है। हाँ, दूसरी शिकायत ये है कि आज एक महीना 20 दिन से हम कॉल करते हैं हमारा कॉल रिसीव 24 घंटा में भी और 12 बजे से जो कॉल चलता है उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो क्या इस नंबर से आप लोगों को कोई एलर्जी है या कोई नहीं है कि हमारे नंबर को कॉल मैंने रिसीव नहीं?
9: नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है।
10: बात तो है क्योंकि 12 बजे से जो सोच इन्होंने 50 बार भी कॉल किया, कॉल रिंग होता है मगर रिसीव नहीं होता। तो जब कॉल रिंग होता है तो कॉल को बंद कर दिया जाए, सिर्फ मैसेज को इंस्टाग्राम पर चलाया जाए, कॉल वाले को बंद कर दिया जाए क्योंकि हम लोग कॉल ही करते हैं, हम लोग मैसेज व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर नहीं चलते हैं।
9: जी,
10: ये भी शिकायत है।
9: बिल्कुल सही है।
10: प्रोग्राम तो हम हमेशा सुनते हैं, रेडियो रिंगिंग हमेशा सुनते हैं, हम शुरू से अभी तक पुराने लिसनर हैं। अगर कॉल को रिसीव नहीं किया जाता है, हमारा गाना बजता नहीं, तो बात को लेकर बहुत तकलीफ होती है। सुनी जी के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, सुनी जी कहाँ है?
9: सुनी जी के बारे में तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे नहीं पता।
10: सुनी जी तो चली गए बारसा रेडियो में, उनका प्रोग्राम आ रहा है, मैं बारसा रेडियो में उनकी आवाज़ सुनी जा रही है।
9: जी जी, तो उनके बारे में नहीं बता सकती क्योंकि मुझे इजाजत नहीं है उनके बारे में कुछ बताने।
10: बात तो सही है, डायरेक्टर सर का इजाजत नहीं है मगर हम लोग सुन रहे हैं, तो वर्षा में वर्षा रेडियो में उनका प्रोग्राम चल रहा है, चला रहे हैं और कोई बात नहीं। अगर यही जो शिकायत है कि जो मैसेज द्वारा जो कॉल रिसीव किया जाता है उसी को कुछ रिपीट किया जाता है, कॉल वाले बस पीछे रह जाते हैं, कम से कम कॉल वाले को भी 1, 2, 4, 5 को उठाया जाए और उसकी फरमाइश सुना जाए।
9: जी, तो कॉल भी उठाया जाता है उसमें?
10: नहीं, बहुत कम, बहुत कम हम सुनते हैं, हमेशा प्रोग्राम सुनते हैं, ऐसा बात थोड़ी है, मगर ये जितना मैसेज को ओपन किया जाता है उतना कॉल को रिसीव। कॉल वाले को भी थोड़ा दिल का ये मैंने अरमान होता है, बहुत मेहनत और मशक्कत से कॉल को कॉल किया जाता है, लोगों को भी तो थोड़ा सा टाइम दिया जाए, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है।
9: जी जी, बिल्कुल कोशिश किया जाएगा ताकि कॉल भी बराबर चले।
10: चलिए, जो मैं कुछ कहा भाई उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, और कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा।
9: नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आपकी बात सही है, कॉल पे भी ध्यान दिया जाएगा उसमें 12 बजे वाले शो में।
10: कॉल पर ध्यान दिया जाए, जो मान लीजिए कॉल ही करते हैं आप मैसेज द्वारा इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो कॉल ही करें, लोग कॉल करते हैं, मैसेज नहीं करते हैं, व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, ध्यान दीजिए। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमको एक गाना सुनना है।
9: जी बता दीजिए।
10: फिल्म का नाम तो याद नहीं है मगर गाने का बोल है।

0: यही गाना हमको सुनना।
1: जी जी, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: पहले तो आपको जी को, रेशमा खातून पठानपट्टी और सोनी मैडम को और जितने भी रेडियो सुन रहे हैं रेडियो रंजन, उन सभी भाई बहनों को सुनाना चाहता हूँ और फैमिली के साथ। और ये तो मेरा पहला कॉल लगा है।
1: जी जी,
0: आज का तो बहुत मैंने खुशी की बात है कि मेरा कॉल पहला कॉल लग गया है, खुशी हो गया है कि नहीं?
1: जी जी बिल्कुल।
0: हाँ, तो ये गाना कब बज जाएगा?
1: ये गाना आपका आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
0: आज नंबर पर है तो ऐसा टाइम बजाइएगा कि ताकि मैं गाना को सुन सकूं। 7 बजे के बीच में बजाइएगा।
1: जी,
0: 7 और 7:30 के बीच। तो मैं 5 बजे से कहीं चला जा रहा है तो पहला नंबर पर मेरा गाना मगर 7 के आसपास में बजा।
1: जी जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू।
1: ये सबके साथ रेडियो 90.4।

0: नमस्ते।
1: सब
0: बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम ठीक हैं मैम।
0: अच्छा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हम अयोध्या से बोल रहे हैं।
0: जी, आपका नाम?
1: सूरज प्रजापति।
0: ओके जी, खाना वाना हो गया आपका?
1: जी मैम।
0: तो कौन सा गाना सुनिएगा आज?
1: नदियाँ पार कौन दिशा में लेके चल रहे हैं।
0: क्या ये गा के मुझे बताएंगे दो लाइन?
1: मैम हमारी आवाज बहुत मोटी है, हम गा नहीं
0: सकते। कोई बात नहीं है, अगर आप दो लाइन गा के बता दे तो बेहतर होता।
1: अगली बार गाएंगे। सबसे पहले आपको और उसके बाद जितने सुनने वाले हैं सभी
0: श्रोता। ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ठीक मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456551 या 97076575।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
11: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
9: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
11: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
9: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
12: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: मुस्कुराने की आदत भी है हमारी, आपकी मुस्कुराहट हसरत है हमारी। मुस्कुराने की आदत भी है हमारी, आपकी मुस्कुराहट हसरत है हमारी। आप याद करो या ना करो, आपको याद करने की आदत है हमारी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
14: जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है?
13: ठीक है, आप कैसे हैं?
14: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
13: मैं कमरान नसीब, विलेज पकड़ी सुल्तान से। नफरत हो गया आपका?
14: जी नफरत हो गया। और आपका हुआ?
13: मेरा भी नफरत हो गया, मैं बोला के बारे में है, तो कॉल लगाया जाए।
14: कौन सा गाना सुना है आपको?
13: हमको गाना सुना दीजिए, मूवी का नाम है कुली नंबर वन। ये गाना है गोरिया चुराना मेरा जिया।
14: गोरिया चुराना मेरा जिया।
13: जी जी
14: ओके जी। और ये गाना आप डेडिकेट करना चाहते हैं?
13: हाँ, सबसे पहले आपको और सबनम सिद्दीकी, आयशा, सबीना, सब्बा सिद्दीकी और रोशनी कुमारी, निशा सकुनवा, निशा भारती और समीर आलम, गुलाम हुसैन, दिलीप राम, उमा शंकर, बर्जू भास्कर, दिवेंदर मुकेश, उत्तम सोनी, कैजा अंसारी, अहमद अली अख्तरी, गुड़िया परवीन, केला आगरा, सभी लोगों को सुनवाना चाहता हूँ और सुना दीजिएगा। ओके नमस्कार।
14: ओके खनन जी, तो प्ले कर देंगे गाना आपका?
13: जी जी जी, ये चुराना दिया कुड़ी नंबर वन।
14: जी जी, तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 94.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी।
1: जी हम तो ठीक बानी, आपन बताइए रोगा कैसे बानी?
0: हम ठीक है बानी।
1: क्या होता अस्पताल बानी का?
0: ना जी अस्पताल बानी का।
1: अच्छा क्या होता फिर?
0: लेट हो जाएगा दवा से है ना वही।
1: तो बात है
0: ना। नाश्ता हो गया?
1: हाँ नाश्ता तो हो गया। और अभी भाई लगना?
0: हाँ हमारा हो गया।
1: चलिए ठीक बात। तो क्या होता रोगा?
0: क्या हुई बस खाना बनी दोपहर टाइम हो गई खाना।
1: और सब ठीक बन?
0: सब समाचार बढ़िया बा। अपन कहीं घर परिवार में सब कुछ ठीक बनू?
1: हाँ घर परिवार में भी सब कुछ बढ़िया बा।
0: तबियत ठीक बा?
1: हाँ हम बिल्कुल ठीक बानी।
0: कल बड़े डायरेक्ट मरल रही जी।
1: अच्छा तो बनवाई तुम बतले रही की मैंने मिजाज खुश हूँ।
0: हाँ
1: जी
0: ना तो ठीक है डायरेक्ट मर रही हमारे मोबाइल सही में जल्दी चालू ना रहा बंद रहे।
1: हाँ वही से तो बोला।
0: हाँ
1: सबके अच्छा लगता
0: कहा
1: के बानी काम में लागल
0: लागल बने।
1: 12 बजे से स्कूल स्टार्ट हुई।
0: वो तो जरूरी है। कितना लोग इंतजार जो है।
1: चलिए कौन गाना सुने?
0: आज गाना सुने भोजपुरी गाना सुने पृथ्वीराज के गाना है ना। थोड़ा सा गा दी सुने।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: नन्ना

0: फोन कर बताओ नी बड़ा अच्छा गावे नी के रानी जी बहुत खास कर बात करे खातिर बात हो जा रहा तो अरे सही हो जाला
1: हमने के बेसब्री से इंतजार करे हर वाला फोन करे
0: जब पढ़ा तो सुना नहीं सब सही तो लगे लेकिन
1: हमारा बजल जितने टाइम लगा सब लोग अच्छा लगे चलिए तो फिर प्ले करते हैं।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
0: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
0: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
0: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
0: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
11: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
10: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
12: Now pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
14: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
16: जी नमस्कार जी,
15: जी नमस्कार, कैसे हैं?
16: हम बढ़िया है, देखिए हम दूसरे नंबर से आ रहे थे, जो बताया उस नंबर से लगाया तो लग गया, इस नंबर से हमारे मंगा रहे हैं लोकल लिस्ट में तो नहीं चला गया है। मेरा दूसरा नंबर है, आप लोकल लिस्ट में तो नहीं चला गया है?
15: नहीं नहीं, ब्लॉक लिस्ट में क्यों नहीं जाएगा, वो क्या ना अभी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बिजी बता
16: रहे हैं। हाँ, तो इससे लगा रहे थे तो लग जा रहा था, एक बार लॉट अच्छा कट गया, उसे लगा रहे हैं तो बार बार कट जा रहा है। अच्छा लगता है कॉल जो है लास्ट चल रहा है जी?
13: जी हाँ।
16: नाश्ता काम कर के रहे हैं कि नहीं?
13: जी जी नाश्ता तो हो गया, आपने किया?
16: हम भी नाश्ता काम करके तो अभी हम 11 बजे लगे हॉट के कॉल लगाए मान।
13: जी जी बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
16: क्या करे इतना तो मान लीजिए, और जगह मेहनत करना पड़ता वहाँ तो कुछ मिल ही जाता, लेकिन यहाँ मेहनत करने के बाद दूध जो है लाइन के स्नेट हो जाता है। मौसम कैसा है आज का गोपाल में?
13: धूप
16: निकला हुआ है।
13: जी जी और आपके तरफ मौसम कैसा है?
16: सेमी है, उमस है, बहुत ज्यादा उमस इतना है कि मतलब गाड़ी चल रही है तो हवा लग रहा है, अभी भी जा रही है सेना का सफर है।
13: जी जी गर्म। चलिए तो फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा?
16: गाना गाना सुना दीजिए, लखन मामा के वो सैया दी है, लखन मामा तेरे वो सैया दी है।
13: आवाज कट के आ रही है।
16: मैं कह रहा हूँ आपको वो नहीं है लखा मामा दे वो सैया दी है।
13: जी जी नौ लखा मामा दे।
16: हाँ तो क्या कहते हैं मनेला जो बोल रहे हैं?
13: हाँ जी।
16: हाँ इसलिए आवाज थोड़ा इसलिए मुखर्जी। हाँ रानी मुखर्जी का आवाज लग रहा है, इसलिए मैंने कहा अभी मनोरमा जी है।
13: जी जी आपने मेरा नया नाम रख दिया।
16: अरे मैंने तो उसी भी नाम रख दिया, आज भी तुम्हारा नाम रख दिया की रानी मुखर्जी का आवाज तो ऐसे ही रहता है ना, राजशिला में देखते है ना राजशिला।
13: जी जी एक और है वो भी वैसे ही बोलते हैं आपके जैसे, आपका असर उनसे भी पड़ गया। जी आवाज कट के आ रही है।
16: ऐसा है ना, ये जियो से लिखा है तो थोड़ा आराम कर रहा होगा, जियो से लिखा है। रानी टीवी आपका नाम का बखान इतना कर रही थी मत पूछिए, लेकिन आपकी आवाज में जान है कुछ भी करिए।
13: आपका असर बहुत पड़ रहा है क्योंकि वो लोग भी ऐसे ही बोलने लगते हैं, उनको सुन खाते लगते हैं।
16: नहीं आपकी आवाज परफेक्ट में बोल रहा हूँ ना, जितने जितना राजी मैंने आज तो गाना ही बदलगा, मेरा कल ही गाना सबका आइए वाला, तो आपको टिकट तो बताएंगे की आवाज जो है ना रानी मुखर्जी से 100% जो है ना मैच करता है। तुम्हें आवाज तो खुद आपको दूसरी रिकॉर्डिंग और जरूर बताएंगे।
13: जी जी वो दो लोग भी असर उन लोग पे भी पड़ेगा हमको लगता है शायद।
16: हमारा असल की बात नहीं है, आपकी आवाज की असर की बात है, हमारे बात की बात नहीं है। आवाज आपकी जो है अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, जिसे जो है आपको आवाजों को बखान किया जाता है, दुश्मन भी आपको ठीक को रहते हैं कि अरे मनोरमा जी है सब कोई आपको आवाज की करते लिस्नर है लोग। उन लोग एक चीज और है आपको की जो इतनी दिनों से रेडियो पे जो बातें हो रही थी कर रहे थे, तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता था कि ये बताइए आपको गाना गाने आता है कि नहीं सर, बोला या कितने दिनों से रेडियो सुनते हैं आप इंडक्शन देते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है इस बात को। लेकिन पहले इतने आगे लोग आया इतने गए लोग, लेकिन डायरेक्ट कॉल करते थे आज इतना गाना बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है, किसको किसको रेस्पेक्ट करना है, और गाना बताने के लिए गाना कहा तो ठीक है आपको गाना सुनाने के लिए सिफारिश की धन्यवाद, आप गाना सिलेक्ट करता हूँ या करती हूँ। लेकिन आपने जो उस बात को लाइन है ना तो जो सुनाइए बहुत अच्छा लगा है, सफा भी चल जाता है, बहुत आदमी होता है कि इस बात को जो है कहते हैं कि हमको गाना नहीं आता है तो सुनने में मजा आता है, तो ये भी बहुत अच्छा परफेक्ट वाला है और सुनने में मजा आता है।
13: आप लोग से दुआ से आते ही हम भी ये कार्यक्रम अच्छे करने की कोशिश
16: करते हैं। नहीं सही है, लेकिन हौसला जो है मुकाम तक जरूरी होना चाहिए, लेकिन आप आते जो होती है बहुत अलग तरीके इतने आगे आई और गई, लेकिन इस तरीके से जैसे बातें नहीं करती थी कोरोना की दवा गाना फरमाया नाम पूछा और उसके बाद पानी था, लेकिन आपके साथ जो है लोगों का भी जुड़ाव है और लिखना लोगों से आपको भी जुड़ाव हो गया है, तो इस चीज पे आप बहुत अच्छा काम करती है, अच्छा लगता है सुनने। आप जो सभी कह रहे हैं प्रोग्राम जो है शाम को 5 बजे से लेते अच्छे कार्यक्रम में सुनता रहता हूँ।
13: अच्छा क्या है आपकी फरमाइश वो भी बता दीजिए।
16: फरमाइश तो बताया था ना, मैं सुनी क्या
13: एक बार और बता दीजिए।
16: नौ लाख सैया के गाने और सबसे पहले आपको भारती जी है, कमान जी है, अमर भाई है, और उसके बाद हरी जी है, सभी जी ममता जी रोहिना जी मीसा जी और मुकेश भाई है, कट्टा भाई है, मर्जू बंगर है, सोनू भाई है, अवसर भाई है, और सोनी जी को भी सुना देंगे हम, और इसमें तमाम
13: जी। चलिए फिर
16: जी नमस्कार।
13: जी नमस्कार।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, नमस्कार।
10: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90.4 FM में।
11: मैं मोहम्मद सिराज हुसैन बात कर रहा हूँ।
10: कहाँ से?
11: कुशीनगर से।
10: अच्छा जी, तो क्या हाल चाल है?
11: जी बढ़िया है, अपना बताइए।
10: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
11: तो मौसम कैसा है वहाँ का?
10: मौसम धूप तो निकला हुआ है।
11: हाँ यहाँ भी वैसा ही है
10: जी।
11: तो एक सॉन्ग सुनना है।
10: बता दीजिए।
11: बताते हैं अभी।

0: ये वाला
1: जी गाना तो बहुत ही अच्छा गा रहे हैं आप
0: जी। इसका रिजोल सॉन्ग सुनाइएगा, रिजोल
1: जी
0: इसका रिजोल सॉन्ग सुनना है, रिजोल।
1: ओके, और ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहेंगे
0: आपको और जितने भी लोग सुनने वाले हैं सबको? आज बज जाएगा ना?
1: आज नहीं, कल बजेगा।
0: कोई बात नहीं
1: जी, वेलकम। तो प्ले करते हैं गाना आपका
0: जी। धन्यवाद
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो 90.4 एफएम में।
0: थैंक यू, और आपको नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कैसे हैं आप?
1: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी, आप शायद मनोरमा जी हैं?
1: हाँ जी
0: जी। आपका और उनका आवाज थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन आज पकड़ लिया हम।
1: जी जी, तो
0: और कैसा चल रहा है रेडियो रिमझिम का, परिवार का हाल क्या है?
1: सबसे बढ़िया,
0: ये अच्छी बात है। मैं तो सोच रहा था कि काफी दिन से ट्राई करने के बाद इधर 15 दिन में आज लग रहा है मेरा पहला कॉल लगा हुआ है, तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि लिसनर्स बढ़ गए या फिर नंबर ब्लॉक हो गया।
1: नहीं नहीं, नंबर ब्लॉक क्यों होगा।
0: तो वैसे आज योर वॉइस योर चॉइस में जब जुड़ते तो पूछते ही बात, लेकिन लग गया फोन।
1: जी जी, वैसे आप अपना नाम बता दीजिए।
0: मैं अनिल बोल रहा हूँ, छोटपुर से।
1: अनिल जी, तो कैसे हैं आप?
0: बस बढ़िया।
1: तो क्या हो रहा था अभी?
0: अभी काम पे हैं और काम करते करते कॉल मिलाते रहते हैं और इसी बीच सुनते भी रहते हैं।
1: जी जी, वैसे क्या करते हैं आप?
0: हम मेडिसिन का काम करते हैं।
1: ये बढ़िया।
0: और गाना हमें सुनना है, कुमार सानू का एक गाना है, किसी की याद सताए शराब पी लेना।
1: कौन सा?
0: किसी की याद सताए शराब पी लेना है।
1: जी, तो अनिल जी ये गाना मुझे दो लाइन गा के बताएंगे आप?
0: थोड़ा सा एजिटेशन हो रहा है, कभी गा देंगे दूसरे टाइम कब।
1: चलिए कोई बात नहीं है।
0: और एक्चुअली एक चीज और है, इस गाने के द्वारा मैसेज मेरे ये नहीं है कि किसी की याद आए तो शराब ही पियो, मतलब शराब पीना अच्छी बात नहीं है, ये मतलब गाना है बस, और जितने लोग सुनेंगे वो इस चीज को बिल्कुल भी इसका बहिष्कार करेंगे, शराब नहीं पीना है।
1: जी जी
0: जी,
1: और डेडिकेट भी करना चाहेंगे
0: सभी लिसनर्स लोगों को, जितने लोग रेडियो रिमझिम सुनते हैं सभी को।
1: ओके अनिल जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू
1: जी, वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो.
3: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: भागे भागे फिरते हैं.
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का. तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं. नंबर है 80 29 94 911 पर कॉल करके. तो अब हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM. नमस्कार.
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान. पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज. ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर. कॉल 9170856587.
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है.
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है.
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है.
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है. संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं. ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं.
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है.
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें.
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर. संपर्क करें 7388889470 या 9198886973.
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है. रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है.
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी.
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल.
11: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल.
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है.
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा.
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ.
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा.
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज.
11: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com.

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: परम आदरणीय श्रोता बंधु चाचा चाची भैया भाभी काका काकी सभी के पैर छू के प्रणाम करतनी। रउरा सभी बनल बनी रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर और रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर कार्यक्रम शुरू होके जा रहल बा शोटे वर्जा भार। रवा सवे के फरमाइश पर रेडियो रिमझिम लेके आ गेल बा भोजपुरी माटी के एक नया सौगात। इस कार्यक्रम में हमने के रवा तक पहुँचे की कोशिश करम सन और कार्यक्रम कैसन बा कैसन लागल जरूर बताई। कैसे नया सौगात बाटे सोटी बिरजा भार कार्यक्रम की और इस कार्यक्रम में हम बानी रवा साथ है और दोस्त अमरीश और उम्मीद बा की आपके ये कार्यक्रम बहुत पसंद आई। तो चलिए बता देता नहीं कार्यक्रम में छोटी बिरजा भार में स्वर बाटे मास्टर इस्माइल के और खुश मोहम्मद जी के। तो चलिए लव उठावल जाओ छोटी बिरजा भार के।
1: ए बाबा
2: हाँ
1: सुनिए नु का कोनी हां अगर वो हमरा से नहीं ब्याह करत तो हम घर में फसरी लगा के मर जाए। लेकिन ना जातनी अब महल में महारानी लोग के लगे
2: जल्दी जोए जा सकते हैं
1: हेली केली के लगे जातनी। अब वही से हम कह भी बात के
2: कहीं जो तो से हमसे कोनो मतलब नहीं है।
1: अब वही से भागल गईली हेली केली के लगे जाके का कहतरी
2: का कहतरी।
1: ए महारानी साहब का हो है दे देखी नू। अरे बाप हो बाप गरनिया इनार पर पानी भरे।
2: अच्छा
1: अरे बाप रे बाप जी ऐसा एगो जोगी आयल बा हो दादा।
2: हाँ
1: कि अरे साफ दीवाना बना दले बा
2: इतना सुंदर बा।
1: हाँ चले के हमनी के देख लहल जा चली सब देखा दी
2: चल

0: ना मानबो
1: ना हम
2: तारा से कहल जाता था तू मानते नहीं ख एतना हमनी को प्रयास करनी सकी हमनी से तू बियाह कर लो नहीं ख मानो रे बहिन
1: बियाह करे खाती हमही बानी बोल हमही बानी हेतना लोग बाटे जो एमे केहू से ते अपन बियाह कर लिए जो जा सभाग हउ हसनैन भाई ताकत रे नहीं खम समझौत ए भाई एकरा के मने कर लोनी ना तो हम बहु जुलुम कर देने तनी बेरा हमारी जोग बिगाड़ल चाहत तनी सन
2: अरे बाबा तू का जुलुम करब जुलुम तो हमनी का शुरू कर तनी सो ना मानब
1: ना मान हम
2: तो जान लो एकर नतीजा बड़ी बाउर होई
1: कुछ हो जाए
2: तारा के बड़ा समझाओ तनी सो ना मानब
1: ना
2: अरे बाबा अरे जो नाक धके रोए लगब हो ये जो ते तारा के बचावे खातिर ना आई
1: इतना हिम्मत बा
2: हां
1: के हम नाक धके रोए लगाओ
2: हां
1: अरे सुनो सन मान जैसा अबो से लबट के अपने अपने घरे जा सन ई बाबा बियाह करे वाला बाबा ना हम ई जोग रो मौले बने कहीं जाए के तैयार भइल बने
2: जाए के तैयार भइल बड़
1: हां
2: त ल अगर नइखा मानत त तार बड़ा दुर्गति होई ए साधु बाबा तार बड़ा दुर्गति होई ए जू ई हेवलपुर शहर ह आई दुनिया के

0: मार।
1: हे भगवान
0: मार,
1: अब हम क्या करें। हे भगवान
0: वाह, मार के तुम मुआ धनी जकरा के एक ओकार कर, इस जोगिया मर गए हिजू। अगर एजू रही तो जानत बड़े सात तो सौरी जन बिया बड़ी अगम जानी ही है। आई जब आई तब ये जोगिया के जिंदा कर दी।
1: ए बहन सुन,
0: हाँ
1: हमार बात पहले सुन।
0: हाँ
1: जो भी तेजा मर गए,
0: हाँ
1: हमार बात इतने बा
0: का
1: कि जो ने कर दुनु मान बा,
0: हाँ
1: ए मान के निकाल लेवे के।
0: अच्छा,
1: ले चल के पलंग पर के सामने टांग देवे के।
0: सही कहले है।
1: चल लेकिन आ
0: हाँ।
1: ए जोगिया का फूंक दहल जा।
0: सही कहले है,
1: ताकि कौन ले जा साबूत ना रह जा।
0: हाँ
1: अब तो इतने पर यह काम कैले बड़ी सन दुनू बहन, जोगिया के नयन काल ले बड़ी सन, अपने पलंग के ऊपर ले आके टांग दे बड़ी सन, आ जोगिया के जला दे बड़ी सन।
0: ले चल के, ले चल गंगा जी के किनारे, ले चल जलाओ।
1: चल लेके
0: आप देखी ओ जी जोगी जब ही चिता में आग लगल बड़ी सन, आ जोगी जब जर लगल बड़े बिरजा भाग, तो उनके मरी छटक के आ वही जो गंगा जी में गिर गई बा। मड़ी गिरले के बाद एगो राघवा मछरी जोन बा तो मड़ी के देखतिया, मड़ी जरता बिरजा भार के दग दग दग दग। अब मड़ी घोट ले बिया राघवा मछरी, घोटले के बाद उ कहाँ चल गई बा, चल गई बा पतलपुरी में, जहाँ एक जने महात्मा साधु बने वही जो पहुँच गई बिया। जब साधु
1: बही रे
0: कारे,
1: अब तो जोगी के जरा दमी जा।
0: हाँ
1: लेकिन एगो बात के जनले हो
0: का,
1: सती सौरे के आ जौन हेमंती बिया एकनिक अगर जानकारी हो जाई,
0: हाँ
1: तो बहुत बाउर हो जाई। एगो काम को
0: का
1: है, जितना ऐजा के हड्डी ओड्डी बा
0: राखी पाती बा हाँ।
1: राखी पाती नदी में दहवा दे।
0: हाँ
1: जितना हड्डी बा,
0: हाँ
1: एक ठोका कर घूची में बंद कर ले, ठीक नु।
0: हाँ हाँ
1: ले चले करा के गाड़ी धो जा।
0: हाँ
1: ताकि दोनों अइबो पर हे सन।
0: हाँ
1: तो पता ना पहिया सन, त एगो हड्डी अगर जो सती सावरे पा जाई।
0: हाँ ई सही कहले
1: है, चाहे हेमंती पा जाई तो उतने से जिया ली हे सन।
0: हाँ
1: हमनी के त बड़ी बाउर पर हे सन।
0: चल
1: ए बही,
0: हाँ
1: है बिटो सब बिटो
0: सब बिटो
1: दावा है, जितना हड्डी ओडी बा सजी बिटोर के घुंची में लेके चल गाड़ी के चल। आई जगह लिपची चिकन कर ले,
0: लिपाइयो गए। चल अब जोन मछली लेके बेचन बिया बिरजा भार के मरी बेचन बा, जाके वही मंदिर तर पहुँचन बा। साधु बाबा देखले बड़े तो कहले बड़े कि ओह बुझाता ई मछली कौन चीज ले ले बा। मछली वही बेहोश होके गिर गई, मछली मर गई बा। साधु बाबा निकलल बाड़े मछली के पेट चिरले बाड़े, आ वही में से बिरजा भार के मरी निकाल के आ वही पतलपुरी में मंदिर में रखले बाड़ा। देखी एजू के कहानी एजू रह दी। अब चली उन्हें हेमंती रात में सुतल बा तो सपना का देखतिया,
1: का देखतिया
0: सपना ही देखतिया कि हमार पति देव गईले हेवलपुर में, हमरे पति के हेवली केवली मिल के मुआ धली सब का कहतरी।

0: अब अपने मामी के लग पहुंच गईली। आज जाके अपने मामी से का कहतरी, आ झर झर झर झर होतरी, आ का कहतरी,
1: का कहतरी।

0: आप देखी वही जो मामी देखा तड़ी तो वही जो मामी के देख के हेमंती रुआ तड़ी या कहा तड़ी जल्दी चला ये मामी चलो जल्दी
1: हेमंती
0: हमरे हाँ मामी कहाँ इतना रुआ तड़ हो अब जो रुआ तड़ी कौन तरह से
1: सारा बात हम तहार समझ गए देखा हम ये जमाना उनके कैले रहने कि बाबू तू मत जा लेकिन अपने मामा के कहले पर वो जब जोगी बन गए हैं सौठीपुर में जाए के तैयार हो गए हैं तो देखो हम का कहें अब तो हेवली केवली इतना ना जादूगिरनी है सौ जन के कोनो हिसाब नहीं थे आ तू आके हमरे लगे रो तड़ू अच्छा हाँ। कोनो उपाय जरूर हम सोचते हैं
0: अब जी का कह तरी हेवंती अरे झर झर

0: आबोजू अपनी मामी से कह तरी, ए मामी हाँ कह अब कौन उपाय लगाओ जे हमार पतिदेव कैसे जिंदा हुई है।
1: देख हेमंती दूसर उपाय नहीं है हमार लगा, पहले ओजा चलले के व्यवस्था करो, पहले अच्छा। चल जाए दोनों आदमी देखल जाए कि बीरजभार के अगर ये बोले हड्डी हमरा के मिल जाए तो हम बीरजभार के जरूर जिंदा कर लें। चलो ओजा
0: चलो
1: सजा दी देखल जा,
0: सजा दी जादू के रंग
1: सजाओ, जल्दी जादू के रंग सजाओ, जल्दी चलो तू हेवलपुर में, हम आज देखम हेवली केवली के कि कितना जादू गिरनी बारी सन कि हमरे भगना के घुमा दिले बारी सन। चलो आज ओकनी से फरियाइए जा
0: आरे साजियो त

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय और पटना में मां सीता महिला विश्वविद्यालय होगा स्थापित। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मिली मंजूरी। बैंक यूनियंस की 28 सितंबर से 3 दिन की देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने रविवार 27 सितंबर को बैंकों को खुला रखने का निर्देश दिया। जदयू ने स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। नीरज कुमार पटना स्नातक सीट से बने प्रत्याशी। और प्रदेश के विभिन्न भागों में मानसूनी गतिविधि बढ़ी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 5 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। पटना में माता सीता के नाम पर महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। साथ ही बेगूसराय में राष्ट्र कवि दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस पर 500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा।
1: राजस्व में भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत नवादा जिला अंचल वारिसलीगंज में 99.39 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण एवं अनाबाद बिहार सरकार की भूमि चीनी मिल की स्थापना हेतु गन्ना उद्योग विभाग को अंतर विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
0: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री गोधन विकास ऋण योजना के तहत पशुपालकों को बैंक ऋण के ब्याज पर 100% सब्सिडी देने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 24 प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना से जोड़ा जा रहा है। श्री चौधरी बक्सर में भगवान वामेश्वर धाम में पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पटना से बक्सर, बक्सर से बिहार शरीफ और बांका से भागलपुर तक ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण कराया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड ने विधान परिषद चुनाव के लिए 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। नीरज कुमार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, जबकि अभिषेक झा को तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आनंद पुष्कर और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से घनश्याम राय को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में संगठन स्तर पर कई बदलाव किए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आदेश से ये बदलाव किए गए। हरीश द्विवेदी को बिहार भाजपा का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि संगीता यादव और रोहन गुप्ता को सह प्रभारी बनाया गया है। बिहार के कई नेताओं को अन्य प्रदेशों के संगठन में अहम जिम्मेदारी दी गई है। देवेश कुमार को अरुणाचल प्रदेश और मंगल पांडे को असम का प्रभारी बनाया गया है। निवेदिता सिंह को झारखंड का सह प्रभारी, राजेंद्र सिंह और पिंकी कुशवाहा को पश्चिम बंगाल का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने इस वर्ष 27 मई को आयोजित की गई दारोगा भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा रद्द कर दी है। आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर कहा है कि परीक्षा की नई तिथि की घोषणा अलग से की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से आधिकारिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट देखने को कहा है। 1799 पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा का प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से 28 सितंबर से बुलाई गई 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और करेंसी चेस्ट को पूरी तरह से चालू रखने की मंजूरी दी है। इस बीच मंत्रालय ने बैंक यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल को टालने की अपील की है। जमुई घटना के आरोपी हरेंद्र यादव को आज विशेष पॉक्सो अदालत में पेश किया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर में उपस्थित लोगों ने आरोपी के साथ मारपीट का प्रयास किया। वहीं मुख्य आरोपी नंदन यादव की पेशी आज नहीं हो सकी। नंदन यादव पुलिस की गोली लगने से घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती है। शेखपुरा जिला विधिक संघ ने जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ दुर्व्यवहार मामले के आरोपियों का केस न्यायालय में नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। संघ के महासचिव विनोद कुमार सिंह ने कहा कि जमुई के अधिवक्ताओं के निर्णय का समर्थन करते हुए शेखपुरा के अधिवक्ता भी इस मामले में आरोपियों की कानूनी सहायता नहीं करेंगे। जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ दुर्व्यवहार मामले को लेकर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। राजद की महिला इकाई की ओर से आज पटना में बीरचंद पटेल पथ से आयकर गोलंबर तक विरोध मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल राजद नेताओं ने सांकेतिक रूप से पुतला दहन भी किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। यह विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार में चौथे कृषि रोडमैप के तहत श्री अन्न यानी ज्वार, बाजरा, मड़ुआ और कोदो जैसे अनाजों की खेती के प्रोत्साहन से जुड़ी ये रिपोर्ट।
2: मिलेट्स यानी ऐसा अनाज जो पोषण के साथ खेती के लिहाज से भी खास है। भारत के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अन्न को वैश्विक खाद्य सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि फाइबर से भरपूर होने के कारण मोटे अनाज जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव में उपयोगी हो सकते हैं।
3: ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे विश्व में श्री अन्न बहुत बड़ी सौगात की तरह है। इसी तरह श्री अन्न से फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है। हाई फाइबर वाले इन फूड्स को शरीर और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। इनसे लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलती है। यानी पर्सनल हेल्थ से लेकर ग्लोबल हेल्थ तक हमारी कई समस्याओं के हल में श्री अन्न से हम जरूर रास्ता खोज सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री के आह्वान और मिलेट्स के बढ़ते महत्व से प्रेरित होकर नौबतपुर के किसान कृष्णा शर्मा ने करीब 3 एकड़ में मोटे अनाज की खेती शुरू की। कृष्णा शर्मा बताते हैं कि इस खेती से उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है। खास बात यह है कि पारंपरिक फसलों की तुलना में इसमें कम मेहनत और कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है।
4: मोटा अनाज खाने में अधिक फाइबर की प्राप्ति उसमें होता है, तो हम लोग आमतौर पे अब गेहूं के स्थान पर ये जौ की खेती करते हैं। मेरे पास 6-7 एकड़ जमीन है, उसमें करीब करीब आधा में हम लोग ये मोटे अनाज की खेती अभी कर रहे हैं। इसमें कम सिंचाई में भी ये फसल बहुत अच्छा हो जाता है। प्रधानमंत्री जी तो बहुत सारा कार्य कर रहे हैं देश के लिए। इसमें एक यह भी योजना, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि हम किसानों के प्रति उनका अच्छा रिस्पॉन्स है।
2: कृष्णा शर्मा जैसे किसान अब श्री अन्न को खेतों से बाजार तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कम पानी और कम लागत में होने वाली यह खेती किसानों के लिए आमदनी का एक और रास्ता खोल रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए आशीष रंजन की रिपोर्ट।
0: राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की आज 118वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा जैसी कालजयी रचनाओं के रचयिता दिनकर जी का जन्म आज ही के दिन 1908 में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। पटना के दिनकर चौराहा पर आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बेगूसराय में राष्ट्रकवि के पैतृक आवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में जिलाधिकारी ऋचि पांडे समेत अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। राज्य के विभिन्न भागों में मानसूनी गतिविधियों के कारण मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। आज मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिले में कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान जिले में अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
5: दिनांक 24 सितंबर को राज्य के अधिकांश भागों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, किशनगंज, पूर्णिया, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान और पश्चिम चंपारण में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: निगरानी की टीम ने नालंदा जिले के कराय परसुराय प्रखंड में पदस्थापित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संतोष कुमार को 28,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सांध पंचायत के नवनियुक्त पैक्स प्रबंधक को कार्यभार सौंपने और संबंधित जांच प्रतिवेदन भेजने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। खान और भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बिहार के ईंट निर्माताओं के लिए कोयला आवंटन का कोटा बढ़ाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करने का आश्वासन दिया है। शिक्षा विभाग ने अररिया जिले के अलग अलग विद्यालयों में अभद्र व्यवहार, लापरवाही और मध्याह्न भोजन में अनियमितता को लेकर 10 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की है। शिवहर की सांसद लवली आनंद की अध्यक्षता में आज जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक हुई। बिहार कैंसर केयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पटना में हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत की गई है। संस्था के अध्यक्ष नवीन झा ने यह जानकारी दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय और पटना में मां सीता महिला विश्वविद्यालय होगा स्थापित। तो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मिली मंजूरी। बैंक यूनियंस की 28 सितंबर से 3 दिन की देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने रविवार 27 सितंबर को बैंकों को खुला रखने का दिया निर्देश। जदयू ने स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। नीरज कुमार पटना स्नातक सीट से बने प्रत्याशी। प्रदेश के विभिन्न भागों में मानसूनी गतिविधि बढ़ी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 5 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तो श्रोता लोग आज खातिर बस इतना ही। कैसन लागल चाचा चाची काका काकी कैसन लागल जरूर बताई 98 527 88 291 नंबर बाटे। इन नंबर पर कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप खत लिख सकता नहीं रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज 84 14 28 के पता पर। और हमके पता बा कि आप सबे के कार्यक्रम बहुत अच्छा लागल है। परम आदरणीय श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करता नहीं, पैर छू के प्रणाम करता नहीं, चलता नहीं अब फिर आयम एगो नया एपिसोड के साथ, एगो नया कहानी के साथ फिर हुई पूरा मस्ती। तो अभी खातिर दीप विदा, अपन दोस्त अमरीश के लेता नहीं जाए के विदा, ठंड से बच के रही और गरीब के मदद करी दी इजाजत, हंसत रही मुस्कुरात रही, नमस्कार, राम राम।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: प्रसाद क्लिनिक,
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
12: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रिमझिम। सुनो दिल से।
13: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: हेलो एवरीवन,
1: नमस्ते। मैं हूं सारा अली खान।
0: मैं हूं विकी कौशल।
1: वी होप यू लव दिस म्यूजिक वीडियो।
0: डू लाइक एंड शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
5: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170 8565 87।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978855 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5, हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करें 6252-62112 पे।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में,

0: राधा, तुमने अपनी चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा, मिला ही नहीं
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ, कमलश्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
4: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
3: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
5: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
6: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170 8565 87।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती अकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
7: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
11: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
12: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
11: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
12: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
11: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
12: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
11: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
13: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
14: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
14: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
11: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
15: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
16: आग आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। FSSAI सहायक निदेशक समूह क के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। रिक्तियों की संख्या 4 है, कार्यावधि रहेगी 2 वर्ष। योग्यता अनुभव आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.fssai.gov.in। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा में प्रोफेसर लेवल 14A के कुल 4 पद, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल 13A2 के 8 पद और सहायक प्रोफेसर ग्रेड 1 लेवल 12 के कुल 16 पद रिक्त हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए पोर्टल पर 31 अगस्त से उपलब्ध हो चुका है। आवेदन भरकर जमा करने की आखिरी तारीख रहेगी 30 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा की वेबसाइट www.nitgoa.ac.in। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निदेशक सिविल मैकेनिकल, उपनिदेशक सिविल मैकेनिकल, सहायक निदेशक सिविल मैकेनिकल, लेखाधिकारी तथा अवर श्रेणी लिपिक। योग्यता, वेतनमान, तैनाती के स्थान, आरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.jalshakti.gov.in। इसके अतिरिक्त केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी जानकारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। वेबसाइट है www.cwc.gov.in। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT गणित का एक पद रिक्त है। अधिक विवरण जैसे वेतन और भत्ते और अनुलब्धियां, आवेदन पत्र, भर्ती प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए सैनिक स्कूल कोरुकोंडा की वेबसाइट www.sainikschoolkorukonda.org। केंद्रीय रेशम बोर्ड में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। संयुक्त सचिव तकनीकी 2 पद, उपनिदेशक प्रशासन एवं लेखा 4 पद, उपनिदेशक सांख्यिकी 1 पद, उपनिदेशक राजभाषा 1 पद, उपनिदेशक वित्त 1 पद, सहायक निदेशक प्रशासन एवं लेखा 6 पद, सहायक निदेशक सांख्यिकी 1 और सहायक इंजीनियर 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए केंद्रीय रेशम बोर्ड कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट www.csb.gov.in। केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण द्वारा अधिशासी अभियंता एवं सहायक निदेशक राजभाषा के पद को भरा जाना है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.kvsangathan.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
17: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
18: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
19: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
17: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
20: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में। क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
21: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
20: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
22: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
23: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
20: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
24: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
20: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
22: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
13: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
25: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
13: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
20: सुनिए सुनिए सुनिए,
26: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
20: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
26: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
20: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
8: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
9: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
8: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
3: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
8: कॉल करें 85070-32042 पे। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
10: हेलो, कोई है क्या?
11: हाय,
10: मुझे जिमी से मिलना है।
11: या वन सेक, जिमी, हाय।
10: हाय नताशा, आई एम अ ब्लॉगर, आपके केक पेस्ट्रीज के बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज पड़े हैं। I would like to blog about your cafe. Do you like that?
11: I would love that.
10: Perfect. I'll see you tomorrow then.
11: Yeah, bye. Sure. Excuse me.

0: अब समाचार विस्तार से। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी।
1: ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब है। इसे जैगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% सामग्री स्वदेशी होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है। इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में आज अटल इनोवेशन मिशन की।
3: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और MSME में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
4: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
3: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्कूल छात्र सार्थक गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
5: पिछले 3 वर्षों से अटल टिंकरिंग लैब्स का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही खास लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज नहीं बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा, नए आइडियाज पर काम करा और अपने हाथों से प्रोटोटाइप्स बनाए।
3: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
6: MD ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। उम्मीद है कि डीप डिप्रेशन आज रात और कल सुबह के बीच कलिंगपट्टनम के पास से गुजरेगा और कोरापुट और रायगढ़ समेत दक्षिणी उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में हालात का जायजा लिया और प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कल आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज दो महिलाओं समेत तीन शीर्ष माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों पिछले दो दशकों से अधिक समय से माओवादी आंदोलन में सक्रिय थे और कथित तौर पर लगभग 80 हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए थे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस कल कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है विशेष शुक्ला।
2: एशियाई खेलों में रोशोबिना देवी वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
7: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मैं काफी इंजुरी हुई थी, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते, तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
2: वहीं जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरूका, महराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत एक स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में इस वर्ष बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाले 65 स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें मधुबनी और मिथिला चित्रकला, सिक्की और मंजूषा कला, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा राज्य से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने की अमेरिकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
9: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
10: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
9: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी। संतोष फर्नीचर डॉक्टर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
10: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
9: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
10: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
10: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
10: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
12: ठक ठक।
13: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
14: अच्छा मिला ही नहीं।
13: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
14: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
13: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
14: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
15: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
16: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456551 या 9707065575।
17: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
18: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
17: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
18: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
17: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
18: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
17: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
10: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89973।
19: सुनिए सुनिए सुनिए,
20: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
19: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
20: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
19: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
21: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नवोदय विद्यालय को लेकर की गई समीक्षा बैठक में हुए कई आवश्यक निर्णय। सारण निर्वाचन को लेकर राजनैतिक दलों के साथ की गई बैठक। महावीरी अखाड़ा पर शांति समिति की हुई बैठक। और एक साल से राशन नहीं उठाने वालों की अब होगी जांच। कई अलग अलग मामलों में आज एक दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जवाहर नवोदय विद्यालय में अभिभावक शिक्षक परिषद यानी पीटीसी की मासिक बैठक भी की गई। बैठक में विद्यार्थियों की शिक्षा, अनुशासन और सुरक्षा को लेकर गंभीरता से मंथन किया गया। विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए नियमों का सख्ती से पालन कराने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में विद्यालय परिसर में मोबाइल फोन लाने और उसके उपयोग पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही बिना अनुमति विद्यालय परिसर से बाहर जाने वाले विद्यार्थियों पर भी कड़ी निगरानी रखने की बात कही गई। प्राचार्य सुधाकर शुक्ला ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और अनुशासन से किसी भी तरह किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बलेसरा में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता के उद्देश्य से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रबंधन और समिति की बैठक में भी कई मांग के आधार पर जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचका गाँव की चिकित्सकीय टीम विद्यालय परिसर में पहुंची और स्वास्थ्य शिविर में बच्चों की जाँच की गयी। मेडिकल कैंप के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचका गाँव की टीम ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के संदर्भ में भी आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सजग बनाना बताया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन एवं निर्वाचन की तैयारियों तथा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर समाहरणालय के NIC कक्ष में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राजस्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी। जिले में अलग अलग क्षेत्रों में लगातार महावीरी अखाड़ा का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। सभी इलाकों में जहां जहां महावीरी अखाड़ा का तारीख तय हुआ है वहां शांति समिति की बैठक की जा रही है। इसी को लेकर बरौली बाजार में भी शांति समिति की बैठक की गई, जिसको लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष और नगर परिषद के सभापति, जन प्रतिनिधि, अनुज्ञप्तिधारी और शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि महावीरी अखाड़ा को लेकर शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और अनुशासित आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी अखाड़ा समितियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। वहीं DJ तथा ऑर्केस्ट्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध की बात कही गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट के आलोक में सारण शिक्षक निर्वाचन एवं निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को दी गई। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की गई। बैठक में बताया गया कि 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पूर्वाहन 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा, तो वही मतगणना 27 अक्टूबर को निर्धारित है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों और आदर्श आचार संहिता का सभी संबंधित पक्षों द्वारा भी कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। इसको लेकर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से उन्होंने आवश्यक विचार विमर्श भी किया। विभागीय निर्देश के आलोक में गोपालगंज अनुमंडल अंतर्गत ऐसे 5099 राशन कार्ड धारियों की सूची उपलब्ध कराई गई है जिनके द्वारा पिछले 12 महीने से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया गया है। उक्त सूची विभागीय लॉगिन अनुमंडल पदाधिकारी लॉगिन में उपलब्ध कराई गई है। सभी संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सूची का प्रखंड स्तर पर सत्यापन कराते हुए ऐसे राशन कार्ड जिनके लाभुकों द्वारा लगातार 12 माह से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया गया है के संबंध में नियमानुसार आवश्यक जांच प्रतिवेदन समर्पित करें। आम जन की जानकारी एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से संबंधित सूची प्रखंड आपूर्ति कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, पंचायत, सरकार भवन तथा संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के पास उपलब्ध करा दी गई है ताकि संबंधित उपभोक्ता इसका अवलोकन कर सके। यदि किसी उपभोक्ता का नाम उक्त सूची में शामिल है और उनके द्वारा खाद्यान्न का नियमित उठाव नहीं किया जा रहा है अथवा किसी कारण से उनका नाम राशन कार्ड निरस्त नहीं किया जाना चाहिए तो वे 17/9/2026 से 30/9/2026 तक संबंधित प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में आवश्यक साक्ष्य प्रमाण के साथ अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति अथवा आवश्यक साक्ष्य प्राप्त नहीं होने तथा सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत पात्रता एवं नियमानुसार संबंधित राशन कार्ड को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कई अलग अलग मामलों में आज पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। इसमें बैकुंठपुर पुलिस ने 85 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक कार को जब्त किया। इसमें किसी तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बैकुंठपुर के 70 घाट पुल के पास छापेमारी कर कार को पकड़ा। इसके अंदर से शराब मिली, तस्कर फरार हो गया। पुलिस ने कार और शराब को जब्त किया है। जगतौली थाना की पुलिस ने भी 26 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

शहर टोली थाना विजयपुर को गिरफ्तार किया गया है और इसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सिधवलिया थाना की पुलिस ने भी 111 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक कार को जब्त किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सियरुआ सरकारी स्कूल के पास इस गाड़ी को पकड़ा। इसके अंदर से 111 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इस मामले में तस्कर फरार हो गया है। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर तस्कर की पहचान करनी शुरू कर दी है। फुलवरिया थाना की पुलिस ने भी 67 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और एक कार को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना पर फुलवरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सत्तू बबुला गांव के पास छापेमारी की, जहां कार को पकड़ा गया। इसके अंदर से विदेशी शराब मिली, जिसके बाद आरोपी मोहम्मद हाकिम को गिरफ्तार किया गया है, जो नथुनी कुरैशी का पुत्र है और पटियाला थाना अहियापुर जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा जारी वारंट और अन्य कांडों में भी पुलिस ने अलग अलग थानों से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने उचका गांव थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपराध निदेशिका का अवलोकन किया, गुंडा पंजी और अन्य अभिलेखों के संधारण तथा लंबित कांडों की समीक्षा की। साथ ही फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वारंट एवं कुर्की के निष्पादन, वाहन जांच अभियान तथा शराबबंदी से संबंधित कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन, अपराध नियंत्रण, शराब एवं अन्य अवैध कारोबार के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही और संवेदनशील स्थलों का सतर्क निगरानी तथा आमजन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने के लिए दिशा निर्देश दिया। कुचायकोट थाने में 62 किलोग्राम चरस जैसा मादक पदार्थ पुलिस ने 2022 में बरामद किया था। इस मामले में अभियुक्त आसिफ अंसारी पिता कासिम अंसारी, साकिन अंसारायन और शान मोहम्मद पिता चांद मोहम्मद साकिन तलाही, दोनों थाना झिंगाना जिला शामली उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और अब अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए इन्हें सजा सुना दिया, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में दोनों अभियुक्तों को अदालत ने दोषी पाते हुए 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 1,00,000 रुपए के अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रात्रि में रेलवे यात्रियों और बस से उतरने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लगातार पुलिस के तरफ से बस का संचालन रात्रि में किया जा रहा है। इस निःशुल्क बस संचालन में बहुत सारे यात्री रात्रि में अपने सुरक्षित गंतव्य स्थानों तक पहुंच रहे हैं। अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रेलवे स्टेशन से उनके गंतव्य तक सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए थावे रेलवे स्टेशन, मीरगंज रेलवे स्टेशन और गोपालगंज शहर के बस स्टैंड से तथा गोपालगंज रेलवे स्टेशन से भी रात में बस का संचालन पुलिस के द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें पुलिस के पदाधिकारी, पुलिस कर्मी बस में मौजूद रहते हैं और यात्री को सुरक्षित उनके गंतव्यों तक पहुंचाते हैं। बरौली प्रखंड के बघेजी सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक के साथ स्थानीय लोगों के मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजय कुमार त्रिवेदी के साथ स्थानीय लोग मारपीट कर रहे हैं। वायरल वीडियो में इसका दावा किया जा रहा है। इसको लेकर आज जिला शिक्षा पदाधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। थावे दुर्गा मंदिर परिसर में विकास कार्यों को लेकर अंचल प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। रोड नंबर 8 पर संचालित 28 अस्थायी दुकानों को 25 सितंबर तक हटाने का अंतिम निर्देश जारी किया गया है। अंचल कार्यालय थावे की ओर से जारी आम सूचना में सभी संबंधित दुकानदारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर दुकानें खाली करने को कहा गया है। अंचलाधिकारी सुधीर कुमार ओंकार ने बताया कि इससे पहले 2 जून को भी सभी दुकानदारों को 1 सप्ताह के अंदर दुकानें हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब तक दुकानें खाली नहीं हुई हैं, जिसके बाद पुनः एक और समय दिया गया है। इसके बाद प्रशासन अपने स्तर से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई में लग जाएगा। गोपालगंज स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में आज 11वें आयुर्वेद दिवस को उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में जिले के आयुष एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने भाग लिया। इस दौरान आयुर्वेद के महत्व, इसके उत्पत्ति, चिकित्सा पद्धति और स्वस्थ जीवन शैली में इसकी उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की गई।

0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इजराइल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान देशी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कमर परवेज ने उनका स्वागत किया। जिला स्वास्थ्य प्रबंधक धीरज कुमार और कमला राय कॉलेज के प्रोफेसर टीएन सिंह का भी जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिकित्सकों ने कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा है। इसका उद्देश्य केवल रोग का उपचार करना ही नहीं बल्कि व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना भी है। वक्ताओं ने आयुर्वेद की उत्पत्ति, इसके सिद्धांतों और दैनिक जीवन में इसके महत्व के बारे में जानकारी दी। लोगों को संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। चिकित्सकों ने कहा कि वर्तमान समय में बदलती जीवन शैली के कारण लोग कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में आयुर्वेद की जीवन शैली आधारित अवधारणाएं लोगों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर करुणा निधि, डॉक्टर अशफाक अहमद अंसारी, डॉक्टर धीरज कुमार मिश्रा, डॉक्टर देवेंद्र पांडे, डॉक्टर आशुतोष पांडे, डॉक्टर कुमारी प्रियंका, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर इरशाद अहमद, डॉक्टर प्रीति कुमारी पांडे, डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर इमाम हुसैन, डॉक्टर बाबुद्दीन, डॉक्टर शौकत अली, डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह, डॉक्टर पीएस मिश्रा सहित जिले के सैकड़ों आयुष एवं आयुर्वेदिक चिकित्सक उपस्थित रहे। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नवोदय विद्यालय को लेकर की गई समीक्षा बैठक में हुए कई आवश्यक निर्णय। सारण निर्वाचन को लेकर राजनैतिक दलों के साथ की गई बैठक। महावीरी अखाड़ा पर शांति समिति की हुई बैठक। और एक साल से राशन नहीं उठाने वालों की अब होगी जांच। कई अलग अलग मामलों में आज एक दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द। अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
1: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
10: आज ही आए चंद्रगोकुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
11: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
12: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
11: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:31 हो रहा हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप सभी तो जानते ही हैं, और जो भी श्रोतागढ़ नए जुड़े रहे हैं और कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी चाहते हैं कि जुड़ना, तो पुराने गाने के साथ बिल्कुल इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर है 72 77 16 65 96 पे। इस पर छोटा सा एक टेक्स्ट मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो बिल्कुल इस कार्यक्रम से जुड़ पाएंगे। और इस मैसेज में केवल नाम लिखना है, गाने का नाम बताना है और कहाँ से मैसेज कर रहे हैं उस स्थान का नाम बताना है, और फिर सेंड करना है हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, तो यदि आप चाहते हैं जुड़ना तो बिल्कुल मैसेज करें। कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लिखा गया है कि नमस्ते सर, मैं राजेश प्रजापति जौनपुर से और मुझे गाना सुनना है, सुना दीजिएगा गाने का बोल है जिसके सपने हमें रोज आते हैं, आते रहे हैं दिल लुभाते रहे हैं। बिल्कुल आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मधुसरिया से, राजू कुमार यादव का कहते हैं सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सॉन्ग सुनना है तो इस सप्ताह आपकी फरमाइश तो हम पूरी किए हैं, गाने का नाम बता सकते हैं तो बता दीजिए और हमें मौका मिलेगा तो पूरा करने की कोशिश रहेगा यदि जगह बनती है तो। फिलहाल जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं उन सभी से कहना है कि यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़े, हम आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे राजेश जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

टुडे एमसीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है। लिखा गया कि सर गाना सुनाने के लिए धन्यवाद। आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए राजेश जी और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनो बाबू कैसे हैं, हम भी थावे माई की कृपा से ठीक हैं और एक मेरा उनके कृपा से काम आज सफल हो गया, मेहरा वाली मेरी झोली भर दी, जय हो। मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया की खरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से, और बिल्कुल थावे माता रानी का कृपा हमेशा श्रोताओं पे बना रहता है और आपने दर्शन किया आज किसी कार्य में सफल हो गए। चलिए ऐसे गोपालगंज आते रहिएगा और थावे माता रानी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर मिलते रहेगा। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि हाय सर, मैं अंकिता शर्मा मिरलीपुर से और मुझे सॉन्ग सुनना है और सॉन्ग का बोल देती हैं, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए। डेडिकेट ऑल लिसनर को, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने अंकिता शर्मा। आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434468 पे।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेम झिम 94.4 FM पे। शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277-16-65-96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें तो आप सभी से निवेदन पूर्वक कहना है कि पुराने गाने की फरमाइश करें, ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हैं। और लिखा गया है कि हेलो हाय, मुझे भी सॉन्ग सुनना है, बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैसेज करती हैं निशा भारती। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ, लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, और सभी को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं, रब ने बनाया मेरे लिए सुपर सॉन्ग। दिलीप राम दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे बढ़े हैं, यहाँ पे आगे मैसेज राजू जी भेजे हुए हैं, और मधु सरिया से कहते हैं कि सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग का बोल है खाई के पान बनारस वाला, सुनवाना चाहता हूँ रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

जमा हो चकाचक हिरलो पान चबाए आ आहा।

सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ। अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हला, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनाओ रसबाला, खुली जाए बंद अकल का

करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे।

कमल के शाम सुन रहे थे अभी हम सभी रेडियो 90.4 FM पे सोशल लाइफ में इस फरमाइश का और कुमार शानू की आवाज़ सॉरी किशोर कुमार जी की आवाज़ में और डॉन मूवी से इस गाने के फरमाइश करने वाले थे राजू जी। शरिया वार्ड नंबर तो अभी मालूम नहीं है और चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। लिखा गया है कि आऊँगा सोनू बाबू, जल्द आऊँगा माता के दरबार में, फिर धन्यवाद देने और आशीर्वाद लेने। दशहरा में साथ में आप सब आदरणीय मित्रों से भी मुलाकात होगी। इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया, बिल्कुल आइए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप सब, मस्त हैं ना? और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से, बिल्कुल मस्त। अपना बताए कि आप कैसे हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय मैं कमलेश जी विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का बोल देते हैं, जब से हम तेरे आशिक बने हैं आशिकी का मज़ा आ गया, प्लीज़ सुना दीजिएगा। सर जी तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि भोजपुरी सॉन्ग भोजपुरी मूवी से, नाम खून भरी मांग है, सॉन्ग प्यार तोहरा, ओह प्यार में तोहरा पिटाइल बनी घर से, मिलत नहीं थी बाबूजी के डर से, बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा निशा भारती जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि निगाहें मिला के निगाहें चुराना, लेकिन आप कौन हैं अपना तो परिचय दे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और कमलेश जी के गाने के साथ इंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो 90.4 FM पे। जब से हम तेरे आशिक बने हैं आशिकी का मजा आ गया है।

0: For more entertainment, log.
1: अगर आपको हो रहा है घुटने हड्डी या
2: अरे माँ ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
4: प्रसाद क्लिनिक।
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
7: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: सुनो दिल से।
8: थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि सुपर शंग री नाइश और मैसेज करती है निशा भारती और इनकी तरफ से गाने की भी फरमाइश पहुँचा हुआ है और कमाल के गाने की फरमाइश है खेसारी लाल यादव की आवाज़ में और गाने की फरमाइश प्यार में तोहरा पिटाई बानी घर से और आगे में से पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि मैसेज करते हैं राजू जी, धन्यवाद। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और आगे में से पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि नमस्कार सोनू जी, मेरा नाम है संदीप कुमार शर्मा, खास परसोनी से, और मुझे गाना सुनना है तुम बक तू। तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, एक गाने के बाद आपकी भी फरमाइश प्ले करने की कोशिश है। फिलहाल हम गाने प्ले करते हैं निशा भारती की और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

सब ठीक बा, लेकिन खा लेवे के चाही, नहीं तो और कुछ तबीयत खराब हो जाए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक्स दिल से सो मच, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को भी समाप्त करेंगे, क्योंकि समय जो है समाप्ति के हो चुके हैं। अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं संदीप शर्मा जी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश भी कमाल के पहुँचे हुए हैं और कई हमारे पास मैसेज है जो गाने की फरमाइश पूरी नहीं कर पा रहे, तो हम आप सभी से निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे कि आप समय से मैसेज पहुंचाएं। अंत में मैसेज पहुंचाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो समय है वो निर्धारित समय है कि कार्यक्रम इतने समय पे समाप्त कर देना है। हो सकता है तो एक दो गाने बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी इजाज़त मिलने पर। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया कि सुनो बाबू, इतना दोनों और के कहानी बा, जब अपना अपना बाबूजी के कह के मना ली, ना तो इतना बेचैनी बा, तो मंदिर के दरवाज़ा तो खुलल बा, पर ठीक ना होई, बाबूजी के ही मना के आगे बढ़े के चाहे। तो बिल्कुल सही बात कहतन, अगर घर परिवार के राय से होला तो लंबा जिंदगी चलेला, और नहीं तो बीच में भी गांठ पड़े के संभावना हो जाला। तो सबसे अच्छा राय रवे रही कि बाबूजी के मना ले तो बेहतर है। आगे मैसेज और लिखा गया है कि प्लीज़, तो आज तो नहीं हो पा रहा है, कल कोशिश रहेगा। सो आज अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं, और आप कल मैसेज करें, बिल्कुल हम आपकी फरमाइश हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप सब सुनते रहें, अंतिम गाने के साथ एंजॉय करें रेडियो रमझिम 90.4 FM पे, और हमें दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: रंजन। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना अविनाश कुमार का गायन राग जो कोंस। संगत कलाकार के रूप में साथ रहे तबले पर आशीष सेन गुप्ता, तो वहीं हारमोनियम पर साथ थे सुमित मिश्रा। आइए अब सुने समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह से के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा है। L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक एक उच्च स्तरीय राजनयिक बैठक है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए के से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाले सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के बड़ोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्त्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। भारत ने आज ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज MV केप डाओ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई है। 60 किलो ग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुनेत्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. India today reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session this evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar co-chaired the L.69 Consultative Ministerial Interaction on UNSC Reform along with his Saint Lucian counterpart Alva Baptist. Addressing the meeting, Dr. Jaishankar noted that the Global South is at the receiving end of the unprecedented changes that the world is undergoing, with the UN falling short of expectations. He also underlined the inability of the UN Security Council to address ongoing conflicts and threats to international peace and security, only highlight the urgency of reform. New Delhi has categorically rejected the unwarranted and factually incorrect references to India in the joint communique of the so-called Organization of Islamic Cooperation, OIC, contact group on Jammu and Kashmir. In a statement, Ministry of External Affairs said, the OIC has no locus standi to pronounce on matters that are strictly internal to India. It said the entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable part of India, and no amount of repetition of politically motivated propaganda can change this reality. The Defence Ministry has signed a contract of over 810 crore rupees with Bharat Dynamics Limited for the procurement of 160 satellite smart anti-airfield weapons SAT-SAAW along with associated equipment for Indian Air Force. The contract was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi today. The delivery of SAT-SAW is scheduled between 2027-2028 and 2028-2029. SAT-SAW is an air-to-ground precision guided glide bomb which can be launched from platforms like Jaguar, Hawk and Su-30 MKI and has the capability to neutralize enemy airfields from a long standoff range. Indigenously designed and developed by DRDO, the system will have an indigenous content of 60% along with indigenation of subsystems like initial measurement unit, long impact delay fuse and twin stow carrier to further boost self-reliance in defense. The Election Commission has said that all the decisions including the electoral roll revision were taken unanimously. The Commission informed that it has taken numerous decisions, introduced around 40 new initiatives and undertaken many electoral reforms including special intensive revision in the recent months across the country. The Commission emphasized that difference in views and observations are a normal part of deliberation in any institution and it is a part of the decision-making process before taking a final decision. It said every officer of the Commission is fully authorized to give his suggestions to the Commission for improving the electoral system. In Rajasthan, a major fire broke out at a chemical factory in Jodhpur today evening, with at least 13 fire brigade personnel injured in an explosion during firefighting efforts. The fire spread rapidly as drums of an inflammable chemical stored at the premises caught fire, triggering multiple explosions, police said. Around 10 fire tenders rushed to the spot. While firefighters were trying to control the blaze, an explosion occurred in one of the chemical drums, leaving at least 13 fire brigade personnel with burn injuries. The injured were taken to hospital. India's men's badminton team won the bronze medal after losing 1-3 to China in the semi-final at Aichi, Japan today. With this win, India's medal tally has risen to 12 medals, 1 gold, 5 silver and 6 bronze. Union Home Minister Amit Shah congratulated the Indian men's badminton team for their performances at the Asian Games. And that is the end of this news bulletin.
3: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

रेडियो रिमझिम सुनो दिल से।

0: और तो सास पतोह के लड़ाई से बढ़िया बहिमा बॉर्डर के लड़ाई।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं
3: नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
4: हेलो
5: जी मैम, नमस्कार।
4: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं
4: जी। सुनील जी, क्या हाल चाल है।
5: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम, और फोन भी लगा रहे थे, ट्राई कर रहे, फोन भी लग गए मैम।
4: कहाँ से बोल रहे हैं आप।
5: मध्य प्रदेश MP से
4: जी। तो मौसम कैसा है उधर का।
5: जी हमारे यहाँ तो मैम अभी कल शाम को बारिश हुआ था, अभी तो धूप है मैम।
4: अभी धूप निकला हुआ है
5: जी। जी जी मैम।
4: तो फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा।
5: जी जो फिल्म है आंदोलन और गाने को बोला है आई जी हेल्प तुझे मेरी यार, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम जो लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
4: ओके जी, वैसे गाना तो बहुत ही अच्छा
5: जी।
4: तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
5: धन्यवाद।

0: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी मैम, प्रणाम जगह
0: जी। कैसे जी?
1: कैसे हैं मैम
0: जी? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए।
1: मैं भी आपसे यहाँ दुआ है आपसे।
0: क्या हो रहा था अभी?
1: कुछ नहीं मैम, बात कर रहे हैं आपसे, कॉल लगा रही हूँ। अभी तो टाइम मिला, जस्ट लगा।
0: तो
1: कैसे मैम, अच्छी है ना?
0: जी जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए। ठीक ठाक है ना?
1: अच्छे हूँ।
0: ये
1: लेट से आपके पास कॉल लगा रही हूँ, आपसे बात करके मैं बहुत खुश होती
0: हूँ।
1: गाना सुनना है?
0: बता दीजिए।
1: विदाई वाला बाबू से घर छोड़ के बेटी सिवा के घर चली।
0: जी एक बार और बता दीजिए।
1: विदाई वाला सुना दीजिए। बाबू के घर छोड़ के बेटी सिवा के घर चली।
0: जी तो क्या आप मुझे जाके बताएंगे ये दो लाइन?
1: जी मैम।

0: गाना तो अच्छा है जी, बहुत ही अच्छा। और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
1: सबसे पहले आपको
0: जी थैंक यू।
1: हम अपने घर वालों से सबको जितना भी सुनने वाले भाई और बहन को सबको सुनाना चाहती हूँ।
0: ओके जी, वैसे क्या करती हैं आप?
1: जी कुछ नहीं, मैं घर से जितना सिलाई है, घर का काम है, सब देख रेख करना सब हमको जिम्मेदारी है। सही है,
0: आपकी पढ़ाई कम्प्लीट हो गई है?
1: जी शादी हो गई है मेरा फिलहाल।
0: जी आपका शादी हो गया है?
1: जी मेरा भी शादी है, हम अपने लड़की के शादी की तैयारी चल हुआ है। आपको कैसे लग रहा है? चल नहीं हुआ है?
0: नहीं नहीं, आवाज से तो पता नहीं था।
1: आवाज से भी सबको पता चलता है कि इनके शादी भी नहीं है, पता नहीं आवाज को चेंज करना पड़ेगा।
0: जी जी बिल्कुल, आवाज ऐसे लगी एकदम।
1: नहीं मैम झूठ नहीं बोल रही हूँ आपसे, सिस्टम की जैसे हो। मैंने अपनी लड़की के शादी की, उनके भी एक लड़की हुई थी।
0: अच्छा जी
1: जी,
0: चलिए आप तो मुझे कंफ्यूज ही कर दी।
1: जी जी नहीं नहीं कंफ्यूज बात हो गई, हमेशा की जैसे बात करते
0: हैं, याद रखेंगे।
1: जी जी
0: चलिए
1: मैम बाय।
0: जी तो प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी जी

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello,
3: hello, hello, hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: नमस्कार माया।
6: नमस्कार,
7: कैसन बानी?
6: जी हम तो ठीक बानी, रहुआ बताएं कि रहुआ कैसन बानी?
7: हम यो को ठीक है बानी सा, रहुआ लगा देवा आशीर्वाद से।
6: जी तो इसे रहुआ कहाँ से बोला जाए?
7: हम बंजारी से बोलता नहीं, बंजारी पुल से इनके सामने गोपालगंज से।
6: जी और नाम?
7: हमारा नाम परिवम सिंह टेलर राघव जी।
6: और बताइए, नाश्ता हो गयी?
7: नाश्ता अभी ले तो 9 बजे।

0: जी
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
0: धन्यवाद मैम, मेरा कॉल इतना मेहनत से करके लगाया था और कट गया
1: जी,
0: इसलिए बहुत अफसोस है मुझे।
1: कोई बात नहीं, दोबारा तो लग गया ना, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा
0: आज। मुझे एक प्यारा सा गाना सुनाइए, गाने का उम्मीद है कि सबको अच्छा लगेगा। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, सही वाला सुनाना है
1: जी। जी क्या मुझे गाके बताएंगे दो लाइन?
0: मैम मुझे आता नहीं गाना गाने, और उस दिन रानी जी बोल रही थी कि वो बोलते हैं मेरा आवाज अच्छा नहीं है, मेरा आवाज अच्छा है नहीं लेकिन गाना गाना भी नहीं आता है।
1: नहीं नहीं आपका आवाज बहुत ही अच्छा है, कोशिश करिए कि कॉल करने के बाद दो लाइन गा के सुनाते तो सही रहता।
0: मैम तो अगली बार कोशिश करेंगे और रानी जी को यही बोलेंगे, उनका फरमाइश आता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। कस्टमर आता है दुकान पे, हम कस्टमर को रोक करके उनका फरमाइश सुनते हैं।
1: जी ये तो बहुत अच्छी की बात है,
0: मतलब उनको बातों के साथ उनका फरमाइश भी अच्छा लगता है हमको।
1: जी जी
0: लंबा बात होता है लेकिन मतलब अच्छा होता है, और गाने का फरमाइश अच्छा आता है, और जो हम सोचते हैं कि ये वाला गाना फरमाएंगे वही उनका मतलब आ जाता है।
1: जी जी तो ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे?
0: डेडिकेट है सभी रेडियो दोस्तों, सभी आरजे को, आपको। मैम आज पूरा रिकॉर्डिंग आपका है?
1: हाँ जी।
0: तो आज चलेगा ये कि कल?
1: नहीं नहीं आज नहीं तो कल, दोनों दिन में बनी जाएगा।
0: मैम तो मेरा बातों को उतना दिल पे नहीं लीजिएगा जो बोले हैं कल के लिए।
1: जी जी कोई बात नहीं है,
0: जो हमको अच्छा लगा वो बोल दिए।
1: जी जी आपने सही बोला।
0: जी मैम हम फैमिली में सुन रहे थे इसलिए मतलब इधर थोड़ा हो गया।
1: जी जी कोई बात नहीं है।
0: ओके मैम तो इसको प्ले कीजिए गाना को।
1: जी जी चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी मैम एडवांस में धन्यवाद और बाय बाय।
1: जी बाय बाय, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 एफएम।
0: ओके मैम।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: The phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में। जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं?
7: हम भी कौन मैम बोल रहे हैं?
6: नहीं,
7: मुनरना में।
6: हाँ जी,
7: मैं जल्दी कार्यवाल नंबर एक
6: जी। तो क्या हाल चाल है आपका?
7: ठीक है मैम, आप कैसे हैं?
6: जी
7: आप कैसे हैं? हम लोग ठीक हैं।
6: जी जी हम भी बढ़िया।
7: आज मेरे को सॉन्ग सुना दीजिए।
6: बता दीजिए।
7: अब तेरे दिन जी लेंगे जहर जिंदगी का पी लेंगे हम।
6: क्या मुझे ये गाना आप गा के बताएंगे? दो लाइन।
7: दो लाइन। अब तेरे दिन जी लेंगे हम

0: लेंगे हम। और सुनाना है
1: जी।
0: सबसे पहले आपको, अख्तरी को, कमरान भाई को, राघव जी को, दिलीप भाई को, और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी दोस्तों को।
1: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए। आज बज जाएगा क्या?
1: जी जी, कोशिश रहेगा कि आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
0: ओके मैम, जब आपका सुविधा हो तब बजा दीजिए।
1: जी जी, तो क्या है ना, बहुत सारे कॉल आए रहते हैं तो कॉल आगे पीछे हो सकता है।
0: कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको गाना सुनाने के लिए और फोन रिसीव करने के लिए।
1: तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में।
1: मैं के जोरहाट से बोल रहा हूँ, महंगा राव, मुझे गीत सुनना था।
0: बता दीजिए।
1: भोजपुरी गायिका एक है शारदा सिन्हा का छठ का कोई गीत है।
0: ऐसा कोई भी छठ का शारदा सिन्हा का कोई भी गाना?
1: हाँ, कोई भी गाना
0: जी। अब ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
1: सुनवाना अनिल, सुनील, शशिकला, महेंद्र राउत, मैंने अपने खुद और प्रेम कुमार, ऐसे हमारे दोस्त और आप लोग सभी श्रोतागण। कौन बोल रही है मैम?
0: जी मेरा नाम मनोरमा।
1: मनोरमा, मैं पहले सोनी भी थी
0: जी।
1: तो दो तीन बार किए लेकिन मुझे गाना सुनने को नहीं मिला।
0: अच्छा।
1: बहुत दिन छोड़ दिए थे लेकिन आज फिर हमको याद पड़ा गाना एक सुनने को दिए, तो फिर आज आपको फोन किए। बहुत दिन हो गया, अब सुनाएंगे गाना ये
0: आपका आज नहीं तो कल बज जाएगा दोनों दिन में।
1: मैं तो 4-5 दिन तक इंतजार करते रह गया लेकिन सुनने को नहीं मिला पहला गाना। देशभक्ति एक गाना खोजे थे लेकिन मिला नहीं। बहुत दिन हो गया, करीब 3 महीना पहले का बात।
0: अच्छा, ये तो पहले का तो बात मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी तो अभी न्यू हूँ। तो अभी जो आप रिकॉर्ड करा रहे हैं तो गाना आपका आज नहीं तो कल बज ही जाएगा दोनों दिन में।
1: तो शाम को ही बजेगा ना?
0: जी 5-7 के बीच।
1: ठीक है, तो
0: ठीक है जी, तो प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ठीक है, ठीक
0: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।
1: बहुत अच्छा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello.
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो प्रोग्राम में।
6: नमस्ते मैम।
5: नमस्ते।
6: शुक्रवार को हम लोग गाना सुनने के भूलाई किया था तो गाना नहीं सुना है आप लोग।
5: जी तो किस?
6: हेलो।
5: हाँ जी,
6: आप ही रहते थे, आप ही रिकॉर्ड किए थे
5: गाना आपका, उसके अगले दिन बज गया?
6: नहीं, शनिवार को हम लोग सुना तो नहीं बजा।
5: हाँ, तो उसके अगले दिन बजा होगा फिर।
6: फिर कल संडे थे न?
5: नहीं तो आप
6: संडे
5: जी आप जो रिकॉर्डिंग कराई थी वो रिकॉर्डिंग बज
6: तो नहीं बजा, हम लोग का गाना नहीं बजा। हेलो, हम लोग दो दिन शुक्रवार को सुना और शनिवार को सुना, कल संडे था तो संडे को तो क्विज कॉन्टेस्ट चलता था।
5: तो आप रिकॉर्डिंग कब कराई थी और मेरे को पहचानती हैं आप?
6: हाँ, आप तो मोरारवा बोल।
5: हाँ जी।
6: हाँ, एक और जो रहते थे ना वो रिकॉर्ड की थी।
5: अच्छा जी, तो कहीं बचा होगा कॉल तो आज बजेगा?
6: हो सकेला कहीं आज बजेगा, तो आज हमको गाना सुनना है दो सौ।
5: बता दीजिए।
6: उड़ने के कोर से पूछो अपने लूर कावी आई बेगोरी, ये गाना सुनना है हमको।
5: जी जी, और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहती है?
6: हम लोग आप ही को सुनाना चाहते हैं और अपने घर लोग को सुनाना चाहते हैं।
5: ओके जी, वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
6: हम लोग दारवा से बोलते हैं, थावे क्लब से।
5: अच्छा, और अपना नाम क्या बताएंगे?
6: मेरा नाम सुमन कुमारी था।
5: सुमन,
6: तो ये हम लोग कई बार फोन किए थे आप लोग के पास।
5: अच्छा,
6: आप नहीं पहचानते हैं हम लोग को बुझाता?
5: नहीं नहीं पहचानते हैं।
6: हाँ, नहीं पहचानते हैं इसीलिए पूछते हैं, बोलिए।
5: नहीं नहीं, वो क्या है ना कि बहुत दिनों बाद आप कॉल की है ना, इसकी वजह से।
6: फिर उसको शुक्रवार को फोन किए हैं तो गाना नहीं भेजा, फिर बोली आज लगाते हैं, लगेगा तो आज बोलेंगे कि मेरा गाना नहीं बजा।
5: अच्छा, ओके जी।

0: नमस्कार, क्या हाल चाल है?
1: जी हाँ मैम, आप बताइए।
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: मौसम
0: धूप तो निकला हुआ है।
1: हमारे यहाँ तो कुछ नहीं निकला।
0: जी वैसे कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बाराबंकी लखनऊ।
0: तो फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा?
1: अभी सुशिंदर सरसाज का गाना आया है ना, सिफारिश वाला।
0: कौन सा?
1: सिफारिश। सिफारिश,
0: सिफारिश। क्या
1: है आप?
0: क्या आप मुझे गा के बताएंगे? बोला
1: तुझे भेजा है खुदा ने महाताब से, आई चिट्ठिया है जैसे। तो मैडम आई है निकल के नकाब से, सिफारिशों के गौर की, सिफारिशों पे गौर कीजिए, ऐसे है वो।
0: जी जी। और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
1: जी अपनी, सबसे पहले तो अपनी वाइफ को सुनाना चाहेंगे, के बाद आपको, रेडियो रेंजिंग परिवार को और तमाम रेडियो रेंजिंग सुनने वाले श्रोताओं को।
0: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना का।
1: सोनी मैम चली गई क्या?
0: जी इसके बारे में तो मुझे नहीं पता।
1: अच्छा,
0: प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ओके मैम,
0: सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्ते दीदी।
3: नमस्ते,
2: क्या हाल है?
3: हाल तो ठीक बा, अपन बताई कैसे बनी?
2: हाँ ये ठीक बनी सर। मनोरमा दीदी?
3: हाँ जी।
2: भारती दीदी कहाँ बनी?
3: वहाँ के बानी, काम करता नहीं।
2: अच्छा, तो चली ना?
3: हाँ चली।
2: खाना वाना हो गया है?
3: हाँ खाना तो हो गया। और
2: ठीक बा ना?
3: जी जी, सब बढ़िया बा।
2: भैया फोन कैसे
3: ना? अभी तो
2: भैया झगड़ा कर रही हूँ।
3: अच्छा जी,
2: कल के गीत नीचे बाजल करूँ भैया के।
3: अच्छा अच्छा, तो हम न चला तो भारती जी चला।
2: तीन बजे के भेजले 5 बजे गाँव के पुराना बजाई।
3: अच्छा, कौन बात ना, आगे पीछे हो जाला।
2: तो रघुआ चलाया थी, रघुआ तो आवत रही थे, रघुआ बुझा दिलक वही में।
3: जी जी, तो ये बात कह चाहती हूँ, बहुत सारा लोग बात, तो सबके भी तो देखे के पड़ेगा ना।
2: तो मतलब जो आगे भेजियोगा बजा देवे के चाहिए, पीछे भेजियोगा पीछे बजाए के चाहिए।
3: ये बात रहो ठीक बा, लेकिन वहाँ से पहले भी भेजल रहोगे, वही से बजा लोगे।
2: कौन
3: बात नहीं के, टाइम कम हो ये की वजह से ना बाजे लगी, आज बाजे का छूटा लगे का।
2: तीन बजे के भेज रहे, 2 घंटे टाइम रहे।
3: अच्छा चलिए, कोशिश कर लीजिए आज बजा के। वही से आज कौन गाना सुने?
2: भक्ति सुन सके नहीं में बजा दी। आराम में दोबारा मिला जाये ना?
3: कौन सा?
2: आराम में दोबारा मिला जाये ना।
3: कई गाना वो गा के बता सको? नहीं बता दी।
2: खेसारी लाल की आवाज में बावे।
3: ठीक बा, गाना ही क्यों सुनवाए?
2: आराम में दोबारा मिला जाये ना, ये आवे।
3: ठीक
2: सबसे पहले रहुआ के सुनवाए भारती दीदी के, और जितना सुनते हैं सब के सोनी दीदी के, और गणेश भी सुनी हन, और मनीष भी सुनी हन, जितना सुनते हैं सबसे।
3: ठीक बात है, चलिए रहुआ गाना प्ले कर देना।
2: ठीक बा, नमस्ते।
3: नमस्ते, एक मिनट रुको, अपन नमा बता दी।
2: नमा करीना से
3: चलिए, तो फिर प्ले करता नहीं सुनते सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: ठीक है।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते।
1: हाल चाल तो ठीक बा? अपन बताइए, रोवा कैसे बानी?
0: बिल्कुल
1: ना, बता दी।
0: गणेश कुमार
1: जी
0: बात कर?
1: हाँ बिल्कुल।
0: कल गया हम गाना नहीं खेला जाओ।
1: गाना नहीं खेला जाओ
0: ना? आज मनोरमा दीदी रहुए बताए कि हम तो कोनो 4 बजे या 4:30 बजे मैसेज ना भेज रहे हैं, बताएं वो मेरे भेज रहे थे तो हम कहते चल भाई हमारा से पहले जो फरमाइश आई हो तो हम बजाय कोनो बात नहीं थे। बाकी हम गाना के फरमाइश भेज ले 3 बजे एकदम राइट 3 बजे हमारे गानो नहीं खी बजे हम कहें कि आप बजाय बजाय अपने वेट कर कर कर कर 5 बजे हो तो चल गए।
1: अच्छा तो हम सोना टाइम कहीं भाती
0: अरे तो रहो चला रहे।
1: अच्छा हमारे टाइम भैल
0: बा मनोरमा दीदी हम जब ले शो खत्म ना रहे तब ले हम सुनत रहे।
1: अच्छा
0: हमारे बहुत अच्छा लगे सुने में।
1: जी जी
0: तो जैसे कि ना होला कि कोई गाना ना बजेला तो अथी हो जाला दुख यानी मन हो जाला।
1: ना ना ऐसा बात नहीं करें कहे से कि और भी तो लोग बा वहाँ सबके भी तो बजावे के पड़ेला ना।
0: ना तो संडे के दिन स्पेशल होता नहीं बजावे के चाहे ना बताए।
1: आज बात
0: ना छोड़िए बात भेजबे ना करम फरमाइश
1: तो ना खिसी आई जला
0: ना तनी बोल दे भारती दीदी से रहुआ।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ऐसा मान ली कि गाना के फरमाइश भेज रहे हैं भाई भक्ति तो अगर भक्ति ना बजाय करे तो बोल देते हैं कि भाई भक्ति ना बाजी दूसरे गाने के फरमाइश भेजी तो वहाँ का वो नहीं की भोजपुरी सुन भक्ति बाजेला।
1: अच्छा
0: अब बताए अब अथी दशहरा होता तो सब लोग तो भक्ति गाना सुनी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: भक्ति तो बाजते नहीं थे।
1: अच्छा तो बाजी हमने के सर जी
0: जाए।
1: अच्छा ना तो ऐसा कोनो बात नहीं खे राउत भी गाना बाजी कहे के और लोग भी तो जुड़ेला तो बारी बारी सबके बात।
0: अच्छा रवि बताए मनोरमा 3 बजे से अथी होते रहे 3 बजे से 2 घंटे टाइम रहे की ना रवि बताए।
1: जी जी चलिए ऐसे गलती हो गई तो आज बात दे रहे ना टेंशन मत ले। आई बता दी की आज रुआ कौन गाना सुने
0: अपना पसंद के बजा दी।
1: ना रुआ इतना मुश्किल से कॉल कैले बनी रही रुआ बताती तो सही रही
0: ना अपना पसंद से बजा दी।
1: अच्छा
0: जवन धीरे बढ़िया लगे
1: भोजपुरी में की हिंदी में?
0: जवन भी बढ़िया लगे।
1: अच्छा और गाना भी
0: सबसे रुआ के और भारती दीदी के और पूरा रेडियो सुनवाना चाहते हैं।
1: अच्छा जी तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना।
0: ठीक है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: नमस्कार
5: नमस्कार,
6: कैसे हैं?
5: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: ठीक हूँ।
5: तो क्या हो रहा है?
6: छुट्टी के मजा ले रहा हूँ।
5: अच्छा जी, तो खाना वाना हुआ कि नहीं?
6: अभी खाना।
5: अच्छा जी, अच्छा तो आज लेट हो गया कॉल करने में?
6: नहीं, परसो रहा हूँ लेकिन अभी नहीं रहा।
5: क्या करिएगा, ये कॉल करता है तब तो दूसरा आ जाता है।
6: तो आज एक रिक्वेस्ट है कि यार लिखे लिखल हाथ के लकीर में
5: नहीं, खुद तकदीर में जान यही वाला
6: खेसारी लाल का नहीं है, हमारा कुछ अलग रहता है।
5: अच्छा जी, समझते हैं आप,
6: इसलिए हमारा खेसारी लाल का नहीं है, कुछ अलग है। कर लीजिए आप, पंकज मतलबी का है, नेहा सिंह का है, जुगल है।
5: तो गाना डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
6: तो आप दोनों को, जितने सुनने वाले हैं सबको।
5: ओके जी, बस नाम बता दीजिए और एड्रेस।
6: अनिल कुमार मिश्रा, दिल्ली।
5: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: ओके जी
5: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते दी,
0: नमस्ते, कैसी हैं?
1: राधे राधे। बिल्कुल
0: राधे राधे जी,
1: ठीक हूँ, आप बताएं। जी
0: मैं भी बढ़िया हूँ। आप रानी जी बोल रही है ना?
1: जी जी मैं रानी बात कर रही हूँ।
0: अभी आपको
1: जी
0: सब कोई मिस कर रहा था लो।
1: जी कॉल के द्वारा।
0: जी, अभी बोल रहा था लो कि रानी जी कॉल नहीं है, तो हमने बताया कि नहीं अभी तो कॉल नहीं, बट आप कर ही दी।
1: और इंतजार सफल हुआ कि ना,
0: जी बिल्कुल।
1: और नाश्ता उस्ता कर ही नहीं दी।
0: हाँ जी, नाश्ता तो हो गया और आप ही हैं
1: जी नाश्ता हो गया है,
0: तो?
1: और आप अच्छी है ना? और
0: जी मैं तो ठीक हूँ, और आप ठीक? ना, तबीयत तो सही है ना आपकी?
1: तबीयत अच्छी है, आज मेरी थोड़ी सी अंदर से मेरा हॉट हो चुकी हूँ, और मेरा एक भाई जाने वाला है सऊदी, कल परसों निकलेगा, और उसके और जो मेरी वार्निंग थी ना दी, मैं बता भी नहीं सकती हूँ, मैं अंदर से टूट गई हूँ, और ऐसा फीलिंग हो रहा है ना, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और लाइफ में मैं कभी भी किसी से शिकवा शिकायत नहीं रखी हूँ, ना कोई चीज मांगी हूँ, बाकी मुझे दिन मांगले मुझे हर चीज मुझे ला कर देता था। है तो उम्र में छोटा, बाकी मुझे प्यार बहुत ज्यादा दिया है थी। और तो मैं क्या बताऊँ, मुझे अब अंदर से जिस घर में जा रहे हैं रुआई की सुबह कुछ नहीं आ रहा है। इंसान जीवन में अगर तरक्की करे ना दिया, अगर एक पैसा के लिए इंसान को क्या क्या झेलना पड़ता है ना, इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अपने जितने में हो उतना ही में कुछ पैसा खर्च करना चाहिए, इसलिए भी पैसा बड़ा मेहनत कराता है,
0: जी
1: और है मेरे से उम्र में छोटा। अब मैं बताऊं आपसे, कभी भी हाल ही में मेरा जब रेडियो फूटा था, तो
0: जी
1: मुझे एक दिन की नागा को अगर मुझे जाकर नया रेडियो 1200 में खरीद कर ला कर दिया है, और मैं बताऊं, मैं रेडियो 9-10 रेडियो खराब कर चुकी हूँ, ये 11वां रेडियो है मेरे पास,
0: अच्छा
1: और मैं ये थी चूंकि इससे सुनते आई है ना, और पहले मेरे दादाजी भैया वैया सब लोग सुनता था, और उन सभी को मेरी तरफ से जो जो मेरे के पूछे हैं रानी की तरफ से अगर नमस्ते प्रणाम। और मैं आज मिस कर रही थी, और देखिए पहले तो मैसेज उसके मोबाइल से थोड़ा बहुत कर लेते थे, एक दोबारा पीछे में बात भी हुआ है, और मोबाइल भी लेकर जा रहा है, और छोटा फोन होगा तो आप लोग से बात होगा। और मैं बताऊं दी, लाइफ में कभी भी मुझे कोई भी चीज के आज तक ले, और मैं ही थी चुकी से कभी भी मैं अपने भाई लोग से कोई चीज मांगी नहीं हूँ, बाकी दिन मांगले मुझे हर एक ख्वाहिश लिया कर पूरा किया है दी, और परदेश जाने के बाद। और एक बात और है, वो जाते जाते एक बात बोलता था दी, के पता है दी, तुम्हारा जब शादी होगा तो हम शादी में नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और शायद देखिए अगर वो भी सारी पूरा हुआ, तो अब देखिए भगवान के दया से मेरी शादी ऐसे होती है आगे सब होती है, और जो कहा वो पूरा कर दिया दी, और मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है दी, बहुत ज्यादा। मैं ऊपर वाला से दुआ यही करेंगी, कुछ का अतरा मंगलमय हो, और जहाँ भी जाए सही सलामत रहे दी, मेरा उम्र लग जाए, और मुझे जितना प्यार दिया है ना, सच में करेंगे एक प्यार तो माँ बाप से मिल जाए, बाकी मुझे माँ बाप से ज्यादा उससे मिला है दी, बहुत ज्यादा मिला है,
0: चलिए
1: बहुत ज्यादा मिला है दी, मैं उसके बारे में जितने बोलूँ उतना कम पड़ जाएगा।
0: चलिए, कोई बात नहीं है, फिर जल्दी, बहुत जल्दी वापस आएंगे वो भी।
1: जी, और परदेश तो जाने के बाद धंधे ही करती है, 2 साल 3 साल के तो कर्ज हो जाता है, बड़े वाला भैया जब गए थे तो 8 साल के बाद हुआ है,
0: 8 साल?
1: 8 साल के बाद। और जो हम लोगों स्टार्टिंग में जो स्थिति था ना दे, ये खाने की जब वो दौर याद आता है, मेरा तो भगवान बहुत कुछ दिए हैं, ऊपर वाला बहुत कुछ दिए हैं दी, ऊपर वाला बहुत कुछ दिए है कि अगर हम चाहें तो दूसरे किसी के खिला सकते हैं, दे सकते हैं, और मैं और कोई वो काम करे या ना करे, बाकी मैं अपने घर में उस चीज करती हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं करता कि ये चीज तुम काहे दी काहे की। तो आज मैंने सोचा था कि आपसे बात कर लूं, अब मैं ये लेट से इसलिए किए कि आपसे जरूर बात हो। और मैं बताऊं, जो मेरी सिस्टर आपके बारे में जो बोल रही थी, आपकी आवाज सुनकर बहुत खुश हुई, रेडियो ऑन किया बहुत खुश हुई।
0: तो रानी जी, मैं आपको बात बता दूं कि ऐसे इमोशनल नहीं होते, जब आप नहीं कहिएगा तो कैसे जाएंगे, आप ही बताइए।
1: वो तो बात है दी, और मैं सच बताऊं, मैं उस दिन खुद कह रही थी कि तुम जाएगा उस दिन मैं हट जाऊंगी, बोला ऐसे मत करना। और मैं बताऊं ना दी, मुझे बचपन से कभी भी किसी के दुख दर्द देखा नहीं जाता है, मैं कभी भी, और मैं

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्कार।
5: नमस्कार, जी सुधीर जी, कैसे हैं आप?
6: बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
5: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
6: घर का मौसम का क्या हालचाल है?
5: मौसम धूप तो निकला हुआ है,
6: बारिश नहीं हो रही है ना?
5: नहीं यार, आपकी तरफ?
6: हम लोग की तरफ भी काफी तेज धूप है, लेकिन बारिश लगभग लगभग एक दो दिन में हो ही जाती है।
5: अच्छा, तो अभी बारिश हो रही है?
6: नहीं, अभी बारिश नहीं हो रही है।
5: अच्छा, मतलब
6: मौसम, हाँ मौसम बहुत अच्छी है, लेकिन अभी काफी तीखा धूप है आज।
5: चलिए, बहुत दिनों बाद धूप जो निकला हुआ है।
6: जी जी, नहीं धूप निकलती है वैसे, लेकिन आज पूरा खिल के धूप है, बहुत कड़ाके की धूप है।
5: अच्छा,
6: गर्मी भी है। आज सुना दीजिए, मैं भोजपुरी फिल्म खेसारी लाल और सिरपी राज का कोई नया मैं सुना दीजिएगा आप अपने पसंद से।
5: अच्छा, कोई भी?
6: जी जी जी, डुएट सॉन्ग सुना दीजिएगा खेसारी लाल यादव और सिरपी राज की आवाज में भोजपुरी गाना, कोई अच्छा सा।
5: ओके जी, और डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
6: जी, सबसे पहले मैं आपको और रेडियो रूम के जितने भी लिसनर है सबको सुनाना चाहता हूँ दिन से।
5: ओके सुधीर जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: जी मैम।
5: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: थैंक यू मैम।
5: वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो हेलो,
0: नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगीम 90.4 एफएम में।
1: जी मैं मनन बोल रहा हूँ कपूरा से।
0: जी जी कैसे हैं आप?
1: हाँ हम अच्छे हैं। बहुत देर हो गया, ये घंटा टाइम निकल गया।
0: जी जी
1: 11 बजे चालू हुआ, 12 बजने वाला है।
0: जी
1: तो हमको गाना सुनाइए मैडम।
0: बता दीजिए।
1: देखो तो अभी गाना याद था, अभी भूल गए। हाँ, तुम बंसी बजाते हो।
0: तुम बंसी बजाते हो।
1: हाँ,
0: और इस
1: अलका का गाना है।
0: अच्छा जी।
1: तुम बंसी बजाते हो, सारी रात जगाते हो।
0: जी जी
1: ऐसा ही गाना है। बहुत अच्छा मधुर गाना है।
0: जी जी गाना तो बहुत कुछ है।
1: तो यही गाना हमको सुनना था, अब सुनवा दीजिए मैडम यही गाना।
0: जी जी बिल्कुल। और ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: हाँ हाँ ये तो बात सही आप बोलिए। खासकर ये आपके नाम में रहेगा और सोनी जी के नाम में रहेगा, दो आदमी के नाम में रहेगा गाना। और एक हम सुनेंगे, तीसरा हम है।
0: जी जी
1: बाकी लोगों को क्या सुनवाना है वो तो सुन का ऐसा ही गच हो जाएंगे, वो कहेंगे वाह क्या गाना है।
0: तो आपने गाने की फरमाइश बहुत ही अच्छा की है।
1: हाँ हम तो गाने की फरमाइश अपने हिसाब से तो अच्छा ही करते हैं, पर कितने लोगों को तो बुरा भी तो लगता होगा।
0: नहीं नहीं ये गाना जो बताएं बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
1: अरे ये तो गाना जो ये था, एक मीरगंज में रथ यात्रा निकला था है ना, हम उसी दिन से इस गाना पर हम फिदा हो गए हैं। जो कलश यात्रा में बहुत से मतलब औरतें थी और सब लोग थे, पर जो गाना ये मैं सुना उसमें तो बहुत अच्छा लगा हमको है ना।
0: जी जी
1: तो ये कलश यात्रा हमको मीरगंज का याद आता है, तो इसीलिए हमको सुनना अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा वो जो वो बड़ा स्पीकर में बजा था ना, तो उसमें साउंड बहुत खुल के आया था तो अच्छा लगा। वैसे तो गाना तो हम तो सुन लेते हैं अपने तो रेडियो में, तो उसका मजा और बड़ा स्पीकर का मजा अलग अलग है।
0: जी जी
1: तो उसी को मजा लेकर के मैं सुनना चाहता हूँ इस गाने को। और भी कई गाने आ जाते, आज तो हमको फरमाइश करना था वो गाना सुमन कल्याणपुर का गाना। तो सुमन कल्याणपुर जानती है?
0: नहीं।
1: वो सिंगर है वो।
0: अच्छा।
1: लता जी के टाइम का है, सेम उनका आवाज लता के जैसा है।
0: अच्छा जी।
1: हाँ सुमन कल्याणपुर कर उनका नाम है।
0: अच्छा।
1: आ, आ, मेरे वतन के लोग वही तो गाने वाली थी सुमन कल्याणपुर कर। आज भी लोग समझते हैं कि उन्हीं का गाना है, लेकिन वो रिहर्सल में थी और उसके बाद से जो लता जी को ये गाना दे दिया गया है ना। हाँ तो रिहर्सल में अपना गाना प्रदर्शन कर चुकी थी तो लोगों को बहुत पसंद आया था, अरे मेरे वतन के लोगों है ना। तो वैसे बहुत से गाने हैं सारे सुमन कल्याणपुर कर का, लोग अब नाम नहीं जानते हैं, इस सिंगर का नाम नहीं जानते हैं लोग बहुत, लेकिन एक एक सिंगर है।
0: जी जी बात तो सही है।
1: तो सुनाइए यही गाना मैडम।
0: ओके जी तो चलिए फिर प्ले करते हैं।
1: अच्छा एक मिनट, हम लगभग 12 बजे में कॉल किए हैं तो इतने के टाइम में गाना आ जाएगा क्या? 5 बजे शुरू होगा तो 6 बजे आ जाएगा गाना मेरा?
0: जी जी बिल्कुल आ जाएगा।
1: अच्छा हम टाइम मिलाते हैं, 6 बजे तो 5 मिनट पहले ही रेडियो चालू करेंगे।
0: जी जी अगर आज नहीं बजा तो कल बज जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल आए हुए हैं तो आगे पीछे हो जाता है कॉल।
1: और हो जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन आज बजेगा तो फिर 1 घंटा जैसे हम लेट करके हम कॉल किए हैं तो फिर एक घंटा लेट करके बजेगा ना?
0: नहीं नहीं अगर देखिए कॉल निकालते समय इधर उधर हो जाता है तो कहीं शायद आपका एक नंबर।
1: क्यों आप लोग तो क्यों नंबर वाइज क्यों नहीं करते हैं आप लोग?
0: तो अब हमारे हाथ में नहीं ना है, हम लोग कॉल निकालते हैं, लोग टेस्ट करते हैं, लोग तो कॉल इधर उधर हो जाता है।
1: अच्छा ये बात,
0: मिक्सिंग हो जाता है तो जिसका पता चल जाता है उसका। जो आप बोल रहे थे लेट से कॉल किए हैं आपका आगे बच गया तो।
1: अच्छा ये कौन आदमी था मैडम? आज तो सुने हैं बड़ा प्यार से आप बात की है कि कोई एक आदमी है वो बाहर में काम करता है, उसके अंदर घर पे जो है वो बोरिंग है, उसके पिताजी जो है आटा चक्की चलाते हैं है ना, वो सब बात उसमें कह रहा था है ना। तो आप पूछी थी कि आपका हाथ अभी कैसा है?
0: जी जी।
1: मतलब उसका तबीयत भी खराब था उस आदमी का, लेकिन बड़ी प्यार से बहुत देर तक बात हुआ था।
0: जी जी।
1: हाँ वही मैं दिल लगा के सुन रहा था, वही तो सुन रहा था है ना। हाँ तो पता नहीं और नाम हमको याद नहीं है ना, नहीं तो हम बताते, लेकिन आप उसको जानती हैं? हाँ उस आदमी को जानती हैं, बहुत प्यार से बात हो रहा था। मैं सोचा कि कभी कभी हम भी तो भाई प्यार से बात करेंगे मैडम से।
0: आपको ऐसे भी करते हैं?
1: अच्छा मैडम हमारा घर किधर है?
0: जी
1: हमारा घर कहाँ है?
0: तो सर आपको बताया तो रिकॉर्डिंग हुई होगी, उतना याद नहीं मुझे।
1: याद रहता है बहुत आपको याद रहता है ना, लेकिन ठीक है ऐसा ध्यान में होना चाहिए, ऐसा दिल दिमाग होना चाहिए।
0: जी जी चलिए तो फिर
1: ठीक है मैडम। हाँ हाँ ओके सुनाइए।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगीम 90.4 एफएम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
3: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते,
3: कैसी हैं?
2: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए क्या आप कैसे हैं?
3: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ।
2: तो क्या कर रही थी?
3: जी मैं कॉल ट्राई कर रही थी, बहुत देर के बाद।
2: चलिए चलिए, अब जाके लगा है कॉल।
3: जी
2: तो नाम बता दीजिए अपना।
3: मैं शबनम सिद्दीकी बात कर रही हूँ।
2: और कहाँ से?
3: जी खाल से।
2: चलिए, तो शबनम जी कौन सा गाना सुनिएगा आज?

0: मेरे साथ हो, ये वाला कौन सा?
1: ये गाना तो बहुत ही अच्छा है।
0: जी मैम।
1: तो सबनम जी, ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
0: हाँ, आपको
1: ओके सबनम जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी हाँ मैम, आप माइंड में लग रही है, आप जान सकते हैं।
1: जी
0: आपका नाम जान सकते हैं?
1: जी जी बिल्कुल, मेरा नाम मनोरमा।
0: आप न्यू लग रही है?
1: हाँ जी।
0: पहले बार आपका मेरे को हो रही है?
1: जी जी, आपकी आवाज कट रही है, एक बार और बता दीजिए क्या बोली है।
0: मैंने बोला कि मेरे तो हो गई है।
1: अच्छा ठीक है, तो प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी मैम।
1: जी जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। जी मनीषा जी, कैसी हैं?
1: बताइए।
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या हो रहा था?
1: अभी कॉल लगा रही थी।
0: अच्छा जी, तो
1: रेडियो सुन के उसके बाद से कॉल लगा रही थी।
0: अच्छा जी, तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको?
1: बहुत अच्छा लगता है। सोमवार को बोल रहे हैं, सोमवार के दिन गाना फरमाए थे तो लेट से आप बजा दी।
0: जी, तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
1: मैं खाना खा लिया है आप?
0: हाँ जी, खाना तो हो गया। और आप खाई हैं?
1: हाँ, मेरा भी हो गया है। तो गाना सुनवा दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: मेरे भाई मेरे दुश्मन मेरे हमसाए।
0: क्या मनीषा जी, ये गाना मुझे गा के बताएंगी?
1: नहीं, आप दूसरे दिन गा देंगे।
0: चलिए, कोई बात नहीं है। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: जी हम आपको और भारती मैम को, दिव्या मैम को, सोनी मैम को और अपनी दीदी को, छोटे भाई को और रेडियो रिव्यू सुनने वाले सभी दोस्तों को।
0: ओके मनीषा जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम।
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8029494 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो,

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: बाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: 4FM के जॉन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हर का गौरव सारण प्रमंडल की शान गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामा जो श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: राधा, ओ राधा।
2: क्या है? मैं नहीं बोलती।
1: देखो आज होली है, मुझे तंग क्यों कर रही हो?
2: जा, मैं नहीं सुनती।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।